मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 17, तदनुसार 7 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: बीतल जाइच मनुष्य जीवन जटिल सँ जटिलतर भेल जाइच, जीवन संघर्ष बढ़ल जाइच आ ओहि संघर्ष में सफल हेबाक लेल मनुष्य के नित्य नवीन युक्ति सोचअ पड़ै छ। एहि संघर्षमय जीवन में वह व्यक्ति सफल भ सकै छ जकरा जीवाक लूरि छैक, जकरा नहि छैक ओकरा संघर्ष तोड़ि दै छैक, मेटा दै छैक। समस्त ज्ञान विज्ञान रीति नीति आचार विचार आ कला कुशलता मनुष्य के यह लूरि सिखबै छ, संसार में कोना रही, सांसारिक संबंधक निर्वाह कोना करी, लोक आ वेद दुनू के रक्षा कोना करी, कोना संसार यात्रा सकुशल पूर्ण करी, यह तो

0: मानवीय चेतनाक मूल उद्देश्य थिक। देखल जाय छे जे लोक शास्त्र पढ़ियो क व्यावहारिक दृष्टियें अकुशल रह जाय छथि। शास्त्र ज्ञान भेने की हुए जीवन जीबाक कला जँ नहि अबै छै तो शास्त्र ज्ञान कोनो काज नहि देत। दोसर दिस जँ शास्त्र नहि अबै छै आ व्यावहारिक कुशलता अछि तो संसार यात्रा सुचारू रूप सँ पूर्ण है। क्यों पंडित जी बड़ पैघ शास्त्रवेत्ता रहथि, ओ नाव पर यात्रा कऽ रहल छलाह। यात्रा समय साध्य रहन, नाव पर दुए गोटे रहथि, स्वयं आ नाव खेनिहार केवट। केवट तो अपना काज में व्यस्त छल, पंडित जी चुपचाप बैसल रहथि। मौन भंग करैत पंडित जी केवट के पूछलखिन, तोरा धर्मशास्त्र पढ़ल छौ? केवट अकचकाइत बाजल, केकरा कहै छै धर्मशास्त्र? पंडित जी घोर उपेक्षा भाव सँ ओकरा कहलखिन, जखन नामो नहि सुनल छौ तहन तू की बुझबहक? अच्छा कह, गणित पढ़ल छौ? केवट अस्वीकार में मात झुला देलक। पंडित जी पुनः पूछलखिन, इतिहास, आयुर्वेद, दर्शन किछु छौ पढ़ल? केवट बाजल, पंडित जी पाँचे बरखक रही तखने बाप करुआरि धरा देलक, हम भट्ठो नहि धऽ सकलहुँ, तखन अहाँ जे पूछै छी से हमरा कोना बुझल रहत? पंडित जी बजला, जा, तोहर जीवन व्यर्थ भऽ गेलो। जे व्यक्ति शास्त्र नहि पढ़लक ओकर जिनाई बेकार। केवट पंडित जी कथन पर कोनो ध्यान नहि दऽ अपना काज में लागल रहल। कने कालक बाद उठले बिहारि, नदी में नमहर नमहर तरंग उठऽ लगले, नाव दोलायमान होमय लागल, होय जेना आब उनटतै आब उनटतै। केवट पंडित जी के पूछलकन, पंडित जी बिहार बढ़ते जाए छी, नाव उनट जेबे करत, हेलो अबैया? पंडित जी भयातुर भ के बजला, नहीं, हमरा हेलो कहाँ अबैया, तो ही कोनो उपाय कर, कहुना जान बचाब। केवट जी जान सँ करुआरि चलबऽ लागल, कहुना बीज धारा सँ नाव का दिस जाय, एहि लेल प्रयास करऽ लागल। किंतु धाराक वेग प्रबल रहिक, नाव सम्हारनाई संभव नहि रहिक। अंततः केवट धोती फोललक, अंगपोछा पहिर लेलक, धोती लग्गाक छोर में कसिक बांधि देलकै आ धोतीक छोर पंडित जी के पकड़बैत बाजल, कसिक धेने रहब? ई कहि ओ लग्गा नेने धारा में कूदि पड़ल। नाव उनटि गेलै, किंतु केवट पंडित जी के सुरक्षित तट तक घीच आनलक। नदीक अहरी पर पहुँचलाक बाद केवट बाजल, पंडित जी अहाँ के हेलनाई आबों सीख लेबाक चाही, एहन एहन बेर में काज देत, शास्त्र कोनो काज नहि देत। पंडित जी निरुत्तर भ गेलाह।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मिहिर कुमार झा की वार्ता, भिंडी की उन्नत खेती।
2: आज कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा, किसान भाई लोकन नमस्कार। आज कृषि चर्चा में अपना सब गप करब भिंडी के उन्नत खेती के संबंध में। किसान भाई लोकन, अपना सब के बुझल है जे भिंडी, जकरा अपना सब राम तोरई सेहो कहे छी, भिंडी एक गोट नीक तीमन तरकारी में अबैत अछि आ एकर बाजार भाव सेहो खूब नीक रहैत अछि। भिंडी के सब्जी, भुजिया आ तरुआ प्राय सब के नीक आ रुचिगर सेहो लगैत अछि। अपना सब ठाम जे अतिथि अभ्यागत अबै छथि हुनको ई व्यंजन देल जाय छनि, ओ बड़ रुचिगर से खाइतो छथि, प्रशंसो करै छथि। किसान भाई लोकनि, भिंडी के उन्नत फसलक खेती करबाक लेल खेत के नीक जकां जुताई कोराई कऽ के ओहिमे से खर पतवार के नीक जकां बीछ लेबाक चाही। ओकर बाद कंपोस्ट खाद के ओहि जोतल खेत में बिछा देबाक चाही, अर्थात छीट देबाक चाही। पुनः खाद छिटलाक बाद

0: बाद खेतक जुताई कऽ लेबाक चाही, जे पुनः ओहि खेतमे जे कम्पोस्ट खाद देलियै से माटिमे मिल जाए। किसान भाई लोकनि, भिंडीके खेती करबाक लेल उचरस खेत रहक चाही, जाहिसँ जल निकासी आसानीसँ भऽ जाइ छै। किसान भाई लोकनि, भिंडीके बीयाके गप करी तऽ भिंडीके बीयाके उन्नत संकर हाइब्रिड बीयाके चयन करबाक चाही। संगे बीयाके बाउग करैसँ पहिने बीयाके उपचारित कऽ लेबाक चाही। पुनः किसान भाई लोकनि, भिंडीके उपचारित बीयाके उचित दूरीपर रोपैके लेल किसान भाई लोकनि, भिंडीके फसलक बुआईके गप करी तऽ गर्मीके फसल अगेतीके सही समय फरवरीसँ मार्च मासके बीच रहैत अछि, ओतहि भिंडीके बरसाती फसलक बुआईके समय जूनसँ जुलाई महीनाके बीच रहै छै, जे अखन ई समय अपना सबके चलि रहल अछि बरसाती भिंडीके फसलक। किसान भाई लोकनि, भिंडीके बरसाती फसलक अखन उचित समय चलि रहल अछि, बीयाके उचित मात्राके प्रयोग करक चाही तऽ नीक उपजा हैत। संकर किस्मके बीया 1.5 अर्थात 2 किलो प्रति एकड़के होबाक चाही। ओतहि भिंडीके समान किस्मके बीया 4-6 किलोग्राम प्रति एकड़ रहक चाही। किसान भाई लोकनि, भिंडीके बीयाके रोपैसँ पहिने भिंडी बीयाके कार्बोडाइजिम आ थायरम 2-3 ग्राम प्रति किलो बीयाके उपचारित कऽ कऽ बीयाके पानिमे भिजैके लेल पहिने दऽ देबाक चाही। जखन 2-3 दिन बीयाके भिजा देलाके बाद पुनः ओ बीयाके पानिसँ निकालिके हवामे 1-2 दिन रहलाके बाद ओहि बीयाके नीक अंकुरण जखन भऽ जाइत अछि ओहिमे, तखन अंकुरित बीयाके रोपक चाही। किसान भाई लोकनि, भिंडी बीयाके रोपैके समय पाँतीसँ पाँतीके दूरी 45-60 सेंटीमीटर आ गाछसँ गाछक बीचके दूरी 25-30 सेंटीमीटर रहक चाही। किसान भाई लोकनि, भिंडीके गाछमे जखन फूल आ फल आबऽ लागे तऽ माइक्रोन्यूट्रियस आ कैल्शियम नाइट्रेटके छिड़काव केलासँ भिंडीके गुणवत्ता उपजामे सेहो बढ़ोतरी होइ छै आ भिंडीमे कोनो तरहके कीड़ा मकोड़ा जे लगै छै से नहि लागत। एहिके संग आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। नमस्कार।
1: भिंडी की उन्नत खेती, अभी आप मिहिर कुमार झा की ये वार्ता सुन रहे थे। कृषि चर्चा का कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: विषय था कृषि वानिकी और वार्ताकार थे
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर अलका कुमारी की भेंट वार्ता, दांतों में कैविटी कारण और बचाव।
4: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका। डॉक्टर अलका, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि दांतों में जो कैविटी है इसका मुख्य कारण क्या है। उससे पहले आप ये बताएं कि कैविटी क्या होती है।
5: सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारा दांत है शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है।
4: जी।
5: फिर भी कभी कभी इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिनको आप कैविटी कहते हैं या खोदर कहते हैं या कीड़ा लगना कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में।
4: अच्छा, दांतों में छेद होना या उसका कीड़ा लगना उसको कैविटी कहते हैं।
5: हाँ
4: ठीक है। इसके ये क्यों होता है ऐसा?
5: हमारे दांत में जो है मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। दांत जो हमारा है कई मिनरल से बना है, इसमें जो प्रोसेस चलते रहता है वो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है

0: कि आप खाना खा रहे हैं और उसके खाने के जो कण हैं आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगता है। वो बैक्टीरिया और मुंह का जो एसिड होता है, अम्ल जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड, वो दोनों के कारण
1: दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, मतलब एसिड की वजह से,
0: एसिड के कारण क्षरण शुरू हो जाता है। अच्छा, जो आपका इनर मिल है वो खत्म होने लगता है।
1: जी जी जी।
0: और इसके कारण वहाँ पे आपको छोटा सा छेद शुरू होता है जो फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अच्छा, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया
1: तो उसी को कैविटी कहते हैं।
0: जी।
1: तो उसका कारण क्या है? उसका
0: आपके इनर मिल का डिमिनरलाइजेशन होना,
1: यानी कि खान पान की कमी की वजह से। कुछ लोग क्या खान पान की गड़बड़ी से होता है ये दांतों में?
0: नहीं, आपके मुंह में जब पीएच बैलेंस 5.5 से कम हो जाता है,
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से तेज हो जाता है।
1: तो ये जो आपने कहा पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाता है, इसका कारण क्या? कुछ तो कारण होगा।
0: इसका कारण है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें एसिड ज्यादा है।
1: अच्छा, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है
0: और मुंह में आपके जो गंदगी के कारण बैक्टीरिया पनप रहे हैं
1: जी,
0: उसका कारण।
1: अच्छा।
0: इन दोनों के प्रोसेस से ही ये कैविटी का निर्माण शुरू हो जाता है।
1: तो किस प्रकार के खान पान की वजह से ये समस्याएं ज्यादा आती हैं?
0: मीठा खाना,
1: अच्छा,
0: तैलीय खाना, जैसे आपका कई कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज है, उससे जो लैक्टिक एसिड निकल रहा है, वो सबसे मुख्य कारण है इसका।
1: जी, तो बहुत से लोग हैं जो जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले या जलेबी, इस प्रकार की रस वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें तो ज़्यादा शिकायतें होंगी, या मिठाई या फिर टॉफ़ी चॉकलेट्स।
0: शिकायत है, खाइए, लेकिन उसके बाद मुंह को अच्छे से साफ कीजिए।
1: तो ये फिर ज़्यादातर बच्चों में होता है कि या ज़्यादातर बड़ों में ही होता है?
0: ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है।
1: बच्चों में,
0: अच्छा, खासकर 14 साल तक के बच्चों में, उनमें हड़बड़ी भी रहती है स्कूल जाने का, जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, ठीक से ब्रश नहीं किए।
1: तो कैविटी से बचाव का क्या तरीका है?
0: आप चिपचिपे और मीठे पदार्थ कम खाइए।
1: अच्छा।
0: ब्रश कीजिए सुबह और शाम, फ्लोराइड युक्त पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए
1: जी,
0: और रात में आपको ये एक ग्लास नमक पानी से, गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला किया कीजिए रेगुलरली।
1: अच्छा।
0: और नियमित रूप से दांतों का चेकअप करवाइए।
1: ये भी कहा जाता है कि हमें ब्रशिंग जो है सिर्फ सुबह नहीं, रात को खाना खाने के बाद भी करना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: इससे ये शिकायत नहीं होगी। मतलब,
0: हाँ, जिससे आपके जो खाने के जो कण फंसे हुए और निकल जाएंगे तो फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा।
1: और लोग कहते हैं कि रात को जो ब्रशिंग है वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दांतों का सड़ना जो है, एसिड बनना ज़्यादातर रात में ही होता है, ऐसा कुछ है क्या?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि रात में जो आपका खाना है उसमें आपका जो मुंह का लार है वो भी रीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देता है।
1: जी।
0: रात में आप खाने के कण रह जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्शन ज़्यादा हो जाता है।
1: जी जी, अच्छा अच्छा, अगर किसी को कैविटी हो गया उसके बाद फिर उसका क्या इलाज है?
0: उसके बाद हम कैविटी को सिर्फ फिलिंग, जिसको आप कह सकते हैं, डेंटिस्ट लोग फिलिंग कहते हैं, फिलिंग करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। एक तरह से वहाँ कहिए कि छह को रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं वहाँ, कैविटी अरेस्ट।
1: अच्छा।
0: उस जो आगे नहीं बढ़े।
1: अच्छा। और ज़्यादा क्षरण हो गई तो फिर तो कुछ और भी उसका दूसरा भी इलाज?
0: अगर क्षरण सिर्फ कहिए आपके डेंटिन तक है तब तक सिर्फ फिलिंग से ठीक हो जाएगा, और अगर वही क्षरण आपके पल्प तक, सबसे भीतरी वाले पार्ट तक चला गया है, फिर उसके बाद हम लोग को RCT करवाना पड़ेगा।
1: यानी जब समस्या गंभीर हो जाएगी तो फिर RCT की नौबत,
0: हाँ, वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा।
1: ठीक, डॉक्टर साहब, आपने हमारे दांतों में कैविटी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, पहले संवेद स्वर में ये देश वंदना।

स्वर में अभी आप देश वंदना सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं ये भक्ति वंदना, स्वर हरिहरन का है।

यह स्वर था हरिहरन का। आइए आप सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में सूरदास की यह रचना।

यह स्वर था अनुपमा देशपांडे का, रचना सूरदास की। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये शिव भजन।

ये सुर था हरिहरन का। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

ये स्वर था लता मंगेशकर का। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

कार्यक्रम संबंधी सूचना से पहले आइए एक विशेष सूचना आज के कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनु राज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 9430029353। हमारा दूसरा नंबर है 0672222481। समय याद रखें, आज ही रविवार 7 जून दिन के 11 बजे। ये सूचना संपन्न हुई, आइए अब जान

0: कड़ी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। इस सभा में फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित कार्यक्रम फुलवाड़ी हेलो जिंदगी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। दिन के 12:00 आप सुनेंगे सखी बहन कार्यक्रम, सूत्रधार होंगी नीतू कुमारी। दोपहर 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मैथिली नाटक गुरुवाइन। दोपहर 1:10 पर देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे और दोपहर 1:15 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:10 पर रोजगार समाचार और दोपहर 2:30 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद लेंगे। दोपहर 3:00 विद्यापति गीत और संध्या 5:00 गैर फिल्मी गीत या गजल का आनंद लेंगे आप और संध्या 5:40 पर फिल्मी गीत या गजल आप सुनेंगे। विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर और गांव घर कार्यक्रम के अंतर्गत गुनगुनायत मन सुनेंगे संध्या 6:30 पर। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का यह दरभंगा केंद्र है। 6:55 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: ताह श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहारस्य भवन निर्माणस्य सम्पत्ति क्रय विक्रयणस्य च विषये विशेष समवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमा सुरक्षा बलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत 5 वर्षाणां भूमि लेखानां परीक्षणाय अपि

0: निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांक पर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अंतिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तर राज्यानां अधिकतर भागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्यां, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शन परकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोह

0: का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला। आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा।
0: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। मणिकांत जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार प्रतिभा जी, देखू जे हमरा लोकन कार्यक्रमक शुभारंभ करी छी सुविचार से।
0: जी, आज का सुविचार है, सुभाषितान है, कहते हैं, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलतम तस्य जीवितम्। अर्थात जिसकी वाणी मधुर है और जो परिश्रमी है, जो दानी है, उसी का जीवन सफल माना गया है।
1: और सुविचार सुनला के बाद उनटबे छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में अजुका तिथि अर्थात 7 जून किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नजर घुरा ली।
0: जी।

0: आज ही के दिन अर्थात 7 जून 1893 को महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का क्रांतिकारी कदम उठाया गया था। 7 जून 2006 में भारत ने नेपाल के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया था। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर एक सोवियत संघ के वियर्स लेक से सोवियत रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ था। इसका नाम महान गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर रखा गया था। भास्कर एक से इसरो को रिमोट सेंसिंग में एक्सपर्टीज मिली थी। 7 जून की बात करें तो एक विशेष दिवस आज के दिन मनाया जाता है और वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य जनित बीमारियों से बचाव और सुरक्षित भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल आज के दिन अर्थात 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ, तो इच्छल इतिहासक पन्ना आब वर्तमान में अभी तो वर्तमान में अखन जेठ मास चल रहा है और जेठक जे गर्मी तकरा हमरा लोकन से भोग रहल छी अखन। हालांकि बीच बीच में रह रहे का वर्षा से हो भौ जा रहा है और वर्षा से किछ तो राहत महसूस हो तथापि दिन में जे रौद रही है से प्रचंड रौद रही है और ओ रौद से बच कर रहब से बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य के प्रति।
0: जी बिल्कुल,
1: तो के लेल सब गोटा अपना स्वास्थ्यक प्रति, अपना धियापुता के स्वास्थ्य के प्रति, अपना घर में जे बुजुर्ग लोग हुनका स्वास्थ्यक प्रति निश्चित रूप से चिंतित रही और हुनका सुरक्षित राखी। संगे मालजाल पशु पक्षी पर में सेहो मनुष्य के ध्यान देबाक चाही और ओकरो सभक सुरक्षा कोना होए तै दिस ध्यान निश्चित रूप से अपन लगेबाक चाही।
0: जी बिल्कुल, जो आपके जो पालतू पशु हैं उनका ख्याल तो हम सभी रख ही लेते हैं। पानी पिलाना होता है, जैसे कि बाल्टी भर के गाय है, भैंस है, बैल है, उसे हम सभी पानी पिलाते हैं या घर में जो भी पशु हम पाले हुए हैं, पक्षियों को पाले हुए हैं। लेकिन इस समय में जो हमारे यहाँ पालतू नहीं है उनके लिए भी हम करते हैं कि एक छोटे से बर्तन में पानी भर के अपने छत पे या कहीं और बाहर दरवाजे के बाहर रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि और भी कोई पशु पक्षी ऐसे जो प्यासे होते हैं तो आके वो पानी पीते हैं। तो ये धर्म ही नहीं कह सकते हैं, एक कर्म भी हमारा बन जाता है इससे। तो ये सब बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, हम सभी इस बात को जानते हैं। बस थोड़ी सी अपनी आदत में बदलाव करने की आवश्यकता हमारे लिए हो जाती है।
1: गप सप तो अपना सब करते रहब। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में बहुरंगी सामग्री लकऽ हमरा लोकन अबै छी तऽ एखन बढ़ाबै छी डेग मैथिली सुगम संगीत के दिस कि नहीं।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: vamos a un dar y allá nos dejaron hablar lo que me hizo los amigos que han
1: श्यामोहन मिश्र के स्वर में और इन्हें धन्यवाद देते हैं। जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं मणिकांत झा। आइए सुनते हैं मणिकांत झा से हालचाल।
0: नमस्कार। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में चाइल्ड रूम के अचानक भीषण आग लगला के बाद 7 व्यक्ति के मौत हो गई। जिसमें स्वास्थ्य विभाग नव सिरासा अब राज्य के सब सरकारी निजी अस्पताल के अग्नि सुरक्षा जमा के निर्णय करेलक है। सब जिलाधिकारी आ सिविल सर्जन के एक जिम्मेदारी सौंपल गया है। विभाग के सचिव कुमार रवि एहि बाबत सब जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन तथा अति विशिष्ट संस्थान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक के 15 दिन में अस्पताल के फायर ऑडिट करेबाक निर्देश देलन है। IPL आ यूथ क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करे वाला बिहारक समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धूम मचेबाक लेल तैयार है। सूर्यवंशी 15 साल 71 दिन के भारतीय टीम में शामिल होबा वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। सूर्यवंशी के अगर आयरलैंड आ इंग्लैंड के विरुद्ध पदार्पण के मौका भेटे तो वो 16 साल से कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाला पहल भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन जाता। बिहारक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल के बिहार में ओलंपिक स्तर के सुविधा दिल जाए। मुख्यमंत्री कल लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में खेल विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैसार कैलन। बैसार में मुख्यमंत्री प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण समय सीमा के भीतर पूरा करवाक और एक संचालन एवं रखरखाव के व्यवस्था PPP मॉडल के माध्यम से करवाक निर्देश देने। IIT रुड़की JEE एडवांस 2026 परीक्षा देवे वाला लाखों छात्र के नम्हर राहत देलक है। एहन छात्र जो 12वीं के परीक्षा में इंजीनियरिंग दाखिला के लेल अनिवार्य न्यूनतम 75% अंक प्राप्त नहीं कर सकल छथि ओहो संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण काउंसलिंग में शामिल भ सके छथि। हालांकि दाखिला के लेल सीट के अंतिम आवंटन से पहिने उनका मूल्यांकन के बाद संशोधित मार्कशीट जमा करना पड़ता है।

0: इस साल 13 जिला में भूगर्भ जलस्तर और नीचा चल गया। कैटा शहर के भूगर्भ जलस्तर 8 फीट तक नीचा चल गया, जैसा अधिक सबसे अधिक लखीसराय में पिछला सालक तुलना में 8 फीट और नीचा पानी चल गया, जे चिंता के विषय है। मौसम पूर्वानुमान में आए दरभंगा और नॉर्थ पासक लेल कहल गया है जे अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकती है, जहां की न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हवा संभावना है। आसमान साफ रहत, दोपहर में करगर रौद निकलवाक संभावना व्यक्त कैल गया है। दरभंगा समाहरणालय सभागार में डीएम कौशल कुमारक अध्यक्षता में बहादुरपुर हायाघाट एवं दरभंगा सदर अंचल के राजस्व कार्य के समीक्षा भेल। डीएम राजस्व महाअभियान के अंतर्गत प्राप्त सब आवेदन के यथाशीघ्र पोर्टल पर अपलोड क आ प्राप्त आवेदन के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करवाक निर्देश देलनि। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। नेत्रम फाउंडेशन दरभंगा के तत्वावधान में कठरवाड़ी में पहल बेर 2 दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टि दिव्यांग सुगम संगीत महोत्सव आ प्रतियोगिता अनुगुंज 2026 के शुभारंभ कैल भेल। कार्यक्रमक उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे कैलन। कुलपति प्रोफेसर पांडे कहलन जे अनुगुंज केवल एक संगीत प्रतियोगिता नहीं अपितु दृष्टि दिव्यांग प्रतिभा के क्षमता आत्मविश्वास एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तिक राष्ट्रीय मंच थे। ओ नेत्रम फाउंडेशन द्वारा कैल जा रहल एहि अभिनव प्रयासक सराहना करैत कहलन जे समाज के प्रत्येक वर्ग के एहन समावेशी प्रयास के प्रोत्साहन करबाक चाही। ओ आश्वस्त कैलन जे भविष्य में जहिया कहियो फाउंडेशन अथवा दृष्टि दिव्यांग के हित में हुनका विश्वविद्यालय के सहयोगक आवश्यकता हेतन विश्वविद्यालय सहभागिता के लेल तत्पर रहता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से संपन्न हैत। लोक भवन के निर्देशानुसार उपशास्त्री शास्त्री एवं आचार्य कक्षा समर्थ पोर्टल से नामांकन के प्रक्रिया शुरू कर देल गेल है। पारा विधिक स्वयंसेवक चयन के लेल आवेदन 30 जून तक लेल जायत। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जनौलन है जे जिला विधिक सेवा व्यवहार न्यायालय दरभंगा न्याय मंडल में 72 पारा विधिक स्वयंसेवक के नियुक्ति कैल जेबाक अछि। दरभंगा सदर अनुमंडल के लेल 9, बेनीपुर अनुमंडल के लेल 30 आ बिरौल अनुमंडल के लेल 33 पारा विधिक स्वयंसेवक के चयन होयब अछि। विभूतिपुर प्रखंड के युवा के खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन करैत राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपन जगह बना लेलन है। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयो

0: ऑक्सीडाइज्ड नमक।
1: आव नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के अंतर्गत आओ सुनी छी एकटा कार्यक्रम संबंधी विशेष सूचना।
2: श्रोताओं, प्रदूषण नियंत्रण प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जैव विविधता की रक्षा करके ही हम पृथ्वी को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के आज के अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनुराज शर्मा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर होगा 1-943-002-9353 और एक फोन नंबर 0627-222-2481। प्रसारण का समय याद रखें रविवार 7 जून यानी आज ही के दिन के 11 बजे।
1: तो इछल कार्यक्रम संबंधी सूचना और पर्यावरण जी बातक चर्चा प्रतिभा जी अहाँ कहलहुँ, ओकरा संतुलित राखब, ओकरा सुरक्षित राखब हर मानव के कर्तव्य है। और पृथ्वी पर जे कोनो और जीव जंतु अय ओकरा सबके प्रकृति प्रदत्त या भगवानक प्रदत्त एहन गुण है जो स्वतः पर्यावरण के संतुलन में वो लागल रही है। लेकिन मनुष्य एहन अय जे पर्यावरण के विपरीत बहुत रास कार्य करिए जै कारण से पर्यावरण प्रदूषित होइत रहे छे और अनबैलेंस के स्थिति जे छे से हरदम बनल रही छे।
2: और मनुष्य ही ऐसा है, ऐसा जीव है इस धरती पर जो चाहे तो पर्यावरण के अनुकूलित, आपने कहा विपरीत, तो अनुकूलित भी, अनुकूल भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकता है जिससे हमारा पर्यावरण और भी संरक्षित रहे, संवर्धित होते रहे। देखिए ना, हर साल हम सभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, अभी 2 दिन पहले मनाए हैं। इस दिन बहुत से लोग एक वृक्ष लगाकर पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट करते हैं, पर अधिकतर लोग बस वृक्षारोपण करते हुए फोटो डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं
1: प्रतिभा जी
2: इतनी तक ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
1: एकटा हमरा कहा भी कहवल मन पड़ गया, अखन अपना सब ओत लोग कहे छे जे सिंदूर नहीं करे छी, बिहुता के तोक रखे छी। तो हमरा लोकन पर्यावरण संरक्षण नहीं करे छी, ओ तोक रखे छी एकटा वृक्ष रोपि क। हमर सबक जे मूल उद्देश्य हेबाक चाही तै पाछा नहीं रहे छी। फोटो खिंचवा वाला जे बात अहाँ कहलूँ ना, तोक राख वाला बात छे जे हम फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया पर दे दिए कि कतौ जे छै से समाचार पत्र में दे दिए जे हम पर्यावरण संरक्षण में लग गेलूँ, लेकिन वही व्यक्ति के अहाँ देखबेन जे पर्यावरण प्रदूषण करे में सेहो अगला दिन से लग जाए।
2: देखिए, पौधा लगाए हैं, भले ही फोटो वीडियो ही हम डाले हैं उसके लिए ही लगाए हैं, लेकिन इसमें कल से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए ये चीज जब हम सोच लेते हैं तो फिर वो बेकार सा हो जाता है। क्योंकि जो जब हम हमारे घर में जो बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको बस छोड़ नहीं देते हैं, वो खुद अपने आप बड़ा नहीं हो जाता है, उसके खाने पीने का, पानी का या रख रखाव का कितना ख्याल रखते हैं। तो जो छोटा सा एक पौधा है कल होके वो बड़ा सा वृक्ष बनता है, बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन आज तो वो एक नन्हा जैसे शिशु है हमारे घर का, ऐसा ही होता है। तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी होती है हमारी, तो हम ये नहीं कि पौधा लगा के हम छोड़ देते हैं, छोड़ दें, उसमें पानी कैसे डालना है, उसे अन्य पशुओं से कैसे बचाना है कि वो खा ना जाए इसे, तो इन सब बातों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और दोहन तो प्रकृति का हम सभी कर ही रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, अपने आवश्यकता के लिए फर्नीचर बनाने हो या फिर हम घर मकान बना रहे हैं तो इसके लिए दरवाजे खिड़कियों की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी की आवश्यकता के लिए हम जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, लेकिन यदि हम उसके स्थान पर वृक्ष लगा दें तो वृक्ष से हमें क्या कुछ नहीं मिलता है मणिकांत जी। देखिए ना, औषधि की बात करें, फल फूल की बात करें, या
1: सबसे पहले तो ऑक्सीजन,
2: प्राणवायु, बिल्कुल
1: जिसके
2: कारण हम सभी जितने भी जीव हैं इस धरती पे सभी जीवित हैं, तो वो हमें वृक्षों से ही तो प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वृक्षारोपण करना, और जो जंगलों की कटाई हो रही है उस पर यथासंभव रोक लगाना।
1: हाँ।
2: और जो है बचा हुआ उसके कैसे उसे बचा के हम रख पाएँ इस पर भी बहुत अधिक ध्यान देना। और इतना ही नहीं, हवा, पानी, जंगल, ज़मीन और जानवर, इन सब को प्रदूषण, दोहन और बर्बादी से बचाना होगा ताकि जो भी आज है जो भी वो अच्छे से जी सकें।

0: और कल के लिए पर्यावरण सुरक्षित रह सके।
1: पर्यावरण के प्रदूषण जे छै से बहुत ढंगे हमरा लोकन करै छी, ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से सेहो हमरा लोकन जे छै से पसारि रहल छी, और अहाँ देखबै जे बहुत जोर जोर आवाज के बाजा बजैत रहै छै, जाहिसँ जे छै से अहाँके दिक्कत होइ छै। ओकरा बाद जे डीजल पेट्रोल के गाड़ी दौड़ैए ओहूसँ जे छै से पर्यावरण प्रदूषित होइ छै। कल कारखाना फैक्ट्री सब जे लागल अइ ओकरो धुआँ जे छै से पर्यावरण के प्रदूषित करै छै। तऽ एहि सबके बहुत रास एहन चीज छै, जेना आब गाड़ी और घोड़ा के गप छै, तऽ ओहिमे आब ई रिक्शा या ई वाहन सब, ई व्हीकल, ई मोटरसाइकिल, ई स्कूटी आबि गेलैए इलेक्ट्रॉनिक वाला, जाहिमे प्रदूषण नहि होइ छै। तऽ ओहो सब दिस अपना सबके डेग बढ़ेबाक चाही जे बेसी सँ बेसी हम प्रदूषण नहि पसारी, तकरा लेल जे छै से अपन काज करी और ओहन वाहन के उपयोग करी। साइकिल पहले ओहिमे सबसे बढ़िया छलै जे साइकिल के उपयोग अहाँ करै छी तऽ ओहिमे कोनो जे छै से प्रदूषण के बात नहि छै, लेकिन साइकिल अगर नहि चलबऽ चाहै छी, मेहनत अहाँ नहि करऽ चाहै छी, तऽ बहुत रास आब इलेक्ट्रॉनिक वाहन जे छै से आबि गेलैए बाजार मे, जाहिपर मे सरकार सब्सिडी सेहो दै छै ओ खरीदऽ मे, तऽ ओ अहाँ खरीदू और ओहिसँ ओकरा बचाव करू। या ध्वनि प्रदूषण सँ सेहो तेज आवाज मे गाड़ी, मने हॉर्न नहि बजाऊ गाड़ी के, या कोनो बाजा एहन नहि बजाऊ जाहिसँ लोक के हानि पहुँचे और पर्यावरण के विरुद्ध ओ काज हुए। तऽ से सब चीज, एहि सब बात के चैक हर आदमी के हेबाक चाही, हर व्यक्ति के हेबाक चाही, तखने जे छै से पर्यावरण संतुलित रहत और कुल मिलाकर ओकर रिजल्ट, ओकर प्रतिफल हमरे अहाँ के लेल बढ़िया है।
0: और हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण असुरक्षित होने से सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन का हो जाता है, जिसका परिणाम है देखिए ना, अधिक गर्मी और ग्लेशियर पिघलना, बिना मौसम के बरसात हो जाना। तो इस सब के लिए सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगाना, क्योंकि वो जो हमने कहा कि अभी जलवायु परिवर्तन का खतरा हो रहा है पर्यावरण असुरक्षित होने से, तो इन सब बातों पे हमें बहुत अधिक ध्यान देना।
1: सिंगल प्लास्टिक के जो बात करूँ प्रतिभा जी, बच्चा में मोन है जो हम सब भोज खाए ले जाए छलो हैं तो लोटा गिलास अपना घर से लेकर जाए छलो हैं, अब एक फैशन भ गेलै है जे घरवाड़ी जे छै से यूज एंड थ्रो प्लास्टिक वाला ग्लास या प्लास्टिक के थारी लेकर ओतः उपस्थित रहै छथि, और ओ हजारक हजार संख्या में जे छै से ओ एहन प्लास्टिक के ग्लास होइ छै जे फेकल जाइए, जे फिर माटि में जाकर मिलैए नहि, ओ जतय रहैए ततय के ततय रहि जाइए। ओ प्लास्टिक एहन चीज छै जे माटि में गलै नहि छै, माटि में सड़ै नहि छै, ओ जरेला के बादो ओहिमे धुआँ एहन होइ छै जे प्रदूषण होइ छै। तऽ ओहि सब चीज पर गंभीरतापूर्वक से ध्यान देबऽ के बात छै और विचार करबा के बात छै जे हमसब केना ओहि सबसँ उबरि सकी और फैशन के चक्कर में जे छै से अपना पर्यावरण के बर्बाद नहीं करी, नष्ट नहीं करी, असंतुलित नहीं बनाई।
0: परिणाम तो हम ही सब भोगना होता है, तो इसलिए बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। बस छोटे छोटे बदलाव हम अपने जीवन में यदि कर लेते हैं, देखिए ना, अभी चाय की दुकान पे देखते होइएगा, पहले वो यूज एंड थ्रो जो आपने कहा उस तरह के कप का व्यवहार होता था, लेकिन अब अधिकतर दुकान में मिट्टी के कुल्हड़ वाले चाय की का प्रचलन सा हो गया।
1: हाँ, या कागज के बदलाव, कागज के ग्लास अब विनष्ट भ जाए छे, बाद में माइट में मिल जाए छे, तो वो बढ़िया छे।
0: ये सब बदलाव शुरू हुआ है और इसी की आवश्यकता है। बस हम सभी अपने दैनिक जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि क्या करने से हम अपने इस प्रकृति को संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो आवश्यकता इसी बात की है, और कार्यक्रम में आवश्यकता है एक फिल्म संगीत सुनवाने की, मनोरंजन की तरफ अपने श्रोताओं को ले जाने।
1: सुनी सुंदर सनक फिल्म संगीत।

0: गोड़ी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर ये गीत एखन हमरा लोग सुन रहा छो हैं। और फिल्म संगीत के बाद मोन पड़े जे आई रवि है, आ रवि को हमरा लोग गत सप्ताहक जे गतिविधि है तै पर नजर घुमबी। तो आओ प्रतिभाजी लोग उपस्थित गतिविधियाँ गत सप्ताह की।
1: नमस्कार, गतिविधियाँ गत सप्ताह के साथ मैं प्रतिभा प्रीति। गत सप्ताह बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेला के दौरान कांवड़िया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आदेशानुसार पथ पर बिजली के जर्जर तार को मेला शुरू होने से पहले बदला जाएगा, साथ ही रास्तों को दुरुस्त किए जाने के संग 15 जून तक सभी बंद पड़े चापाकलों को चालू कराने का भी निर्देश जारी किया। गत सप्ताह बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवन्ना में

0: सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये हस्तांतरित किए गए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया। गत सप्ताह लद्दाख में सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय अभियान स्वच्छ गाँव सुरक्षित जल के तहत अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण पर 42.5 करोड़ की लागत से निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। गत सप्ताह शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इस पार्क का उद्घाटन किया। एक ही पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गत सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के लंकामुड़ा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी के द्वारा उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। गत शनिवार त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में धर्मनगर पुलिस स्टेशन के राघना सीमा क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नेपाल में नई सरकार की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं। गत सप्ताह महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की 353वां राज्याभिषेक समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ के महाड़ तालुका स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का सोने के सिक्कों से अभिषेक कराने की परंपरा भी शामिल थी। जापान के काकामिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुषों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशिया कप जीतने पर भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है। इसके साथ संपन्न करते हैं गतिविधियां गत सप्ताह की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। श्रोतागण देखू एक ही मिनट में हमारा लोग सौंसे दुनिया घूम लेलों और किछुए पल में सब बात बुझ लेलों। पूरा सप्ताह के गतिविधि लग पेटार में समेट कर अन्य चलिए प्रतिभा जी और सुनेली तो बहुत निक लागल। आब शुरू में हमरा लोग से चर्चा केने छलहुँ जे आइ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। तो खाद्य सुरक्षा अइ के प्रति जे छै से हर व्यक्ति के जागरूक रहबाक चाही जे अहाँ जे भोजन कऽ रहल छी ओ सुरक्षित अइ कि नहि, ओ आ ओ सुरक्षित कोना रहै।
0: जी बिल्कुल।
1: अइ विषय में जे छै से सब गोटा के चैक करब आवश्यक है।
0: देखिए, हम सभी तो जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। यदि भोजन ही असुरक्षित या दूषित हो तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैल सकती है, इसलिए इसके सुरक्षा को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है इसके मनाने का भी मुख्य उद्देश्य यही होता है कि खाद्य जनित जो रोग है उसे रोकना, खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तियों को या संस्थाओं को और सरकार को भी प्रेरित करना, क्योंकि सुरक्षित भोजन हम सभी का अधिकार होता है।
1: आधा बीमारी तो भोजने द्वारे जे छै से अगर अहाँ दूषित भोजन ग्रहण करै छी तऽ ओहिके कारण से जे छै से आधा

0: बीमारी होइ छै आओर अथवा बीमारी स्वच्छ जल अगर अहाँ ग्रहण नहि कऽ रहल छी तऽ जल अन्न पानिके कारण जे छै से बेसी बीमारी अहाँके घर करैए। तऽ ओहि दुआरे खाद्य सुरक्षित हुए एहिपरमे ध्यान देनाइ सब गोटाके आवश्यक अछि आओर सुरक्षित खाद्य ग्रहण करी, अपनो खाइ दोसरोके खुअबियै, एहि बातपरमे जे छै से निश्चित रूपसँ चेक करबाक आवश्यकता हर नागरिकके छै।
1: और इसके लिए सबसे पहले स्वच्छता अपनाने की बहुत ही आवश्यकता है। भोजन बनाने से पहले स्वच्छता का ध्यान हमें रखना होता है, हाथ को हम अच्छी तरह से धोएं। जो हम बाज़ार से या खेत से फल सब्जियां लाते हैं उसे खूब अच्छी तरह से हम साफ़ करें, धोकर उपयोग करें, और पकाने के बाद हम भोजन जहां रखते हैं वहां भी खूब साफ़ सफाई का हम ध्यान रखें, उस स्थान के साफ़ सफाई का ध्यान रखें। निश्चित रूप से भोजन बनाने में और पीने के लिए जो पानी है, जैसा कि आपने कहा, तो वो उस जल का हम जो प्रयोग करते हैं वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और एक बात है ध्यान देने लायक कि हम सभी जो एक्सपायरी डेट वाला जो सामान, जो पैकेजिंग सामान लेके आते हैं,
0: पैक होइ छै सामान, ओकर एकटा मानक निर्धारित होइ छै जे कोन सामान पैक भ रहल है और कते दिन ओकर ड्यूरेबिलिटी
1: गुणवत्ता उसमें बना रहेगा,
0: बनल रहते, ओकरा बाद ओकर गुणवत्ता खत्म भ जाइ छै या खराब भ जाइ छै। तो ओ अगर पैक सामान अहाँ खरीदै छी, कोनो से आटे खरीदलहुँ, सूजी खरीदलहुँ कि मैदा खरीदलहुँ आ कि कोनो खाद्य पदार्थ अहाँ कीनै छी, तऽ ओहिपरमे अंकित कयल रहै छै, सरकारक ई निर्देश छै जे ई कहिया पैक भेलै आओर कहिया तक ई नीक उपयोगमे रहि सकैए, से लिखल रहै छै। तो ओकरा चाँकिसँ देख ली आओर तखने ओहि सामानके खरीद कऽ अहाँ उपयोग करी। ओना अहाँ अगर आँखि मुनि कऽ सामान कीन लै छी तऽ भऽ सकैए जे अहाँ ओ तिथि पार कऽ गेलहा, एक्सपायरी डेट तऽ एकरा नहि अबै छै दवाइ जकाँ, लेकिन ई होइ छै जे गुणवत्ता ओकर खत्म भऽ जाइ छै। तऽ से अहाँ देख कऽ जे कहिया तक उपयोग करऽ लायक ई सामग्री छै तकरा देख कऽ तकरा बादे कीनी आओर तखन जे छै से अहाँ ओकरा उपयोग करी। जेना अहाँ छोट सनक गप लिअ, ब्रेड कीनै छी बाजारमे, तऽ ब्रेडके सेहो एकटा
1: समय सीमा निर्धारित छै कि कितना दिन, दो दिन, चार दिन,
0: चारि दिन, दू दिन, कए दिन रहतै से निर्धारित छै। लेकिन अगर अहाँ आँखि मुनि कऽ कीन लेलहुँ आ चलि अयलहुँ, पता लागल जो महकल छलै,
1: पाँच दिन पहले का पैकेजिंग है, तो वो स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं कि जहर का ही काम करेगा। और देखिए ना, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष जो हम सभी मनाते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मनाया जाता है। जरूरत है कि ये क्यों मनाते हैं, इसके जो महत्व है इसको समझने का। तो सुरक्षित और स्वच्छ भोजन, जैसा कि हम सभी ने अभी बातचीत किए हैं, तो स्वास्थ्य की रक्षा करता है सुरक्षित और स्वच्छ भोजन। तो इसी के महत्व को समझने के लिए और इसके साथ खाद्य उत्पादन के साथ ही जो भंडारण होता है और वितरण में सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना भी इस दिन के मनाने का उद्देश्य होता है। हमने बात किया कि खाद्य जनित रोगों की रोकथाम में मदद के लिए भी इस इनकी महत्ता है, खास महत्ता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही यही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और कृषि संगठन का जो है सुरक्षा सुरक्षित निर्धारण करना। तो इस दिवस का खास हमने और खेत से थाली तक भोजन की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी होती है। खेत से अनाज उपजा के हम लाते हैं और थाली में, और उर्वरक का प्रयोग भी खेत में, खेत की बात किए हैं तो किसान करते हैं, तो उर्वरक
0: मात्रा,
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
0: कौन तो, उर्वरक के मात्रा कतेक हेबाक चाही, उस बात के अहाँ जरूर ध्यान दियौ। खाली अनाजे नहीं, तीमन तरकारी में विशेष एकर प्रभाव जे छै से पड़ि रहलै है, और अहाँ देखबै जे जल्दी तरकारी नमहर भऽ जाए, सजमनि नमहर भऽ जाए, तकरा सभक लेल जे चीज के उपयोग कयल जाइ छै ओ स्वास्थ्य के लेल खतरनाक भऽ जाइ छै। तऽ तैँ ओहू सब परमे सब गोटा के जे उत्पादक छी तिनको आ जे उपभोक्ता छी तिनको, सब गोटा के ई बात परमे ध्यान देबाक अछि जे ओ एहन कोनो चीज खाद्य के जे चीज अछि तकर हमरा लोकनि अनुचित उर्वरक के प्रयोग कऽ कऽ नहि उपजाबी, जे कम उपजैए तऽ बेसी उपजा लागत ओ देलासँ, तो से कुल मिलाकर तो फिर अपने हानि करिए ना,
1: उसका प्रयोग तो हमारे ही परिवार में होता है या फिर हमारे समाज में होता है। तो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए या हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का हम सभी पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें।

0: और इसी बात को याद दिलाने के लिए आज का दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, बासी भोजन या सड़े गले भोजन का भूल कर भी हम उपयोग नहीं हमें नहीं, करनी नहीं, चाहिए ऐसे तो नहीं करते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बन गया है, ज़्यादा बना लिए हैं तो फेंकने में लगता है कि कैसे तो इसका उपयोग, तो थोड़ा सा हम बचाते हैं अनाज को या थोड़े से भोजन को, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकर होता है ऐसा चिकित्सकों का भी कहना है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और यदि हम बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 के विषय का, तो वह विषय है बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, यह थीम खाद्य जनित बीमारियों के आंकड़ों को समझने और सुरक्षित खाद्य तंत्र के लिए ठोस समाधान लागू करने पर बल देता है। और इस बात पर भी यह थीम प्रकाश डालता है कि बीमारी, उसके बोझ और जान माल के नुकसान से संबंधित आंकड़ों और प्रभावी समाधानों की दिशा में कार्रवाई कैसे हम करें।
1: अखन हमरा लोग चर्चा कर रहा छो है, आप चर्चा के बाद बेसी काल जो गप सप करब तो मन उबिया लगे तो से उबिया नहीं, तक दुआरे जी से गीत संगीत दिस चली और सुनी सुंदर सनक फिल्म संगीत
0: आई सुनते हैं।

0: जेठक दोपहरिया में ई ठंडी हवा वाला गीत जे छै से बहुत फायदा करत
1: और
0: अहि गीत के आनंद में जे छै से अगर गर्मी लगबो करत त याद क लेल करब के निकाल के लेल गीत के
1: हां सुना कि रुक जाए ठंडी हवा और इसी प्यारे से गीत के साथ आज के इस अंक से लेते हैं विदा तो
0: मणिकांत के
1: और प्रतिभा प्रीति को विदा दीजिए अगले अंक तक के लिए
0: नमस्कार मिथिला।

नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
6: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में समाचार प्रभात।
1: डीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का

0: निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने

0: और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था

0: के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और

0: साक्षात दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञानंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6th बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says, India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings, and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
2: The National Testing Agency, or NTA, has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
5: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication.

घाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि TMC हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी, लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल PM इकतसादी मुशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम और इकतसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इकतसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाती तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर UPI इंडिया और नेपाल के UPI को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दो तरफा तआवुन को मजीद वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बैरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राज़ील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खत्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपए थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामानी

0: की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड़ के शुमाली जिलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरिकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी जैक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्त बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से शक्कत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमी रजवी।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज माहिरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहिरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खत्े में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक NCR में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खत्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात।

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
2: डेयरी, एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर। दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, सिविल सर्जन और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निदेशकों को 15 दिनों के भीतर फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 प्रमुख बिंदुओं पर अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। इधर अग्निशमन पुलिस के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार नट ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर पटना के 5 अस्पतालों और 3 होटलों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 52 अस्पतालों और होटल

0: से अग्नि सुरक्षा मानकों में लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराई गई है।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है या था जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहां के जो संबंधित अग्निशामक पदाधिकारी हैं और यहां के जो जिला अग्निशामक पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: गौरतलब है कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को निर्देश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के 268 अंगीभूत और 479 संबद्ध कॉलेजों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। लगभग 60,000 एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एनएसएस से जुड़े युवाओं को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, अग्निकांड और अन्य प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से निपटने की जानकारी दी जाएगी। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी कल तक का समय है, इसलिए इंतजार करना चाहिए।
2: अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: राज्य के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत 4 वर्षीय CBCS आधारित स्नातक पाठ्यक्रम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बाद अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को 4 से 6 सप्ताह की अवधि में कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की होगी और इसका क्रेडिट 5वें सेमेस्टर में जोड़ा जाएगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र को समूह में इंटर्नशिप करने की अनुमति नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में 27 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 40 ट्रैफिक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इन स्थानों पर 500 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार जनवरी 2022 से अब तक 50,663 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक पटना में हिट एंड रन के मामले दर्ज किए गए। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1,040 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। 5 किलोग्राम भार वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। शेष समाचार एक

0: الكتural الكبار.
1: इधर आइए, इधर
2: इधर
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज सीमांचल के कई जिलों समेत राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
4: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बक्सर, बांका, मुंगेर और जमुई जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों के चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को ना माने और ना ही भुगतान करें। एनटीए ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि ऐसे संदेश आगे ना भेजें और धोखाधड़ी के झांसे में ना आएं। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने और केवल सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। पथ निर्माण विभाग ने बक्सर बरौनी रेलखंड स्थित LC70A पर निर्माणाधीन आरओबी के धंसने के मामले में 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बताया कि आरओबी की मुख्य संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से रेलवे प्रशासन ने आरओबी पर यातायात बंद कर दिया है। राज्य के 180 परीक्षा केंद्रों पर आज बीएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों की जांच के लिए

0: बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए पूरी जांच की जा रही है। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर आज से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बंगलापुर मोहल्ले के एक मकान में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में राजस्व विभाग के विशेष सर्वेक्षण अमीन कंचन राम समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अररिया जिला समाहरणालय के परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। सुपौल जिले के दत्ता टोला क्षेत्र में तैनात एसएसबी टीम ने एक नेपाली वाहन से 1700 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर लिया है। भोजपुर की स्थानीय अदालत ने जून 2023 में दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति और सास ससुर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1,00,000 रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चयन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, वैभव टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है, 15 साल के वैभव से चमकी भारतीय क्रिकेट टीम। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा महंगी। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप 2026 के अंडर 18 के विजेता मोहम्मद रियान को 22,50,000 रुपए का चेक सौंपा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर, दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन

0: की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत त खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत त हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से कुछ ही पल में।

अभी आप हसरत मुहानी की लिखी ये गजल सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। ग़िज़ा की अहमियत यानी खाने पीने की चीज़ों का एहतराम क्या हो, कैसे करें? तो ग़िज़ा जिसे रिस्क कहते हैं, इसका एहतराम ज़िंदगी की बका और शुक्रगुजारी की बुनियाद का तकाजा है। अनाज का एक दाना भी ज़ाया करना ना शुक्री और जुल्म के मुतारफ़ है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग फाका कशी के आज भी शिकार हैं। ग़िज़ा इंसानी वजूद की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसकी बेहुरमती से बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। इस्लाम ने हमें खाने के आदाब सिखाए हैं और रिस्क की कद्र करने की तदफीन की है। हमारे नबी ने फरमाया कि दस्तरखान पर गिरा हुआ लुखमा उठाकर खा लेने से इंसान खुशहाल रहता है। इसलिए खाने पीने की चीज़ें ज़ाया ना करें, क्योंकि जानबूझकर अनाज या पानी का एक कतरा भी ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। और आज के दौर में एक तरफ जहां गरीब पेट भर के खाने के लिए तरसते हैं, वहीं दूसरी तरफ होटलों में और कई घरों में भी लाखों टन खाना रोज़ कचड़े में फेंक दिया जाता है। ये लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि रिस्क को ज़ाया करने से मुआशरे में माशी अदब, तवाज़न और बरकत का खात्मा होता है। इसलिए खाना इतना ही तैयार करें जितना खाया जा सके, प्लेट में इतना ही लें जितना आसानी से खा सकें, और खाना बच जाए तो संभाल कर रख दें, दोबारा यूज़ करें गर्म करके, वरना जो ज़रूरतमंद हो उन तक पहुंचा दें। हर निवाले पर अल्लाह का शुक्रिया ज़रूर अदा करें। ग़िज़ा का एहतराम असल में ज़िंदगी, मेहनत और खालिक की अता करदा नेमतों का एहतराम है। चलिए आप चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का सेहतनामा। सेहतनामा

0: का मौजू है फर्स्ट एड की अहमियत और इसकी ज़रूरत। इस मौजू पर सैयद मुमताज़ करीम से एजाज हुसैन की गुफ्तगू।
1: सामईन, आज के सेहतनामा का मौजू है फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी मदद, और इस मौजू पर हमने मदद किया है जनाब सैयद मुमताज़ करीम साहब को, जो कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। फर्स्ट एड पे ही तफसील से डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि फर्स्ट एड क्या है और इसकी कितनी अहमियत है?
2: बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट एड एक तरह का इलाज है जो इमरजेंसी हालात में दी जाती है, चोट लग जाना हो या आग से जल जाना या बीमार होना। बीमार होने का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी का शुगर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया या कोई हादसा हो गया, सांप काट लिया, कुत्ता काट लिया, इस हालात में हम फर्स्ट एड कैसे देंगे? किसी की जान बचाने के लिए आप हमेशा डॉक्टर पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है हर जगह डॉक्टर आपके आसपास हो। इसलिए सही तरीके से फर्स्ट एड देने से फौरन उस इंसान को आराम मिल जाता है और उस इंसान की हालात को ख़राब होने से हम बचा सकते हैं।
1: यानी शुरुआती दौर में ही अगर उसे हम इलाज दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता।
2: हाँ,
1: मतलब गंभीर जो हो सकता था वो काफी हद तक उसमें कमी आ जाती।
2: जी जी
1: सर, क्या होता कि जैसे जल गया है कोई, तो हॉस्पिटल ले जाने में देर होने पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाता है जलने पे?
2: देखिए, किचन में ही लोग वर्क कर रहे हैं, खास करके लेडी, तो वो जल जाता है। और जलने की सूरत में सबसे पहले ये करना है कि आपके यहाँ ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, जो पानी है आपके यहाँ नल में, जो पानी आ रहा है, जले हुए हिस्से में तब तक पानी डालते रहिए जब तक उसका जलन कम ना हो जाए।
1: जैसे बर्फ वगैरह से?
2: नहीं, एकदम नहीं, बर्फ से सेकना। अच्छा, नहीं एकदम बर्फ।
1: अच्छा, लोग क्या होता है कि सीधे बर्फ ले आते हैं कि ज्यादा वो कूल, ज्यादा ठंडा है तो उसका ही?
2: नहीं, नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, मैं बर्फ से इसको आइस से नहीं सेकना है।
1: अच्छा, ये कंफ्यूजन था क्योंकि ज्यादातर लोग
2: आइस से नहीं सेकना, और पानी तब तक डालते रहना है जब तक उसके जलन कम ना हो जाए। और जलन जब कम हो जाएगा तो उसे सूखे कपड़े से सोख लीजिए, और वहाँ पर एलोवेरा क्रीम आता है या बर्न्स क्रीम आता है, जो आपके यहाँ आपके पास अवेलेबल है, जो घर में है, एलोवेरा क्रीम, बर्न्स क्रीम, उस क्रीम को आप लगा दें।
1: सर, कुछ चीज़ें आजकल जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, वो ऐसा लगता है कि कुछ को मिसगाइड भी करते हैं कई चीजों के लिए, तो ये सही तरीका इलाज है जलने के मामले में? जब ये कई बार होता है कि जो गंभीर रूप से कुछ लोग जल जाते हैं, कुछ ज्यादा जल जाते हैं, कहीं आग लग गई, उसमें फंस गया कोई आदमी, तो वो तरह का जला हो, तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा सकता है?
2: देखिए, अगर गंभीर रूप से जला हुआ तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल से वहां पर आप लेकर के जाइए, और गंभीर रूप से जले हुए को आप क्या कर, फर्स्ट एड आप नहीं दे पाइएगा।
1: नहीं, कई लोग जैसे होता है कि कंबल से उसको ढक दें।
2: नहीं नहीं, आग बुझाने के लिए कंबल से हम आग पे, आग का फैलाव ना हो, आग का फैलाव नहीं, अगर जले हुए हिस्से पे अगर आप कंबल डाल दीजिएगा, स्किन टच होगा तो वो और तो स्किन में प्रॉब्लम होगा।
1: चूंकि अक्सर ये भी एक मिसकंसेप्शन है, कई बार कई लोगों का हमने देखा है कि कोई जला हुआ आदमी आया तो उसको पहले कंबल से ढक के तब कहीं ले जा रहे हैं हॉस्पिटल।
2: नहीं, कुछ कंबल से ढकने का कंसेप्ट ये है कि अगर उसका जिस्म जला हुआ है, उसके कपड़े में आग लग गई है, तब हम कंबल से उसको ढक देंगे कि उसको आग बुझ जाए।
1: वहां सही,
2: आग बुझाने के लिए हम कंबल यूज कर रहे हैं, अगर वो जल गया है, जलने के लिए फर्स्ट एड के लिए हम कंबल लगाए उस पर डाल रहे हैं, ये सही नहीं।
1: कई जगह ऐसे
2: ये सही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अगर अभी देखिए जो बर्न्स होता है, जल जाता है किसी भी जगह, आज मगर सेहत में हम फर्स्ट एड पे बात कर रहे हैं, तो ये भी आप देखिए कि जो जल रहा है, यानी जलता है दो तरीके से, अगर कोई घर जल गया है या कोई बाहर में कुछ जल रहा है, तो आप उसका धुआं को देखिए, वो धुआं किस तरीके का है। धुआं दो तरीके से होता है, एक काला उठता है और एक उजला उठता है। अगर काला धुआं उठ रहा है तब वहां पर आप बालू डाल दीजिए तो जल्दी वो आग पे काबू कर लेगा, और उजला अगर धुआं उठ रहा है तो आप वहां पर पानी का फोर्स, सबसे पहले तो आप आग को बुझाइए, आग बुझ जाएगा तभी तो आप इंसान का आप रेस्क्यू करेंगे, इंसान को लाइएगा पहले। अब वहां पर ला करके देखना है उसका जिस्म जला है वो किस तरह का जला, अगर हल्का फुल्का जला है तो आप फर्स्ट एड खुद कर लीजिए, अगर ज्यादा जला है तो इमरजेंसी हालात में आप जल्द से जल्द उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां आप लेकर के जाइए,
1: ये सही तरीका है। और एक जहां आग लगती है, लोग आग में फंस जाते हैं, कई लोग दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से आप बचाएं?
2: ये आपने बहुत अच्छा सवाल

0: किया, एक या धुएं की वजह से दम घुट, तो उस इंसान को सबसे पहले आप मैंने वहां से बाहर लाइए और खुली जगह पे लाइए, ला करके उसको लेटाइए, लेटा दीजिए, और लेटाने के बाद आप उसका पल्स देखिए, उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पल्स देखने के बाद अगर उसके बॉडी को हिलाइए, अगर उसका आप नाम जानते हैं उसके नाम से उसको आवाज दीजिए कि वो उठ रहा है कि नहीं। फिर भी अगर नहीं उठ रहा है तो वहां पर हम CPR देंगे उसे।
1: अब तो ये हो गई जलने की बात। कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो गया, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कहीं गिर गए ऊपर से, तो अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, उनकी कट्स लग जाते हैं, तो उसके लिए किस तरह का फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए?
0: कहते हैं एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी से गिर गए हैं, आप जा रहे हैं, आपने देखा वो बंदा गाड़ी से गिर गया है, गिरने के बाद सबसे पहले आप उसको उठाएं, उठा कर करके एक क्रॉट से हटाएं, क्योंकि जब एक्सीडेंट जब होता है तो वहाँ पर लोग आने हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कम होते हैं, नज़ारा देखने के लिए ज़्यादा होते हैं, तो आप सबसे पहले उस इंसान को एक यानी खुली जगह पर लेकर के आइए, और खुली जगह पर लेके आने के बाद उसका देखिए कि उसको चोट कहाँ पर लगा है, चोट आखिर लगा क्या है, उसको फ्रैक्चर हुआ है या क्रॉच आया है या हल्का फुल्का कुछ भी है। अगर क्रॉच आ गया है तो वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है कि आप रोड पर कुछ कर सकते हो। घर में अगर है तो चलिए, घर में आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, आप फर्स्ट एड बॉक्स से आप कुछ भी कर, आप कुछ भी वाइटमिन वगैरह कुछ भी आप लगा दीजिए, कर दीजिए, मगर वहाँ पर आपके पास कुछ है नहीं तो इमिडिएटली कोशिश कीजिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है या नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पर आप उसको लेकर के जाइए। हाँ, अगर इन केस फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर में क्या हो रहा है कि हड्डी टूटने की जगह क्या होता है कि सूजन आ जाता है, यानी स्वेलिंग आ जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। मीन्स इस समझ में ये आ रहा है कि जिस बंदे को चोट लगा है उसको फ्रैक्चर हो गया है, वो किसका स्वेलिंग बढ़ रहा है, तो स्वेलिंग बढ़ रहा है। उस केस में क्या करना है कि आसपास की दवा की दुकान से कुछ अगर ऐसे क्रेप बैंडेज वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो क्रेप बैंडेज वगैरह बांध करके, क्योंकि क्रेप बैंडेज बांधने से थोड़ा सा स्वेलिंग कम रहता है, ज्यादा नहीं होता। मैं जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है आसपास वहां तक उसको आप रेस्क्यू करें, हाँ वहां तक उसको ले जाए। हाँ, ये देखें कि जहां पर उसका फ्रैक्चर हुआ, जहां पर स्वेलिंग हुआ, वहां पर उसका बॉडी मूवमेंट ज्यादा ना हो।
1: अच्छा, उसको
0: बॉडी मूवमेंट ऐसे उठा करके ले, सहारा से ले जाए कि उसका बॉडी, हो सकता है कि बॉडी मूवमेंट होगा उसका जो जख्म है वो और बढ़ सकता है, उसका फ्रैक्चर और बढ़ सकता है,
1: ये इस पर ध्यान,
0: उस पर ध्यान देना है।
1: हड्डी टूटने के बारे में आपने ये सारी बातें बताई कि किस तरह से हम फर्स्ट एड दें। अक्सर दम घुटने पे या फिर हार्ट पेशेंट को कई बार वो फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इनके लिए फर्स्ट एड का क्या तरीका है?
0: ने दम घुटने के बारे में बताया, और हार्ट के पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट नहीं भी है, रास्ते में चल रहा है, वो गिर गया, बेहोश की हालत में है, तो सबसे पहला काम उसको हम CPR देंगे। क्या होता है CPR? कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन। ये एक तरह का फर्स्ट एड है। सबसे पहले हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर आप उसका नाम जान रहे हैं तो उसके नाम से आप उसको बुलाएं,
1: तेज आवाज में
0: आप उसको कॉल करें। अगर फिर भी वो नहीं उठ रहा है तो इमिडिएटली आप उसका पल्स देखें। पल्स जो देख रहे हैं, पल्स लेफ्ट हैंड साइड का गर्दन या कलाई पे आप देखें, पल्स उसका चल रहा है कि नहीं। 10 सेकंड 15 सेकंड में कम से कम 10 से 12 बार पल्स होना चाहिए। अगर नहीं पल्स चल रहा है, पल्स कम हो तब लगेगा हार्ट अटैक आया है, तब मरीज को सीधा करके गर्दन सीधा करना है और सीधा लेटा देना है खुले जगह पर, और वहां पर भीड़ भाड़ नहीं हो,
1: दोनों हवा
0: आनी चाहिए, दोनों हथेलियों को उंगली को आपस में फंसाकर हाथ को सीधा रखना है, यानी जो दोनों हथेलियां है हमारा इसको उंगली को आपस में फंसाकर हाथ को सीधा रखना है, और हार्ट पर रखकर दबाव देना है, यानी हार्ट पर रखकर के आपको दबाव देना है, और अपने जो ये हमारा जिस्म है, जिस्म का पूरा वजन अपने कंधे पर देना है।
1: अच्छा।
0: और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, और लंग्स से निचली हड्डी से 4 उंगली ऊपर
1: ऊपर। अच्छा।
0: हाँ, लंग्स जो हमारा जो लंग्स, जो छाती जिसको बोलते हैं, छाती, हमारे छाती से निचली हड्डी से 4 उंगली ऊपर या चौथी उंगली जहां खत्म होती हो, दोनों चेश के बीच में प्रेस करना है, यानी दबाव डालना है, जल्दी जल्दी करना है, और इसको यानी 1 मिनट में 30 बार प्रेस करना है, और 1 मिनट में फास्ट करना है, 30 बार प्रेस करेंगे और 2 बार मुंह से फूकेंगे।
1: अच्छा, उसको
0: हाँ, जैसे उसको फास्ट यानी हाथ से दबाव हम दे रहे हैं, इस तरह से दबाव कर रहे हैं, आवाज कर रहा है वो, यानी आवाज हो रहा है, और उसके बाद 30 टाइम्स अगर 30 बार हमने दिया तो 2 बार उसको मुंह से हम सांस देंगे, अपने मुंह से उसके

0: फूकें इस तरीके से फूकेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक वो होश में ना आ जाए।
1: तो ये हुआ सीपीआर, सीपीआर का तरीका है जिसको हर आदमी को जानना चाहिए क्योंकि इसमें हम बहुत सारी जान बचा सकते हैं।
0: जी जी।
1: और एक चीज ये भी है कि जैसे अक्सर बरसात के मौसम में या कभी भी ऐसा होता है गांव में ज्यादातर कि लोगों को सांप या बिच्छू काट लेता है, तो सांप या बिच्छू काट लेने पे किस तरह से फर्स्ट एड दिया जा सकता है और कैसे लोगों की जान बचाई जाए?
0: हमारे यहाँ लगभग हर साल 20,000 लोग मर जाते हैं सिर्फ सांप काटने से, और ये जहरीले सांप है। और इंडिया में 200 तरह का सांप होता है, और ये सांप कुछ सांप तो बहुत जहरीले होते हैं जैसे कोबरा हो गया, ये सब जहरीले सांप होते हैं। और गांव में खास करके कि अभी भी वहां पर लोग इलाज नहीं कराते हैं, वहां पर टोटका लोग करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, यानी सांप काट लिया चलो भाई झाड़ फूक करा लें या चाहे टोटका करा लें, ये एकदम गलत है।
1: एक चीज और ये भी है कि अक्सर बहुत सारे 75% लगभग जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं।
0: जी,
1: किसी को सांप ने काटा तो वो अगर झाड़ फूक वाले के पास चला जाता है, वो जो जहरीला नहीं है वो ठीक हो गया, तो उनको लगता है कि भाई उस टोटका करने वाले ने झाड़ फूक वाले ने सही कर दिया।
0: जी जी।
1: जबकि ऐसा होता नहीं,
0: ऐसा नहीं होता है।
1: ये जहरीला सांप जब भी काटता है तो आप कुछ भी कर लें ये आपको बचा नहीं सकते।
0: नहीं। और देखिए अगर
1: ये एक अक्सर ऐसा देखने में आया है तो उसके लिए कैसे ये करें कि सबसे पहला कदम क्या हो,
0: जहरीला सांप हो या जहरीला सांप नहीं हो, आप उसे फर्स्ट एड दें।
1: जी।
0: सबसे पहले आप जहां पर सांप ने डसा है उस घर में जो भी साबुन है उस साबुन से अच्छी तरीके से उसको आप क्लीन कर ले, एकदम धो दें, और धोने के बाद कटी हुई जगह से 2-3 इंच ऊपर बैंडेज लगा दें ताकि वो जो जहर है उस जहर का फैलाव ना हो,
1: वो खूब टाइट करके
0: टाइट करके बांध ले, 1 घंटा से कम वक्फे तक ही उसको बांधे। ऐसा नहीं उसको बांध दिए 2-3 दिन, ऐसा नहीं करना है, यानी 1 घंटे से कम ही 45 मिनट तक बांधे, उसके बाद फिर
1: इसको बांध के आप तुरंत किसी भी हॉस्पिटल या इलाज कर जाएं,
0: जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल वहां पर जाएं, क्योंकि जहर का जो फैलाव है वो आगे नहीं बढ़ेगा।
1: मतलब आधा घंटे टाइम मिलता है,
0: आधा घंटे के 1 घंटा टाइम आपके मिल जाए, 1 घंटा
1: आपको अगर ये सब कर देने पे आपके पास आधे घंटे और मिलने का चांस होता है।
0: जी जी। उसमें क्या होगा, जहर का जो फैलाव है जो वो नहीं होगा। अक्सर लोग क्या होता है गाँव में गए नहीं हुआ चलो भाई टोटका करवा ली वो झाड़ फूक करवा ली ठीक हो, नहीं, सबसे पहले अगर जहरीला सांप हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप पहले उसको क्लीन करें और धोने के बाद 2-3 इंच ऊपर आप उसको बैंडेज से, जो अगर बैंडेज नहीं है तो घर में कपड़ा होगा आपके पास जो कपड़ा है उस कपड़े से टाइट से बांध लें, और बांधने के बाद इमीडिएटली आप जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल से आप वहां पर जाएं।
1: तो ये हो गया सांप से के काटने पे, बिच्छू के काटने पे भी
0: सांप और बिच्छू
1: यही कोई भी जहरीला उस तरह का ये है। तो अच्छा एक चीज और ये, जैसे कुत्ते ने अगर काटा है तो उसका क्या ये है?
0: ने कुत्ते ने भी जो काटा है कुत्ते में भी सेम है, वहां पर भी आपको कटे हुए जगह को पानी या साबुन से साफ कर लेना है, जहां पर कुत्ते ने काटा है उसको भी साबुन
1: या कोई भी
0: क्योंकि कटे हुए जगह के आसपास साफ कर ले, काटते समय कुत्ते का जो लार है वो उसके आसपास लग जाता है, क्योंकि सांप जब काटता है तो डसता है, कुत्ता जो काटता है तो उसका स्लाइवा जो रहता है जिसको लार बोलते हैं वो लार चारों तरफ लग जाता है, तो इमिडिएटली उसको क्लीन कर ले, और वहां पर खून निकल रहा है तो उस जगह को दबा करके खून को रोकें, रोके चोट की जगह पे कुछ एंटीसेप्टिक ताकि जर्म्स जो है जो कीटाणु है वो फैलाव ना हो, और उसके बाद फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह चले जाइए, वहां जाकर के डॉक्टर के सलाह पे रेबीज का इंजेक्शन वगैरह अगर है वो बताते हैं एडवाइस करते हैं वो देख लेंगे।
1: ये जरूरी है, इंजेक्शन
0: जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, अक्सर लोग नहीं लगाते हैं, टेडवेट का इंजेक्शन लगा करके छोड़ देते हैं, नहीं, टेडवेट के इंजेक्शन से ज्यादा बेहतर है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाइए, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: अच्छा रेबीज का इंजेक्शन और सांप का भी जो
0: ये जो भी इंजेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है, आपको सिर्फ जाना है
1: बस इतनी ही तकलीफ
0: करते हैं। अक्सर लोग जाते नहीं नहीं क्यों जाए और वो और इसका असर अभी नहीं होता, इसका असर बाद में असर पड़ता है,
1: कई लोगों को बहुत 5-5 साल बाद रेबीज का असर हुआ।
0: आपने फर्स्ट एड कर दिया, आपने फर्स्ट एड कर दिया है तो आप फर्स्ट एड करने के बाद इमीडिएटली 1-2 घंटे के बाद नियरेस्टली जो भी डॉक्टर है जो भी हॉस्पिटल पे जैसा वो बोलते हैं वैसा करना है।
1: डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि हर घर में फर्स्ट एड किट होना जरूरी

0: होता है, तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, क्या रखे हैं उसमें?
1: ये आपने बहुत अहम सवाल किया। हर घर में खाने के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा चीज बनता है, वो अरे जितना भी जंक फूड है सब अपने घर में वो रखते हैं और लाके खाते हैं, मगर फर्स्ट एड के नाम पे उनके घर में कुछ भी नहीं रहता है। और जब कोई हादसा हो जाता है तब वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के इधर उधर भटकते हैं और उसी हालात में और कुछ अनहोनी हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या हो, जैसे बैंडेज, तो बैंडेज 6 इंच का भी आता है, चौड़ा आता है, 8 इंच, जो भी एक बैंडेज वो रखें, कॉटन जिसको आपने रुई बताया, क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज इसलिए कि कभी मोच आ गया, मोच आने पे आप क्रेप बैंडेज से बांध दिए, बांधने के बाद यानी क्रेप बैंडेज से बांध दिए तो अगर हल्का फुल्का मोच आ जाता है तो वो क्रेप बैंडेज बांधने से ही वो ठीक हो जाता है, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैंडी प्लाश, किचन में लेडी काम कर रही है, कट गया तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, उसके लिए आपके पास हैंडी प्लास्ट है, आप हैंडी प्लास्ट को अपने फिंगर में उसको क्लीन कर लीजिए, कॉटन से क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद हैंडी प्लास्ट लगा दीजिए तो वो आपका वो सही हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी फर्स्ट एड देने से पहले अपना हाथ को पहले क्लीन कर लीजिए,
0: जो लोग फर्स्ट एड
1: दे रहे हैं, और देने के बाद या फिर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साफ पानी से अपने हाथों को धो लें और धोने के बाद तभी वो फर्स्ट एड दें। मैक्रोपोर टेप्स, स्प्रिट, ग्लव्स, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इसलिए कि आपने फर्स्ट एड दे दिया, फर्स्ट एड देने से देने के बाद आपने अपने हाथ को क्लीन किया, टॉवल हो सकता है आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से ही हाथ को क्लीन कर लीजिए। फेस मास्क, आइस पैक। आइस पैक इसलिए किसी का खून बहुत तेजी से बह रहा है, कट गया, छट गया, तो उसमें क्या होता है, हम आइस पैक लगाएंगे तो आइस पैक लगाने से क्या होगा, वो खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, मगर जलने के केस में हमको आइस पैक यूज नहीं करना है, इसका ध्यान देना है। हाँ, बेटाडीन चाहे आयोडीन सॉल्यूशन, थर्मामीटर। थर्मामीटर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में थर्मामीटर है ही नहीं, जो थर्मामीटर बहुत जरूरी है,
0: अगर
1: आस पास के पड़ोसी से मांगते हैं, खासकर जहाँ छोटे बच्चे यानी बच्चे हैं वहां तो थर्मामीटर बहुत जरूरी है, क्योंकि बुखार आप कैसे टेम्परेचर को अपना पे, फीवर कितना है, कभी कभी ऐसा होता 104-105 फीवर हो जाता है, लोगों को लगता नहीं फीवर है, तेज फीवर है, और उसी 104-105 फीवर में बच्चे को कन्वर्जन आ जाता है।
0: अक्सर ऐसा होता
1: जी, छोटा कैंची, साबुन, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन। ब्लड प्रेशर मशीन अगर आपके घर में कोई बीपी का दवा ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो बीपी मशीन रखना बहुत जरूरी है, कम से कम आप उनको कभी अगर उनका बीपी बढ़ जाता है तो आपको पता नहीं है, है? सिर्फ आप बोले उनको सर में चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा नहीं, चक्कर आने का कारण क्या है,
0: जैसे इसे कोई सिम्टम ऐसा हो तो तुरंत
1: ब्लड प्रेशर, ऑटोमेटिक बीपी मशीन है, किसी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, किसी को कंपाउंडर को बुलानी है, ऑटोमेटिक बीपी मशीन है। शुगर मशीन है, कभी देखिए शुगर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है, शुगर कम हो जाता है, शुगर मशीन वाइज स्ट्रिप्स हम चेक कर लिए। नेबुलाइजर, कभी देखिए बहुत सारे बहुत ऐसे घर के लोग घर में हैं जिनको दम्मा की बीमारी है, यानी सांस लेने का दिक्कत है, है? तो वहां पर क्या है, नेबुलाइजर अगर मशीन अगर आपके पास है तो आप उसको नेबुलाइज कर सकते हैं। आप फर्स्ट एड दे दी
0: इमरजेंसी के लिए,
1: इमरजेंसी के लिए
0: फर्स्ट
1: एड दे दी। टॉर्च, टॉर्च का रखने का ये कारण ये हो जाता है कि खास करके इस मौसम में, बरसात के मौसम में कीड़ा मकौड़ा कान में चला जाता है, और कीड़ा मकौड़ा जाने के बाद बच्चा परेशान चाहे बड़ा परेशान हो जाता है, उस साल में टॉर्च से हम देख सकते हैं कीड़ा गया है या कुछ और गया। अगर कीड़ा गया है तो हमको इमिडिएटली क्या करना है, उसमें नारियल तेल या कड़वा तेल, सुसुम,
0: अच्छा
1: सुसुम नारियल तेल या कड़वा तेल हल्का डालेंगे तो जो कीड़ा अंदर गया है वो कीड़ा बाहर आ जाएगा, या टॉर्च की रोशनी से, आपको बड़ा टॉर्च नहीं रखना है, पेंसिल टॉर्च रखना है, अच्छा। तो पेंसिल टॉर्च से रखिएगा तब तो वो आपको एयर में वो जाएगा, बड़ा टॉर्च रखिएगा तो वो तो जाएगा नहीं, रोशनी तो जाएगा, पेंसिल टॉर्च की रोशनी से जैसे आप कान में डालिएगा अगर कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर गया है तो वो बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट एड किट में रखें, और फर्स्ट एड किट में रखने के साथ कुछ मेडिसिन भी रखना बहुत जरूरी है, जो आपको जैसे कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा आप खा लिए तो गैस बहुत ज्यादा बन जाता है, इसलिए कुछ गैस की दवा, या बहुत तेज बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल का टैबलेट, हाँ, या कभी ऐसा होता है कि आपने दवा लिया और दवा रिएक्शन कर गया तो दवा रिएक्शन बहुत खराब होता है, और उस अगर आपके पास वक्त नहीं रहता उस इंसान को बचाने के लिए तो उस कंडीशन में आप गोली जो आती है गोली आप रख सकते हैं, अगर रिएक्शन ORS, कभी ऐसा होता है रात भी रात में बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, लैटिंग हो रहा है, और उससे क्या

0: किस्म का पानी निकल जाता है। अब पानी निकल जाने का आप डॉक्टर के यहाँ जाते जाते तो और पानी निकल जाएगा ना, तो आप उसको क्या कीजिएगा, पानी निकल तो ओआरएस पिलाते चले जाइए, काम कि उसका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो। ठीक है, पेन रिलीफ बाम, कभी चोट लग गया, कट लग गया, दर्द हो रहा है तो पेन रिलीफ बाम, पेन रिलीफ जेल आता है उसको लेके लगा दीजिए। जैसे मैंने जलने पे बताया क्रीम मैंने बताया, या कटने पे हो गया टी बैग क्रीम, इस तरीके से कुछ मेडिसिन कुछ ऑइंटमेंट भी फर्स्ट एड बॉक्स में रहना चाहिए। हाँ, सबसे अहम जो जरूरी बात यह है कि आप जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो मेडिसिन रख रहे हैं उसका सबका हर 3 मंथ पे या 6 मंथ पे आप उसका एक्सपायरी चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप दवा लाएं और दवा करके रख दिए और जब दवा यूज कर रहे हैं तो पता हुआ ये तो एक्सपायर कर गया। और हमेशा ये ख्याल रखें, दवा अगर आप स्ट्रिप को काट रहे हैं तो जहां पर एक्सपायरी लिखा रहता है उस हिस्से को ना काटे, उसकी आगे वाले हिस्से को काटे ताकि उस दवा का एक्सपायरी उसमें दिखा रहे, और देने से पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, ये फर्स्ट एड के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक सवाल यह और है कि फर्स्ट एड से रिलेटेड कहीं बिहार में क्या कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में आप हमारे सामने इनको बताएं कि कहाँ कहाँ इसकी पढ़ाई होती है या इसके बारे में बताया जाता है।
0: देखिए, आपने बहुत अहम सवाल आपने किया फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग के लिए आपको किसी हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 क्लास पास आउट हैं, अगर 10 क्लास पास आउट नहीं भी हैं तब भी आप फर्स्ट एड का ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बिहार में ये कोर्स होता है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसका कोर्स है, फर्स्ट एड का कोर्स है। और इसका कोर्स का फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपया कोर्स फ़ी है और 7 to 8 days का है।
1: अच्छा।
0: उस 7 से 8 दिन का ये कोर्स है। उस कोर्स में मैंने जितना अभी यहाँ पर आपसे बात किया ये सारे टॉपिक को वहाँ पर कवर किया जाता है, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी बताया जाता है, प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। और सपोज मान लीजिए आपने फर्स्ट एड कोर्स अभी किया 2025 में किया, तो इसको फिर आपको एवरी 3 ईयर्स पे जाकर के आपको रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल मतलब कि दोबारा फिर करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट एड का कोर्स कर लिया और अल्लाह ना करे कि कोई घटना आपके यहाँ घटे, घटे जब घटा नहीं तो आपने प्रैक्टिकली किया नहीं, तो हो सकता है कि आप भूल गए, तो इसलिए आप हर 3 साल पे जाकर के फिर उसको रीट्रेनिंग कर लिया कीजिए, रीट्रेनिंग कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या कि आप जो फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट मिलवाए, वो सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग किया। तो इसीलिए
1: कई जगह जैसे वॉलंटियर्स कई बार कहीं जाते हैं किसी भी इस तरह के हादसात वगैरह में, तो इसमें इन ये लोग भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आप अपने इलाके में आपकी पहचान अच्छी बन सकती है अगर आप ट्रेनिंग किए हुए हो, बहुत सारे लोगों की आप मदद कर लेते हैं तो अंदर से भी आप काफी सेटिस्फेक्शन होता है, खुशी मिलती है। डॉक्टर साहब, आज फर्स्ट एड के बारे में आपने बताया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपको भी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और आज बहुत अच्छा गुफ्तगू फर्स्ट एड पे हमने आपने किया।
2: जी सामईन, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि फर्स्ट एड में जितनी भी दवाएं हों उसको गाय बगाय चेक करते रहें कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं कर गया है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें। तो अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा, जिसका मौजू ही था फर्स्ट एड की अहमियत और ज़रूरत। इस मौजू पर सैयद मुमताज़ करीम से इजाज़ हुसैन की गुफ्तगू हो रही थी। आइए प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं।

अभी आप इब्राहिम अश्क की लिखी ये गसल सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं चंदन दास की आवाज़ में ये प्यारी गजल।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: Ah!
1: अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म दुश्मन का गीत सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म हंसते जख्म में। गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

हंसते जख्म फिल्म के इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म रामपुर का लक्ष्मण में। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन आर डी बर्मन की।

ये आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण मी। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म जाने मन का ये गीत।

ये आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म फकीरा में। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन शंकर जयकिशन की।

श्रोताओं, खेद है कि ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवाड़ी।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों।
1: जय हिंद लीली।
0: आपका अपना साप्ताहिक कार्यक्रम फुलबारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी रजनी दीदी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, माता पिता का कहना अवश्य मानते होंगे, है ना? उनका आदर सम्मान करते होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते होंगे, है ना? साथ ही साथ खेल कूद भी करते होंगे, गर्मी में अपना बचाव करते होंगे और साफ सफाई और स्वच्छता पर भी ध्यान देते होंगे। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय स्वस्थ रहने की आदतें के बारे में बात करने जा रहे हैं। रजनी दीदी आपको एक प्यारी सी सीख देने वाली कथा भी सुनाएगी। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति आधारित बच्चे मन के सच्चे भी सुनेंगे और अंत में समान ज्ञान में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के बारे में भी बातें करेंगे, जानेंगे उनके जीवनी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, है ना? तो बस प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। शरारत कतई नहीं, रेडियो सेट के और करीब आए और ज्ञान बुद्धि से भरा यह आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फुलवारी ध्यान से सुने। प्यारे बच्चों, कहा जाता है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, है ना? यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम पढ़ाई, खेल और अपने सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह की ताजी हवा हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। हमें प्रतिदिन व्यायाम और योग करना चाहिए, इससे शरीर मजबूत और फुर्तीला बना रहता है, है ना बच्चों? बच्चों, साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, है ना? रोज नहाना चाहिए और अपने कपड़े साफ रखने चाहिए। गंदगी से कई बीमारियां फैलती है, तो उससे बचने के लिए साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, रोज अच्छे से नहाना चाहिए और अपने कपड़े साफ रखने चाहिए। हरी सब्जियां, फल, दूध और दालें हमारे शरीर को ताकत देती है, तो ये सब अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। और सब्जियां और फलों खाने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, तो उसको धो लेने से स्वच्छ हो जाता है ना। तली भुनी और बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए। बर्गर, पिज्जा ये सब पौष्टिक नहीं होते हैं, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। या स्ट्रीट फूड जो रोड के किनारे बिकता है, बिना ढके खाना बिकता है, उसे नहीं खाना चाहिए। उसमें बहुत सारे धूल कण, मिट्टियां और जर्म्स बैक्टीरिया पनपते हैं, तो उससे बीमार पड़ सकते हैं हम। इसलिए ऐसे खाने का परहेज करना चाहिए और मम्मी के हाथ का बना खाना

अमृत समान होता है, उसे खाना चाहिए, उससे हम ताकतवर बनेंगे, है ना। और ताकत आने से आप पढ़ाई अच्छे से कर पाइएगा, बीमार नहीं पड़िएगा और अपने सपनों को साकार करिएगा। तो बच्चों, तली भुनी और बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है, खासकर गर्मियों में पर्याप्त पानी पीना चाहिए और घूट घूट करके पानी पीना चाहिए, एक बार एक लोटा या एक जग नहीं पीना चाहिए पानी। अगर प्यास लगे तो भी पीना चाहिए और प्यास नहीं भी लगे तो भी पानी पीते रहना चाहिए, है ना। पानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, साथ ही हमें समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए। अच्छी नींद से शरीर को आराम मिलता है। प्यारे बच्चों, केवल शरीर ही नहीं मन का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने घर, स्कूल और आसपास की जगहों को भी साफ रखनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण हमें बीमारियों से बचाता है। तो बच्चों, आज से हम सभी यह संकल्प लें कि स्वस्थ रहने की अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, है ना। तो बच्चों, मन को खुश रखने के लिए आइए कथा कहानियों की ओर चलते हैं। फिलहाल रजनी दीदी आप सभी को एक प्यारी सी सीख देने वाली कहानी सुनाने वाली है। आप सभी शांति से बैठें, शरारत कतई नहीं। आज के इस कहानी का शीर्षक है एकता में बल। कबूतरों की कहानी है यह। एक घने जंगल के पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर कई कबूतरों का एक झुंड रहता था। सभी कबूतर मिलजुल कर खुशी से रहते थे और वे सुबह दाना ढूंढने जाते और शाम को वापस अपने घोंसलों में लौट जाते। उसी जंगल में एक चालाक शिकारी भी रहता था। बच्चों, शिकारी किसे कहते हैं? शिकारी उसे कहते हैं जो जानवरों की और पक्षियों का शिकार किया करते हैं, उसको अपने हितों के लिए मार दिया करते हैं। तो चालाक शिकारी उस जंगल में छुपा हुआ था। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता था। एक दिन उसने पेड़ के नीचे अनाज बिखेर दिया जिस पेड़ पर कबूतर रहते थे और उसके ऊपर जाल लगा दिया। अगली सुबह जब कबूतरों का झुंड दाना खाने आया तो उन्हें वह अनाज बहुत पसंद आया और सभी कबूतर बिना सोचे समझे जमीन पर उतर गए और जाल में फंस गए। कबूतर खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब जाल में फंस गए। अब जब उड़ने की बारी आई तो सभी कबूतर घबरा गए और इधर उधर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाल मजबूत था। तभी झुंड के सबसे बुजुर्ग कबूतर ने कहा, अगर हम सब अलग अलग कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं बच पाएंगे, हमें एक साथ उड़ना होगा। और इंग्लिश में भी एक कहावत है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल। तो हमको एकता दिखानी होगी। वह कबूतर का जो बुजुर्ग कबूतर था वह बोला, हमें अपनी ताकत एक साथ लगानी होगी और एक साथ जाल लेकर उड़ना होगा। उसने सबको समझाया कि हम अपने पंख एक साथ जोड़ लें, जोर से फड़फड़ाएं तो एक दिशा में उड़े। उड़ने के लिए कबूतर या कोई भी पक्षी पंख फड़फड़ाता है ना, है ना, उड़ते हुए देखे हो ना आसमान में पक्षियों को। तो उसी तरह से हम सब एक साथ उड़े तो हम बच सकते हैं। और सभी ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में पूरा झुंड एक साथ ऊपर उठा और जाल समेत उड़ने लगा। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया।

और उसने सोचा, अरे इसके पास इतना दिमाग कैसे आया। लेकिन कबूतर उड़ते बहुत आसमान में उड़ने लगा, बहुत ऊपर आसमान में उड़ने लगा। और कबूतर उड़ते उड़ते एक चूहे के बिल के पास पहुंचा। एक चूहा जो पहले से उसका दोस्त था उसी के बिल के पास पहुंचा। और वहां चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतर कुतर करके काट दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। कबूतरों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और समझ गए कि अकेले कमज़ोर होते हैं लेकिन एकता में बहुत ताकत होती है ना बच्चों? अगर सभी उंगली मिलकर के एक मुट्ठी बनती है तो कितनी ताकतवर होती है मुट्ठी, है ना? इसी तरह सब मिलजुल कर रहेंगे तो सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक साथ रहेंगे तो बहुत ताकतवर बनेंगे, है ना? और बड़ी से बड़ी कामयाबी भी एक साथ रहने से मिल जाती है। एकता में बहुत बल होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिली और हमें मिलजुल कर साथ में एक साथ रहना चाहिए, है ना? जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान बना सकते हैं, है ना? अच्छी लगी ना ये कहानी बच्चों? और भी अच्छा लगने के लिए आइए आपको सुनवाते हैं यह प्यारा सा गाना। लकड़ी

0: बच्चों अच्छा लगा ना ये गाना।
1: आइए अब छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित सुनते हैं बच्चे मन के सच्चे।
2: कैसे हो आप लोग?
3: हम सब ठीक है दीदी।
2: खेल कूद करते हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
2: साथ में साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हो?
3: हाँ दीदी।
2: पढ़ाई में मन लगता है?
3: हाँ दीदी।
2: और घर में मम्मी पापा का हेल्प करती हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
2: अपने से छोटे भाई बहन का हेल्प करती हो कि नहीं? उसको पढ़ाती हो कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
2: अगर वो बदमाशी करे शरारत करे तो उसे डांटना भी, डांट के समझाना, प्यार से भी समझाना, ठीक है? और आप लोग जो पढ़ाई करते हो तो क्या क्या आता है आप लोगों को, कुछ सुनाओगी?
4: हाँ।
2: और सबसे पहले अपना नाम बताओ।
4: मेरा नाम शिवानी शेखर झा है।
2: और कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप?
4: आठ।
2: तो क्या सुनाओगी आज आप?
4: प्रेयर।
2: प्रार्थना?
4: हाँ।
2: तो सुनाओ।

0: राम प्रभु।
1: वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किसी भी शुरुआत से पहले प्रार्थना तो करनी ही चाहिए ना, इससे मन शांत होता है और पढ़ाई में मन लगता है।
0: जी दीदी। नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: वैष्णवी कुमारी।
1: कौन से कक्षा में पढ़ते हैं आप?
0: सातवीं।
1: सुनाना चाहती हैं?
0: हाँ।
1: तो सुनाइए, क्या सुनाना चाहती हैं?
0: दोहा
1: सुनाइए।
0: गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान।
1: वाह वाह बहुत अच्छा। सुनाना चाहती हैं?
0: हाँ।
1: तो सुनाइए, क्या सुनाना चाहती हैं?
2: वन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते, एक दीप चलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। उस कवि का नाम लाला जगदलपुरी है। नमस्ते।
3: उठकर खुशी गीत खुशी की गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ।
4: हाँ सुनाओ राधिका। हाँ बिल्कुल सुनाओ।
2: मैं आप सभी को एक गीत सुनाना चाहती हूँ, उस गीत का नाम मालिक तेरे।
4: हाँ हाँ बिल्कुल
2: है,
4: सुनाइए।

कि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे वंदे हम। जब जी

वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना।

0: देता
1: हूँ। वाह राधिका, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वॉइस में आपने ये गीत गाई।
0: नमस्ते दी।
1: नमस्ते,
0: मेरा नाम उज्जवल चौधरी है।
1: आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो?
0: पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है माँ का प्यार। एक परी थी।
1: हाँ हाँ।
0: एक बार उसने घोषणा की, जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे मैं इनाम दूंगी।
1: हाँ।
0: यह सुनकर सभी प्राणी अपने अपने बच्चों के साथ एक स्थान पर जमा हो गए। परी ने एक एक करके सभी बच्चों को ध्यान से देखा। जब उसने बंदरिया के चपटी नाक वाले बच्चे को देखा तो वह बोल उठी, छी कितना कुरूप है ये बच्चा, इसके माता पिता को तो कभी पुरस्कार नहीं मिल सकता।
1: अरे वाह।
0: बात सुनकर बच्चे के माँ के दिल में बहुत ठेस लगी।
1: माँ तो माँ होती है।
0: बच्चे को हृदय से लगा लिया और उसके कान के समीप अपना मुंह ले जाकर कहा, तू चिंता ना कर मेरे लाल, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए तू ही अनमोल है और तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, मैं कोई दूसरा पुरस्कार प्राप्त नहीं करना चाहती, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया की कोई भी चीज माँ के प्यार की बराबरी नहीं कर सकती।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने उज्जवल। माँ के प्यार जैसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है, और माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है दुनिया में सबसे मीठा और सबसे मधुर।
2: दीदी
1: नमस्ते।
2: राधिका कुमारी।
1: हाँ हाँ।
2: मैं कक्षा 5A में पढ़ती
1: हूँ। आप क्या सुनाना चाहती हैं?
2: लोगों को आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उस कविता का नाम दो दीप।
1: सुनाइए।
2: बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दिया जलता है, और दीप जलाने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। नव मंडल का सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हटता है। चमकीले किरणों से अपनी नीत नया सा बेरा लाता है। उसकी चमकीली किरणों से तन्मन जीवन का नाता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूल नहीं समाते। किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। एक दीप चलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। उस कवि का नाम लाला जगदलपुरी है। नमस्ते।
1: वाह वाह, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई।
3: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम अक्षराज है।
3: आप क्या सुनाना चाह रहे हैं आज?
4: मैं एक प्रश्न सोचना चाहती हूँ।
3: हाँ बिल्कुल सुनाइए।
4: कथा संग्राम विश्व के कल्याण की, धर्म धर्म आदियम सत्य सत्य कलेश कलम है, कथा पुरुषार्थ की।

0: वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: बच्चों अभी आप सुन रहे थे
2: बच्चे मन के सच्चे, आइए अब सामान्य ज्ञान की बातें करें। आज सामान्य ज्ञान में हम स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बातें करेंगे, जानेंगे। भारत के एक महान वीर स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी का नाम सुनते ही बहादुरी, देशभक्ति और साहस की भावना जाग उठती है। बच्चों वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1777 को हुआ था। वे उज्जैनिया राजपूत परिवार के थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में बहुत रुचि थी। जब भारत के पर अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेज भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। उस समय देश को आजाद कराने के लिए 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इस क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना बच्चों? पता है आपको? बच्चों सबसे खास बात यह है कि जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। बच्चों इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद उनका साहस युवाओं से भी अधिक था। यही कारण है कि उन्हें भारत के सबसे वीर योद्धाओं में गिना जाता है। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े। उन्होंने आरा और जगदीशपुर में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उनकी युद्ध नीति और बहादुरी से अंग्रेज डरने लगे। एक बार युद्ध के दौरान उनके हाथ में गोली लग गई, उनका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। तब उन्होंने अपने घायल हाथ को काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। यह घटना उनकी अद्भुत वीरता और त्याग को दर्शाती है। प्यारे बच्चों वीर कुंवर सिंह केवल एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि वे देशभक्ति की मिसाल भी थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि देश के लिए प्रेम और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। उम्र कभी भी देशभक्ति और देश सेवा के रास्ते बाधा नहीं बन सकती। आज भी बिहार और पूरे भारत के लोग उन्हें गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं। उनके सम्मान में कई विद्यालयों, सड़कें और संस्थान बनाए गए हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। तो बच्चों हमें भी वीर कुंवर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए और हमेशा बहादुर और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। देश और समाज के लिए हमेशा अच्छी कार्य करनी चाहिए। बच्चों अब करंट अफेयर यानी वर्तमान घटनाक्रम के बारे में कुछ बातें हो जाए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, है ना? भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चंद्रयान 3 मिशन भारत ने भेजा था। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। तो ये तो थी सामान्य ज्ञान की बातें। बच्चों आज की फुलवारी कार्यक्रम में बस इतना ही, और भी बातें करेंगे अगले अंक में इसी दिन इसी समय पर। तब तक मुझे यानी अपनी रजनी दीदी को दीजिए इजाजत, प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ। तब तक आप खुश रहिए, समय पर सब कार्य करिए, बड़ों का सम्मान करिए। जय हिंद।

फुलवारी। अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। सूत्रधार थे रजनी कुमारी और प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारी पहली सभा अभी जारी है। सुनते हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। विषय है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मनुराज शर्मा विशेषज्ञ के रूप में, और उनसे बातचीत करने के लिए श्वेता।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्वेता। श्रोताओं, आजकल मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक भारी बारिश, तो कभी सूखे जैसी स्थिति। ऐसे में एक सवाल हम सबके मन में आता है कि आखिर प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और पर्यावरण पर वर्षों तक शोध किया है। मैं स्वागत करती हूं आज के अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक, जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर मनुराज शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम हेलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में सवालों से जुड़ने से पहले मैं आप सभी को बताते चलूं कि डॉक्टर मनुराज शर्मा विशेष रूप से शोध और शिक्षण से जुड़े हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु विज्ञान, आपदा प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग एवं GIS, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शर्मा इंडिया मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के आजीवन सदस्य होने के साथ साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आउटरीच कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे हैं। तो चलिए, आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। सबसे पहले तो हम और हमारे श्रोता डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन में हम लोग पर्यावरण शब्द सिर्फ किताबों में ही पढ़ते थे, लेकिन आज ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आखिर पर्यावरण को सरल भाषा में कैसे समझा जाए?
1: थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैम आपका कि बड़ा ही रोचक सवाल आपने पूछा है कि पर्यावरण को कैसे समझना चाहिए या पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर इसको सरल रूप में समझें तो पर्यावरण को ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा भूदृश्य है जिसके ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में घटने वाली सभी घटनाक्रमें हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं। ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें कि भौतिक तत्व भी हैं, जैविक तत्व भी हैं, ठीक है, और इनके आपस में

0: इसको कहते हैं इंटरप्ले, ठीक है, इसकी वजह से।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि ये कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है तो हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इनके सवाल को। जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम।
1: जी नमस्कार, अपने सवाल को पूछें।
2: जी मैं मोहन पासवान गांव बसतपुर से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। पर्यावरण संरक्षण का जिम्मेवारी देश दुनिया के सभी लोगों का है, क्योंकि सभी लोग जहाँ जीते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। तो लोग किस तरह के विचारों कदमों को अपना कर हर दृष्टिकोण से पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है सर। दूसरा है सर, जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के हिसाब से कितने पेड़ लगना चाहिए पूरे देश में जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे सर, और धरती पर जीवन बिताने वाले लोग और जीव जंतु स्वस्थ और सुरक्षित रहे सर। तीसरा है सर की ईमानदार राजनेता एवं अधिकारी पदाधिकारी मजदूर किसान चाहते हैं देश के प्रत्येक राज्य में पेड़ लगे, किसानों को मुफ्त पेड़ दिया जाए, लेकिन मुफ्त पेड़ न दिया जाता है न पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाता है। किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण होगा सर?
1: जी बहुत अच्छा सवाल, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे।
0: धन्यवाद, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सबसे पहली बात ये हो जाती है कि पर्यावरण की जिम्मेदारी या पर्यावरण के प्रति जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अगर तो क्षेत्र हमारा है, राज्य हमारा है, शहर हमारा है, तो कहीं ना कहीं इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। भारत के अंदर में जो आर्टिकल है 51A, ठीक है, वो ये कहता है कि आपके प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो हमारे अगल बगल में दिखने वाले सभी जीव जंतु, तालाब, जंगल, इन सबको बचाने के लिए हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहना कि सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये हमें अपनी जिम्मेदारियों से बचने वाली बात हो जाएगी। दूसरा आपका महत्वपूर्ण सवाल था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर में कितना लगभग जो है क्षेत्रफल वनों के तहत में होना चाहिए जहाँ पे पेड़ लगने चाहिए। तो भारत के अंदर में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको फिर से इसकी परिभाषा को बदला है और ये कहा है कि पहले तो देखिए वनों की जो परिभाषा थी, इसे कहा जाता था कि जो जंगल है सिर्फ उसी को ही वन काउंट करते थे, पर अब क्या है कि शहरी क्षेत्र के अंदर में भी कुछ पेड़ों का झुरमुट जो कहीं पे देखने को मिल सकता है, कुछ पेड़ों का जो एग्लोमरेशन है कहीं पे, यहाँ पे 15 से 20 पेड़ देखने को मिल रहे हैं, वो भी फॉरेस्ट या ट्री कवर में अब काउंट हो सकते हैं। तो एक किसी भी स्वस्थ क्षेत्र के लिए कम से कम 15 से 20% का जो एरिया है वो ट्री कवर में होना चाहिए या वो वन का क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तीसरा एक आपने सवाल पूछा था कि क्या किसानों के लिए पेड़ों को देने की जिम्मेदारी, देखिए इसमें ये जो काम है ये हमारे हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर तो आप हिली स्टेट्स के अंदर में हैं तो वहाँ पे की सरकारें, जैसे हिली स्टेट्स का मतलब हो गया पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आसाम है, सिक्किम है, ठीक है, मेघालय हो गए, ऐसे राज्यों के अंदर सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। इको फार्मिंग भी कहा जाता है कि पेड़ों के साथ खेतों के साथ साथ बहुत सारे पेड़ भी लगाए जाते हैं। इनके अलावा कई मैदानी क्षेत्र की भी जो जहाँ पे किसान हैं, ठीक है, उनको भी सरकार बहुत सारी मदद देती है और ये प्रमोट करती है कि आप अपने ही क्षेत्र के जो लोकल उगने वाले पेड़ पौधे हैं आप उनको प्राथमिकता दीजिए और वो वहाँ पर रह भी पाते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। इसी दिशा में हमारे बिहार के अंदर में भी बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने एक कार्यक्रम चला है, इसको कहते हैं कि हेरिटेज ट्रीज, ठीक है, विरासत वृक्ष। उसमें क्या है कि गांवों के अंदर में किसी शहरी क्षेत्र के अंदर जो बहुत पुराने पेड़ हैं, ठीक है, जो विरासत के रूप में, जैसे कि कटहल है, पीपल हो गया, ठीक है, जो पुराने पेड़ हमारे वाइट फिग्स हैं, ठीक है, इनके संरक्षण की बात करती है। अगर ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी संस्थानों के अलावा का ये चीज़ें हम भी खुद समझेंगे तभी हमारा प्रयास सार्थक हो पाएगा। और ऐसे पेड़ों को बचाने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही कुछ प्रयास करे, इसके लिए हमारे समाज के जितने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, जो NGOs हैं, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय एड्स हैं, वो भी इस क्षेत्र में आके काम करती हैं, काम ऑलरेडी कर भी रही हैं, ठीक है, और इस ढंग का प्रयास कर भी सकती हैं। जी धन्यवाद
1: डॉक्टर शर्मा। आज हमारे एक अगले श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चलिए चल के देखते हैं इनके सवाल क्या है। जी नमस्कार।
3: नमस्कार। जी मैं अरुण कुमार लाल दास सुंदरपुर बीरा से बोल रहा हूँ। मेरा एक ज्वलंत प्रश्न है आपसे कि दरभंगा क्षेत्र जो है इसमें महाराज दरभंगा ने

0: इक्यावन बीघा में एक पर्यावरण के कारण गाछी बनाया था आम का, उसको सारे के सारे काट दिए गए। इसी तरह दरभंगा में हर जगह पेड़ कट रही है, प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? ये प्रशासन जो है इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है दरभंगा में?
1: जी अरुण जी धन्यवाद। ये आपने एक अपने क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी संवेदनशीलता है जो जिसने आपके अंदर में इस प्रकार के प्रश्न को उठाने का जज्बा पैदा किया, तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए हमारे पर्यावरण के प्रति जिस पेड़ों को हम देख पा रहे हैं, कई बार पेड़ों को काटना आवश्यक होता है। विकास और पर्यावरण के बीच में अक्सर हमें परस्पर द्वंद्व देखने को मिलता है, तो कई बार विकास करने के लिए भी पेड़ों का काटा जाना ज़रूरी होता है। उसकी जगह पर सरकार कई बार कॉम्पनसेटरी ट्री प्लांटेशन भी करती है, उन क्षेत्रों में जहाँ पे पेड़ पहले से नहीं लगे वहाँ लगाने का प्रयास किया जाता है। विकास के लिए कई बार पेड़ काटना आवश्यक भी होता है। दरभंगा चूंकि जिस प्रकार से अब इसका विस्तार हो रहा है देख पा रहे हैं हम, ठीक है, जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो पा रही हैं, ठीक है, जिस प्रकार की यहाँ की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कई बार हो सकता है कि जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनको उनके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी होती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी होती है। इन चीज़ों को भी समझना कई बार ज़रूरी होता है, जैसे कि अब दरभंगा के अंदर में एम्स हैं, कई हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहा है, तो इनसे कई लोगों के लिए अवसर उत्पन्न पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए कई बार हमें प्राकृतिक क्षेत्रों से छेड़खानी करनी पड़ती है। पर ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर कहीं पे पेड़ कट रहे हैं तो हम जैसे नागरिकों को, जिम्मेदार नागरिकों को ये चाहिए कि हम नए क्षेत्रों के अंदर में और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, ठीक है। या कई बार ये भी कहते हैं जो नया कल्चर आ गया टेरेस फार्मिंग का, ठीक है, आप अपने घर की छतों के ऊपर में भी आप पौधों को लगाएं, हैंगिंग गार्डन्स के रूप में आप फ्लाईओवर्स के नीचे में है जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और वैसे पौधे लगाएं जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेड है, ठीक है, या वैसे पौधे जो प्रदूषण को कम कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं। जी
2: हमारे अगले श्रोता, आइए इनके सवाल को सुनते हैं। जी नमस्कार।
3: हाँ सर मैडम नमस्ते, मैं डॉक्टर साहब को नमस्ते और पूरा दीदी क्या कर रहे हैं सर, वाला रेडियो स्टूडेंट साहब को नमस्ते। और हमारा जो है पर्यावरण वाला जो विचार है वो देखिए, एक आदमी को पेड़ लगाता है दूसरे आदमी पेड़ को काटना शुरू कर देता है, उससे समस्या हमारा समाधान नहीं मिल पा रहा है, समझे ना मैडम?
2: जी जी।
3: और दूसरी बात क्या है, पेड़ लगाना चाहिए, जैसे उसके बच्चे को पालते हैं उसके बच्चे की तरह ही उसको अंत तक उस पेड़ को छोड़ देना चाहिए। जैसे कल परसों में ही आपको दरभंगा स्टेशन से ही आया था कि मतलब कई बीघा में उसका जड़ है, तो जब पेड़ है तब ना जड़ है, पेड़ नहीं रहता तो एक बीघा डेढ़ बीघा में कहाँ से जड़ होता मैडम?
2: जी आपका कहना बिल्कुल उचित है, लेकिन आप अपने सवाल को पूछे, हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे।
3: जी जी मेरा नाम संजय सरसा परमपुर पूर्वी से बोल रहा हूँ।
2: जी
3: जी पेड़ को काटना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, जिससे जनसंख्या को बढ़ रहा है तो उस पर पेड़ को भी बढ़ा दे। जंगल तो आजकल देखिए कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जंगल कहाँ गया सब? पहले को सात पाँच कोस में जंगल रहता था, तो घर के बाहर भी एक पेड़ नहीं मिलता कि कहीं छा में लोग 10 मिनट बैठे हैं।
2: जी बिल्कुल सही बात,
3: पेड़ नहीं है तो सर मजबूरी पब्लिक अगर करता है गद्दारी तो उसका बहुत भुगतना भी पड़ता है। हम जैसे आप जैसे आदमियों को जो कहीं सफर में जाते कहीं बैठने की जगह नहीं मिलता है, तो हम लोग यही चाहते हैं किसी को ऐसे पेड़ लगाइए, पेड़ को बर्बाद मत कीजिए, पेड़ को काटिए मत, पानी कहीं बह रहा है तो पानी को रोकिए, पानी को रोक कर बहने नहीं दीजिए। हर इंसान अगर ऐसा सोच ले तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं, अगर नहीं सोचे तो वही परेशानी का कारण बनता है, दिन दिन आयो दिन परेशानी झेलना पड़ रहा है मैडम।
2: जी आपने बहुत अच्छी बात कही, अगर आपके बात को पूरे समाज के लोग ध्यान देते हैं तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश होगा हमारे सभी श्रोताओं के लिए। तो चलिए आपकी बातों के साथ चलते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले सवाल की ओर। डॉक्टर शर्मा, आपने जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी काम किया है, तो क्या सचमुच में मौसम बदल रहा है या फिर हमें ऐसा महसूस हो रहा है?
1: देखिए पिछले 100 वर्षों के इतिहास, जलवायु के इतिहास को देखें तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, ये जलवायु परिवर्तन जो दिख रहा है बिल्कुल सच है, ठीक है। पिछले 125 सालों के अंदर में तापमान की वृद्धि जो है लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुकी है, जिसका जो परिणाम है या प्रभाव हम कह सकते हैं डायरेक्टली, तो वो ये है कि पहला चीज़ कि अभी तक सिर्फ ज़मीन गर्म हो रही थी, ज़मीन के साथ साथ में अब हमारे महासागर भी बहुत सारे गर्म हो रहे हैं। महासागर के पानी गर्म होने के उसका प्रभाव में क्या चीज़ है कि वहाँ के जीव जंतु उनके जीवन ओशनिक प्रोसेसेस के ऊपर में,

0: वहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवात, ठीक है, ये सब चीज़ों के अंदर प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन एक आज की सच्चाई ही है और इसका जो हमें प्रभाव मुख्य रूप से दिख रहा है वो पूरे विश्व में बदलता मौसम का स्वरूप, कहीं कई जगहों के ऊपर में एक्सट्रीम जिसको कहते हैं क्लाइमेट, अत्यधिक वर्षा, जैसे मुंबई के अंदर में, कोलकाता के अंदर में एक दिन के अंदर में 250 mm से ज़्यादा बारिश का हो जाना, हीट वेव्स का देखा जाना जिसमें कि तापमान की वृद्धि है लगातार 5-6 दिनों में 45-46 degrees तापमान की वृद्धि का हो जाना, ये एक अब कॉमन सी बात हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज अब एक रियल घटना है जी।
1: डॉक्टर साहब, जब हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बिहार में रहते हैं और लगभग हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिलती है, कभी सूखे की स्थिति आ जाती है, तो इसमें जलवायु परिवर्तन की कहाँ तक भूमिका है?
0: देखिए, बिहार जलवायु के दृष्टिकोण से एक बहुत ही रोचक विषय भी है और एक बिहार जो हमारा है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एक ही समय में उत्तर बिहार के अंदर में बाढ़ की समस्या होती है जबकि दक्षिण बिहार में उसी समय में सुखाड़ की समस्या भी होती है। बिहार के अंदर में जलवायु का जो प्रभाव है, ठीक है,

0: ये कहाँ तक भूमिका है?
1: देखिए, बिहार जलवायु के दृष्टिकोण से एक बहुत ही रोचक विषय भी है, और एक बिहार जो हमारा है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एक ही समय में उत्तर बिहार के अंदर में बाढ़ की समस्या होती है, जबकि दक्षिण बिहार में उसी समय में सुखाड़ की समस्या भी होती है। बिहार के अंदर में जलवायु का जो प्रभाव है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे मानसून से ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। अब बारिश का भी जो ज़्यादातर प्रभाव है वो है कि उत्तर में हमारे हिमालय हैं, जिनके ऊपर में नेपाल के हिमालय, वहाँ पे अत्यधिक बारिश हो जाने की वजह से भी हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बिहार के जो क्लाइमेट को अगर समझना है, तो बिहार के क्लाइमेट्स में अगर पिछले अगर मैं कहूँ 100-150 सालों को देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ का वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हुई है, ठीक है, शहरों का जो जाल बिछा है, कंक्रीट जिस ढंग से बिछाए गए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिहार, और जिस ढंग से प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है, इन सब का जो समग्र रूप में प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे एक विश्वविद्यालय के अंदर शोध हुआ जिसमें ये हमने पाया था कि बिहार के अंदर में पिछले 60 वर्षों में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो चुकी है। जो क्षेत्र पहले बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती थी, वो क्षेत्र भी अब सूखा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब पिछले 15 वर्षों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये भी है कि हमारा पूर्वी भारत का जो भाग है उस उधर कम बारिश हो रही है, और पश्चिमी भारत जिसको कहते हैं कि अरेबियन सी की ब्रांच है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से अब राजस्थान में, गुजरात में या दिल्ली में अब आप मानसून से पहले भी बारिश की घटना सुनने को मिलती है, जबकि बिहार है वो काफ़ी हमारा सूखा रह जा रहा है। और इसका एक प्रभाव ये भी देखने को मिल रहा है कि बिहार के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं इकोसिस्टम, वो देखने को मिलती है, वो है दैट इज़ वेटलैंड्स या चौर कहते हैं। तो ये चौर भी धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहे हैं, बिकॉज ये चौर जो है, जो हमारा वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, इसकी लाइफ ही डिपेंड करती है कि वर्षा कितनी प्राप्त हो रही है, और वर्षा जिस ढंग से घटती जा रही है, तो आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि बिहार के अंदर में जो हमारा वेटलैंड है या हमारे क्षेत्र है, हमारी कृषि है, इनका भी स्वरूप कुछ बदला हुआ नजर आएगा।
0: श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन है। अगर आपके मन में भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो फोन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जरूर जुड़ें। हमारा टेलीफोन नंबर है 9430029353। एक और टेलीफोन नंबर है 0627222481। विषय है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक आम आदमी के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि पर्यावरण बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो क्या ये सही है या फिर हम सभी को मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें सरकार को जो करना होगा वो करेंगे, ये बचपन से सुनते आए हैं, दिमाग में ये कहीं फिट है ये बात, तो इस पर आप अपने विचार बताएं।
1: जी श्वेता जी, देखिए, किसी भी राज्य के अंदर में या देश के अंदर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो मुख्य जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं होती तो सरकार की ही है, ठीक है, पर सरकार का जो रोल है, ठीक है, वो बहुत ही सीमित है। सरकार हमारी कई ढंग से काम करती है, जिसमें क्या है, राशियों का आवंटन करना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियों का निर्माण करना, ठीक है, उसको रेगुलेट भी करना टाइम टू टाइम, ठीक है, और कई बार इनसे संबंधित शोध को बढ़ावा भी देना। पर ये कहना कि पूर्णतः ये सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल गलत होगा।
0: जी, हमारे साथ जी, हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैम।
0: जी अपने सवाल को पूछिए।
2: मैम, मैं दिनेश मिश्रा मधुबनी जिला से टीचर हूँ, बोल रहा हूँ।
0: जी जी।
2: मेरा प्रश्न है आज के संदर्भ में कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो बढ़ता प्रकोप है, उसमें कहीं कहीं सामाजिक और सहयोग सरकारी उदासीनता दोनों ही मतलब देखने को मिलता है। मतलब उदाहरण के लिए आ जाए कि पेड़ कटना अनिवार्य है, अगर जो ऐसा जरूरी पड़ जाता है, बूढ़े पेड़ है, सूखा पेड़ है, वो काटना जरूरी है, लेकिन कुछ बिचौलिया इसमें लग करके कुछ पेड़ को सत्यानाश करते हैं, जिसमें कहीं न कहीं वन विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, मैं उन्हें भी दोषारोपित करता हूँ। दूसरी बात कि हम जैसे ग्राहक कहीं सामान लेने जाते हैं तो निसंदेह प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, झोला लेके जाना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है, लोग जाते हैं लेकिन दुकानदार पॉलिथीन दे देता है और लोग व्यवस्था पॉलिथीन ले लेता है,

0: दुकानदार ने कहे कि मैं पॉलिथीन देना बंद कर दिया, झोला लगी अपना ले जाइए, तो लोग मतलब अपना झोला स्वयं ले जाकर ले जाना पसंद करेंगे। दूसरी, कभी कभी दुकान पर छापेमारी होती है प्लास्टिक के लिए, और कुछ ले दे करके मैन्यू कर लिया जाता है, फिर पुनः वही दुकानदार प्लास्टिक का यूज करना शुरू करता है। तो प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो सबसे बड़ा जो है पर्यावरण दूषित करने का ये है कि जल अवशोषित नहीं हो पाती है,
1: जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम अब आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ।
2: धन्यवाद विवेक मिश्रा जी। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की आप बात कर रहे थे, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई वही इकलौता मुख्य कारक नहीं है, उसके अलावा कई सारे कारक और भी हैं। अभी जो हालिया बीते 30-40 वर्षों के अंदर में जो हमें वैश्विक उष्मीकरण, जिसको कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग आप, ठीक है, वो देखने को जो मिल रहा है, उसका एक प्रमुख कारण रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, हरित गृह प्रभाव के वजह से जो हमें ग्लोबल वार्मिंग वो देखने को मिल रही है। और उसमें एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जो इसमें योगदान दे रहा है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, परिवहन, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हमारे जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से कई प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन है, ठीक है, इसका उत्सर्जन हो रहा है। और इन सब का जो है कलेक्टिव वे के अंदर में हमें एक इफेक्ट जो उसको देखने को मिल रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, या जैसे इसको कहना चाहिए एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये मानव जनित है पूर्णतः, ये प्राकृतिक नहीं है। दूसरा, आपने एक बात कही कि प्लास्टिक के ऊपर में बैन लगना चाहिए। देखिए, प्लास्टिक के ऊपर में हमारे सरकार ने कई बार कहा है, ब्लैंकेट बैन लग चुका है, पर कोई भी बैन तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब हमारे किसी समाज के रहने वाले वहाँ के लोग जागरूक हो पाएँ। यहाँ पे हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि विश्वविद्यालयों के अंदर में, स्कूलों के अंदर में छात्रों को हम कई इस चीज़ों के बारे में, प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दें, उनको समझाएं कि प्लास्टिक जलाने के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, प्लास्टिक के इस्तेमाल से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, प्लास्टिक किस प्रकार नहीं सड़ता है, इनके महत्व को समझाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई चीज़ें और भी हैं, मुझे लगता है कि एक सुझाव के तौर पर ये बताना हो तो ये भी कहना चाहिए मुझे कि हमारे साल के अंदर में दो बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं, एक तो 22 अप्रैल है जिसको कहते हैं अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, और एक 5 जून को होता है हमारा पर्यावरण दिवस। इन दिवसों के ऊपर में हमें कई प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए, जिसमें कि वृक्षारोपण हो, प्लास्टिक के ऊपर में कुछ नुक्कड़ नाटक या कुछ कार्यक्रम इस प्रकार से कराएं ताकि जन जागरूकता बढ़े। जब हमारे समाज के लोग, हमारे सोसाइटी के लोग जागरूक होंगे, समझदार बनेंगे, ठीक है, तभी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और ये चीज़ें तभी रुकेंगे भी। जी
1: जी हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अभी जैसे कि हमारे एक श्रोता ने सवाल पूछा था कि इतनी गर्मी पड़ रही है, घर से निकलना जहाँ बहुत दूभर है, मुश्किल है, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि घर से बाहर निकलिए। तो पहले होता था कि घर से बाहर निकले तो छायादार पेड़ हैं बहुत सारे, पीपल के पेड़ हैं तो बड़ के पेड़ हैं, इस तरीके का लगता था। लेकिन अब तो है कि घर से बाहर आने पर ना तो पेड़ मिलते हैं, और जब पेड़ नहीं है तो छाया के बारे में तो सोचना बहुत ही मुश्किल बात है। तो क्या हम सभी जिम्मेदार हैं इस हालात के, या पेड़ों की कटाई इसकी एक खास वजह है?
2: देखिए, गर्मी का जिस ढंग से बढ़ना है, इसके पीछे में कई सारी वैश्विक कारण भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि इस वर्ष अत्यधिक गर्मी देखने को मिल रही है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है एक वैश्विक घटना जिसका नाम है एल नीनो, जो कि आजकल।
1: डॉक्टर साहब, हम लोग अपने सवाल के जवाब को जारी रखेंगे, लेकिन इसके पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं इनके सवाल को। जी नमस्कार।
3: हेलो।
1: हाँ जी, प्रणाम।
3: प्रणाम प्रणाम
1: जी, आप अपने सवाल को पूछिए।
3: पर्यावरण के विषय वस्तु में सर मिट्टी और जल भी आता है ना?
1: हाँ जी।
3: मिट्टी हमारा कहने का आती है कि मिट्टी विषाक्त बन रहा है, बनाती उर्वरक के कारण। हेलो।
1: हाँ हाँ, आप सवाल पूछिए।
3: मिट्टी फर्टिलाइजर के चलते विषाक्त बन रहा है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है
1: जी।
3: और मिट्टी गर्म ज्यादा, उसके कारण भी गर्म हो रही है। दूसरा फैक्टर है जल, तो जल जो है, पहले जल में शैवाल उत्पन्न होता था, अब वह शैवाल का उत्पन्न खत्म हो गया।

0: के कारण जल का शुद्धिकरण समाप्त हो गया है। इस सवाल के प्रति तो कुछ सुझाव हमको जानना चाहते हैं।
1: जी धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। आपका सवाल जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण जो पहलू है हमारा, वो है मृदा के ऊपर में, सॉइल से आप ज़्यादा इस सवाल को कनेक्ट कर रहे हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी है। देखिए, पर्यावरण के अंदर में हम जितने भी अगल बगल में पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो कृषि कर पा रहे हैं, जो हमारा जल है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। और बीते जो शतक है हमारा, उसके अंदर में कृषि जिस ढंग से अपना स्वरूप उसने बदला है, हम जैविक खेती से अब फर्टिलाइज़र के द्वारा की जाने वाली खेती की तरफ हम ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उस फर्टिलाइज़र के अंदर में भी हम कई प्रकार के विषाक्त फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम नहीं है, इसके अलावा कई प्रकार के हानिकारक तत्व जैसे कि यूरिया जैसी चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारी मात्रा के अंदर में है। तो हम एक बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अगर हम जीवन अच्छा चाह रहे हैं, पर्यावरण के प्रति अगर हम सजग हैं, तो हमें फिर से कहीं ना कहीं जैविक खेती की तरफ वापस मुड़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि समझना ज़रूरी है, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ ओवर यूज़। हम अपने खेतों को क्या करते हैं कि साल भर उसमें से कुछ ना कुछ खेती करते रहते हैं, कुछ ना एक फसल काटी है तो दूसरा की 15 दिनों के बाद में ही आलू की बुआई कर दी है, अगर उससे कुछ हो पाया कुछ समय के बाद तो फिर हमने उसमें चना लगा दिया या कुछ और लगा दिया। हम अपनी मिट्टी को दोबारा पुनः अपने प्राकृतिक स्वरूप में आने का समय नहीं देते हैं, या कहते हैं इसको कहा जाता है हीलिंग होना। ठीक है, ठीक होने के लिए मिट्टी को भी समय छोड़ना पड़ता है हमें। ठीक है, तो कई राज्य सरकार जैसे कि हरियाणा है, तो वो आपको अपने खेतों को खाली छोड़ने के लिए इसमें फसल ना लगाएं तो वहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन भी देती है। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी देना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी उस क्षेत्र की अच्छी रह सके, बच सके। और जो ओवर यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन से हमेशा कुछ ना कुछ पैदावार करते रहना, ये बहुत ही गलत सिद्धांत है। ठीक है, कुछ समय हम मुझे लगता है कि खेती करने के लिए हमें कुछ अपने खेतों को खाली समय छोड़िए ताकि उसके अंदर में जो हमारी अर्थवॉर्म्स हैं वो ग्रो कर सके, मिट्टी की जो अपनी जो कैपेसिटी है जिसमें के अंदर में वो अपने नाइट्रोजन या फॉस्फोरस को रिप्लेनिश करता है, वो दोबारा हो सके, तभी ये प्रयास संभव हो पाएगा। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही हमारा जो पर्यावरण है वो बैलेंस्ड नज़र आएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आपने रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी आधुनिक तकनीकों पर भी काम किया है। हमारे श्रोता आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि ये सभी तकनीकें पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद कर सकती हैं।
1: देखिए, उससे पहले कि मैं और ज़्यादा बताऊँ, थोड़ा सा इस बारे में बता लेता हूँ कि रिमोट सेंसिंग और GIS क्या चीज़ है। रिमोट सेंसिंग, इसको कहते हैं सुदूर संवेदन। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें कि सैटेलाइट के माध्यम से हम अपने पर्यावरण की निगरानी करते हैं, जिसमें कि हम ये भी जान पाते हैं कि हमारे पर्यावरण के अंदर में जलाशय कितने हैं, जलाशयों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है, वनों का क्षेत्र कैसा है, वनों का स्वास्थ्य कैसा है, ऐसी कई प्रकार की जानकारी हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जितने भी तकनीकें हैं, तो भारत इस दिशा के अंदर में भारत के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए डेडिकेटेड हैं, जिसमें कि जैसे कि रिसोर्स सेट है, रडार सेट हो गया, अमेरिका का लैंड सेट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसका डेटा फ्रीली अवेलेबल है अब हमारे पास में, जिसको छात्र देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कई हमारे राज्य की सरकारें भी जो हैं इस आंकड़ों का इस्तेमाल करती हैं ताकि ये जान सकें कि हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य कैसा है। तो ये तकनीकें, मुझे लग रहा है ये तकनीक जो है आने वाले समय में हमारे और काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी, ताकि हम ये भी जान सकें कि हमारा पर्यावरण का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है और उसका दर कैसा है। जी,
2: लोग कहते हैं कि प्रकृति से हमारा रिश्ता कम होता जा रहा है, मोबाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर हो गया है, क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है?
1: देखिए, प्रकृति से और हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि माँ का बेटे के साथ हो सकता है। हो सकता है कि कुछ समय की नाराज़गी रहे, पर कहीं ना कहीं जो हमारा आत्मीय संबंध है वो हमेशा रहता ही है। तो हम चाह के भी प्रकृति से दूर नहीं जा सकते हैं। हम जैसी हमारी जीवन शैली हो गई है, तो उसमें ये समझने की आवश्यकता है कि मानव का जीवन जो है वो पूरा पूरा प्रकृति या पृथ्वी के आसपास ही हमारा समर्पित है। हमारा मुख्य भोजन जो हो गया, हमारा रिक्रिएशन भी हमारी जो है सैर सपाटा मनोरंजन के लिए, ठीक है, हम कहीं ना कहीं प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी जो हमारी औषधियाँ हैं वो भी प्रकृति से ही कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो हम चाहे भी कि हम प्रकृति से दूर हो जाएँ, तो हम हो नहीं सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि भले ही हम डेवलप कर जाएं, हम अगर पढ़ लिख जाएं, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम प्रकृति से दूर हो जाएं। अगर व्यक्ति वाकई में पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उसकी प्रकृति के प्रति या प्रकृति के प्रति समर्पण और प्रकृति से जुड़ाव वो धीरे धीरे

0: ज़्यादा होता चला जाएगा, आप महसूस कर पाएंगे कि उसके लेवल का जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो दुनिया के और किसी भी सिस्टम के अंदर में नहीं है। और हमें अपने आप को कभी भी पर्यावरण से या प्रकृति से अलग करके नहीं समझना चाहिए, हम प्रकृति के ही पार्ट हैं और हमारा निर्माण प्रकृति ने ही किया है।
1: जी डॉक्टर मनु, आपको याद होगा कि शायद हम लोग बचपन में सुनते थे कि मौसम अपने समय पर आता है, घर में बातें होती थी इस तरीके की, लेकिन अब तो सब कुछ अनिश्चित हो गया है, कुछ पता नहीं चलता कब बारिश आएगी, कब गर्मी तेज होगी। लोग कहते थे कि जेठ का महीना, हिंदी महीने के बारे में बात करते थे, तो क्या जेठ का महीना है, तपती हुई धूप है इस तरीके का, तो कभी तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मगर ये कुछ समझ में नहीं आता है कि मौसम करवट क्यों ले रहा है।
0: देखिए, करवट लेना ही मौसम की प्रकृति है। कई बार लोग मजाक में भी एक दूसरे को यही बोलते हैं, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे,
1: जी
0: ठीक है। तो ये हालांकि लहजा वैसा है, पर मानसून हमारे मौसम का जो प्रकृति ही ऐसी है कि वो उसके स्वभाव में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, हमारे मौसम किसी प्रकार किसी क्षेत्र में कैसा होगा, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। वहाँ की वायुमंडल स्थिति कैसी है, वहाँ का वायु दाब कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, यहाँ तक कि कई बार इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी पृथ्वी से दूरी, हमारी सूर्य से दूरी कितनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी हमारा जलवायु इफेक्ट करता है। और कई बार जो घटनाक्रम है, पृथ्वी की गति क्या चीज़ है, जंगलों की कटाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मानव के कृत कैसे हैं, तो उसका कई प्रभाव देखने को मिलता है कि कई बार मौसम हमारा एक्सट्रीम पे चला जाता है। कई बार मौसम मानसून के रूप में हमें मौसम डिले भी देखने को मिलता है, कई बार वो जल्दी भी आता है। तो ये निरंतर बदलाव होते रहना ही मौसम की प्रकृति है। जी
1: गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, पानी का लेवल भी बड़ा नीचे जा रहा है, ऐसे में पानी को लेकर भी भविष्य में संकट की बात कही जा रही है, तो क्या वाकई में हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए, और हमारे श्रोता को ये भी बताएं कि पानी का संरक्षण कितना जरूरी है।
0: जी धन्यवाद। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर में आबादी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे पानी का उपयोग भी उसी ढंग से ही बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो संसाधन हमारे पास में पहले से उपलब्ध हैं, ठीक है, उनका सही ढंग से संरक्षण करें। तो बेवजह पानी की बर्बादी को करना, ठीक है, उस पे अभी हमें विचार करने की आवश्यकता है कि पानी का सही ढंग से इस्तेमाल हो, रेगुलेटेड रहे। पानी के जल प्रदूषण को लेकर जो नियम बनाए जा रहे हैं वो बहुत सख्ती से उसका पालन हो सके। साथ साथ में हमें अब कई सारी और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी, जैसे कि वाटर पॉजिटिव टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम पानी का दोबारा इस्तेमाल कर पाते हैं, ग्रे वाटर यूजेज आज के समय में इंटरनेशनल फोरम के अंदर में डिस्कशन में आ गया है कि वैसा पानी जिससे कि जैसे कि नहाने के बाद में हमारे बाथरूम से निकलने वाला पानी है, सब्जियों को धोने के बाद निकलने वाला पानी है, हमें चाहिए कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल करें। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको अपने गार्डन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आरओ से निकलने वाले पानी से आप अपने कपड़ों को धो सकते हैं, या घर में आप पोछा लगा सकते हैं। जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हम तभी सही ढंग से अपने जल संरक्षण की बात कर सकते हैं, या अपने जो हमारे जल के भंडार है उनको सुरक्षित कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए।
1: जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने बताया कि हम लोग वॉशिंग मशीन से निकलने वाले पानी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, या फिर किचन में जिस तरीके से पानी केंट से आरओ से निकलता है उसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जब जल संरक्षण की बात हो रही है तो वर्षा का भी एक जल होता है, तो इससे हम लोग कैसे, जिसको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, इसकी बहुत सारी आमतौर पर चर्चाएं भी होती हैं, तो आम जन इसे किस प्रकार अपने घरों में संचय कर सकते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है?
0: देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज के समय की एक ज़रूरत हो चुकी है। जिस ढंग से हमारे शहरों का विकास हुआ है, जिस ढंग से हमारी आबादी बढ़ी है, तो एक बहुत आवश्यक हो चुका है कि वर्षा से आने वाला जल, जो कि काफ़ी अच्छा है, पीने योग्य होता है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, छत के ऊपर में जो पानी आ रहा है उसको पाइप्स के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उसको भूमिगत जल के साथ आप उसको जोड़ें, ठीक है, और जब आप जोड़ पाते हैं तभी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। पर इसके साथ साथ में कई बार और भी, जो पिछले वर्ष हमने देखा था कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाने के बाद में, बारिश फेल हो जाने के बाद में, कई चीज़ें लोग और भी करते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडलिंग कहा जाता है जिसे
1: जी।
0: तो वैसी चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। हालांकि ये अल्प समय के लिए एक अच्छा उपाय लग सकता है, पर वैसी चीज़ों से या वैसे जल प्राप्ति करना, ये हमारे प्रकृति के साथ छेड़खानी होती है। हालांकि वो इंडिया में हुआ एक्सपेरिमेंट IIT के द्वारा कराया गया था, वो फेल हो चुका है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से बचने की आवश्यकता है। हमें आवश्यक है जो प्राकृतिक रूप से वर्षा आ रही है उसके जल का संरक्षण करें।
1: जी हाँ, तो जैसे अगर हम लोग नॉर्मली अगर घर में जल को रखते हैं ज़्यादा दिन तक ऐसे बॉटल में बंद करके, तो उसमें खराबी आ जाती है, महक आ जाती है।

0: काई लग जाता है, ये सब चीज़। तो क्या इस जल में ऐसी कोई समस्या नहीं आती देखने को?
1: देखिए कि पानी किस चीज में रखा जा रहा है इस बात पे भी निर्भर करता है, ठीक है। आप
0: और
1: पानी
0: कितने
1: के
0: दिनों तक इसे रख सकते हैं,
1: आप कितने दिनों तक आप उसको रख सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। पानी का स्रोत क्या है उस पर भी निर्भर करता है। बहता हुआ जल है तो वो थोड़ा सा बाकी जलों की तुलना में ठीक ही रहता है। पानी अगर प्लास्टिक की बोतल के अंदर में है और वो अगर ज़्यादा तापमान में रह रहा है तो पानी की क्वालिटी में बदलाव देखने को मिलेगा ही, या पानी की क्वालिटी भी बदल जाएगी। तो ये परिस्थिति के अनुसार निर्धारण होता है कि पानी की गुणवत्ता कैसी रहेगी। जी,
0: कई लोग हर साल पौधे लगा देते हैं, या फिर इस बात को यूं कह सकते हैं कि विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए पेड़ लगाना एक फैशन सा हो गया है आज के समय में। लेकिन लगाए गए पेड़ों की देखभाल लोग सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी के पास आज के समय में देखा जाए तो वक्त की कमी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। तो जब खुद को वक्त नहीं दे पाते तो पौधों को वक्त देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर अब आपके अनुसार क्या ज़्यादा ज़रूरी है, पेड़ को लगाना या फिर अपनी किसी खास विशेष दिन को यादगार बनाना, या फिर पौधे की देखभाल करना, उन्हें बचाना?
1: देखिए, जितनी बातें आपने कही वो सारी की सारी ही ज़रूरी है। मैं कभी भी वैसे प्रयासों को मना नहीं करूँगा जिसमें कि लोग पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, पेड़ लगाने की बात हो रही है। तो मैं कहूँगा कोई सा भी दिवस अगर आप चुन रहे हैं पेड़ लगाने के लिए तो वो अच्छा ही दिन होगा। हालांकि कुछ समय, खासकर अगर भीषण गर्मी पड़ रही है, उस समय में पौधे लगाने से बचें, क्योंकि वो उस समय में पौधों का लगना थोड़ा सा बाकी पौधों की तुलना में कठिन होता है। दूसरा, हमें उन पौधों का चयन करना चाहिए जो आपके क्षेत्र के अनुरूप या उसके जलवायु के अनुकूल ढले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में स्नेक प्लांट है, ठीक है। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि बहुत ज़्यादा केयर की या बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई कैक्टस की वेराइटीज़ हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि सीज़न भी काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि बारिश के दिनों के अंदर में, सावन के महीने के अंदर में पौधों को लगा रहे हैं तो उनके लगने की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। जब वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं तो हमें वैसे सीज़न को चूज़ करें जिसमें कि पौधे ज़्यादा अच्छे लग सकते हों। वैसे पौधों का चयन करें जिनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती हो और वो स्वतः ज़्यादा ग्रो करते हों और जिनकी आयु भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं एक ये भी जिम्मेदारी होती है, देखिए अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगर आप रोज़ ना देख पा रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में या महीने के अंदर में आपको पानी देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, वातावरण आपका है, आप भी जान रहे हैं कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऑक्सीजन, और वो ये सिर्फ पौधे ही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमें इसके प्रति प्रयास करते रहना चाहिए। जी
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसा कि बताया कि पौधा जो है, पौधा कहें या फिर पेड़ कहें, कोई भी पेड़ जब बड़ा होता है तो उसके पहले वो पौधा के स्वरूप में ही होता है। तो वो छायादार भी हो, उसमें कम देखभाल हो, आयु लंबी हो, इस तरीके के कौन कौन से पेड़ हम लोग लगा सकते हैं जो भविष्य में आने वाली इस जनरेशन से उस जनरेशन तक को छाया हवा दे सके?
1: जी धन्यवाद, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं यहाँ पे बिहार में या उत्तर भारत के अंदर में, तो यहाँ पे फाइकस जिसको कहा जाता है, उस वैरायटी के या उस ग्रुप के जो पौधे जिसमें कि पीपल हो गया, नीम है हमारा, बैनियन ट्रीज हो गए, कटहल के पेड़ हो गए, ठीक है, ऐसे पेड़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए कि वो उनको ज़्यादा ग्रो करें, ठीक है। और इसके अलावा तो फलदार वृक्ष हैं वो हमेशा चॉइस रहने चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है कि जिन पेड़ों पे फल लग रहे होते हैं उनको लोग जल्दी काटते नहीं हैं, तो उनके संरक्षण के प्रति भी लोग थोड़े से रहते हैं। अगर तालाबों के आसपास में अगर आप पौधे लगाना चाह रहे हैं, चूँकि हमारे उत्तर बिहार में हम रह रहे हैं, अभी यहीं से चर्चा चल रही है, तो उत्तर बिहारों में तालाबों के आसपास में सबसे अच्छा लगाने वाला पेड़ है वो है जामुन का, बिकॉज जामुन के गिरने वाले बीज को मछलियाँ भी खाती हैं, ठीक है, वो उनके लिए भी भोजन का काम करता है और अगल बगल के वहाँ की जो इकोलॉजी है लोकल उसको भी वो कंजर्व करने में मदद करता है। जी
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगर नीम का पौधा का रोपण करते हैं हम लोग तो ये छायादार होता है, और नीम को थोड़ा सा हम लोग औषधि के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ना, ये कुछ एंटीसेप्टिक होता है, और अगर शरीर में खुजली हो, फोड़े फुंसियाँ हो, तो लोग कहते हैं कि नीम के पत्ते को पीस कर लेप लगाइए और इसको भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। अब कटहल की बात करें तो ये फलदार होता है, कटहल को हम लोग खाते हैं हर तरीके से। पीपल के वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है ना, छाया भी देता है और हर चीज़। जहाँ तक जामुन की बात करें तो वहाँ क्या है कि इनका बीज भी लाभदायक है, और आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आने लगा है कि डायबिटीज़ के लिए इसका सेवन करना बहुत बेहतरीन होता है।

0: इसके साथ ही इसकी लकड़ी के बारे में कहा जाता है कि जामुन की लकड़ी जो है वो पानी में सड़ती नहीं है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो हम लोग इससे ये भी फायदा उठा सकते हैं, यानी कि अगर ये पौधा पेड़ बन जाता है तो पेड़ बनने के साथ साथ ये जितनी ज्यादा सुरक्षा देता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वहीं जाकर कहीं पर ये हमारे लिए फल भी देता है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कह सकते हैं, ये छाया देने का काम करता है।
1: साथ में एक चीज और महत्वपूर्ण भी है कि बिहार के अंदर में हमारे साल की लकड़ियां, इसको बोलते हैं सॉरिया रोबस्टा, ये पेड़ हमारे कल्चर में इतना ज्यादा जुड़ा पड़ा है कि यहाँ पे जो हमारी एक थारू ट्राइब है जो पश्चिम चंपारण आसपास के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है, इनका पूरा का पूरा जीवन ही पेड़ों से जुड़ा हुआ है। तो कई बार जब घर का भी एक परिवार से जब दो परिवार बनते हैं तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पेड़ की लकड़ियों को विरासत के रूप में रखते हैं और दूसरों को बांटते भी हैं। तो हमें वैसे पेड़ लगाने की ज़्यादा आवश्यकता है जो कि लंबे समय तक रहें भी और काफ़ी मजबूत भी हों। हालाँकि प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर में जितने भी पेड़ पौधे हैं सबका कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण रोल है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट वे में डिज़ाइन किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे शायद आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा पर आपने कभी कोकोनट को देखा है मैम, कोकोनट को देखिएगा तो कोकोनट को हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रूट है, क्योंकि अगर आप उसको पानी में फेंक दीजिएगा तो वो कभी डूबता नहीं है, वो समुद्र तैर करके एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। अब उसके ऊपर हाथी चला जाए तो फल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कभी वो फल है वो कभी सूखता नहीं है क्योंकि इसके अंदर में पानी अपने आप ऑलरेडी अवेलेबल है, वो अपना संरक्षण खुद ब खुद करता है, खारे पानी के अंदर में भी वो खराब नहीं होता है और किसी अगर रेत में वो दब जाए तो वहाँ से फिर से एक नया पौधा उग जाता है और एक पौधा कई सारे और पौधों को भी जन्म दे देता है। तो प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर पौधे का अपना एक महत्वपूर्ण रूल है, अपना महत्व है इसमें। जी
0: श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है, अगर आपके मन में भी कोई विषय से संबंधित सवाल है तो फ़ोन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जरूर जुड़ें। हमारा टेलीफोन नंबर है 9430029353। अन्य टेलीफोन नंबर भी आप जरूर इस्तेमाल करें 02722224 81 और विषय है पर्यावरण संरक्षण और हमारी जिम्मेदारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनु राज शर्मा। डॉक्टर साहब, चलते हैं अपने सवाल अगले सवाल की ओर। तो बातें तो बहुत हो रही हैं, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि हर घर में बच्चे होते हैं और आजकल के जो बच्चे होते हैं वो जन्म के साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, तो बच्चों को पर्यावरण के प्रति थोड़ा अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने का सबसे आसान सा तरीका क्या हो सकता है?
1: देखिए, बच्चों में अगर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि लर्न बाय डूइंग, ठीक है, जिसमें कि आप अपने बच्चों को अपने क्षेत्र के अंदर, सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि जब आप बच्चे घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो उनके क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों को पहचान कराना सिखाइए कि ये पेड़ कौन सा है, ठीक है, अपने क्षेत्र में कौन से पक्षी देखने को मिल रहे हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को समझाने का पहला प्रयास करें। दूसरा प्रयास उनका ये होना चाहिए कि पौधों को लगाने की सीख, ठीक है, मुझे लगता है कि ये हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए
0: जी।
1: ये करिकुलम का पार्ट होना चाहिए जिसके अंदर कि बच्चों को पौधे कैसे लगाने चाहिए, पौधों की कलम कैसे बनाई जाती है, पौधों को ग्रोथ के लिए पानी कैसे दिया जाता है, कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं या जैविक खाद घर में कैसे बनाएं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, या कई बार कहते हैं कि आजकल जो एक नया कल्चर आ गया है दैट इज़ एक्वा हॉर्टिकल्चर, उसमें कहते हैं पानी के अंदर में चीज़ों पौधों को उगाना, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को एक्टिविटी में, ज़रूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट साइंस में ही सब कुछ पढ़ाया जाए, ये क्लास आपके स्कूल के अंदर में होने वाले SUPW के अंदर में भी बच्चों को आप सिखाए जा सकते हैं, या
0: अब तो विभिन्न कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट बन करके आ गया है EVS की, आप पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत करें और पढ़ाई करें एक सब्जेक्ट के तौर पे।
1: जी, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश भर में लागू हो गई उसके बाद से तो इन्वायरमेंटल एथिक्स की भी पढ़ाई अब शुरू हो गई है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बच्चे इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में जाने, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के बारे में बात की जाती है, साथ साथ में कई चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड हैं जैसे कि प्रदूषण क्या चीज़ है, प्रदूषण के पैरामीटर्स कैसे हैं, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर की आवश्यकता को समझने की कैसी है, ऐसी चीज़ों के बारे में भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है ताकि पर्यावरण के प्रति सजगता है वो बढ़ सके। जी,
0: प्रदूषण को, जब प्रदूषण की बात चल रही है तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि प्रदूषण का संबंध भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो प्रदूषण को भी हम लोग कम कर सकते हैं, तो ये तो बड़ी

0: अच्छी बात बताई। अब चलते हैं प्राकृतिक आपदा की ओर। अब चूंकि हम लोगों का क्षेत्र इस तरीके का है, कभी भूकंप हिमालय की तराई होने की वजह से कभी भूकंप तो कभी बाढ़ की स्थिति बनती ही रहती है, तो इसको तो पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या वैज्ञानिक तकनीक से इसके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है?
1: बिल्कुल मैम, देखिए जब प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। कुछ तो प्राकृतिक होती हैं, कुछ मानव जनित भी होते हैं। प्राकृतिक की अगर बात करें तो जो क्षेत्र में हम अभी रह रहे हैं, दरभंगा या उत्तर बिहार का क्षेत्र,
0: हमारे एक श्रोता तो, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इनके सवाल को सुनते हैं। जी नमस्कार। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया एक बार फिर से पुनः संपर्क करने की कोशिश करें। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ बताइए।
2: सुनिए ना, हम अपने दरवाजा के आगे रोड किनारे पेड़ सब लगाई ले
0: जी,
2: ठीक है। अब वैसे पोता पोती को भी स्कूल से मिला था, उसको भी लगा दिए
0: जी जी।
2: अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको काट के हटा देंगे, इसका क्या निराकरण है?
0: जी डॉक्टर साहब, बड़ा ज्वलंत सवाल है, आप इसका जवाब दें जी।
1: देखिए बड़ा रोचक सवाल है। कई बार स्कूलों के अंदर में, विश्वविद्यालयों के अंदर में हम छात्रों के बीच में इस प्रकार से पौधों का वितरण करते हैं ताकि बच्चे भी जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं और अपने घरों के आसपास में पौधों को लगाएं, क्योंकि जब आप पौधे खुद लगाते हैं तो आपके अंदर में एक जिम्मेदारी का भाव, एक जिम्मेदारी का एहसास आपके अंदर में आता है और कहीं ना कहीं इसी माध्यम से ही वो पेड़ को भी एक नया जीवन मिल जाता है। तो मास लेवल पे जब आप वृक्षारोपण करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में इस प्रकार के बीज देना, उनको अपने क्षेत्र में लगाने पे जहाँ पे उनकी सही ढंग से केयर हो सकती हो, ठीक है, तो वैसे प्रयास किए जाते हैं। तो अगर आपके पास में कैसा भी पौधा मिला हो, वो फूल देने वाला, फल देने वाला हो, ठीक है, तो उस पौधे को ज़रूर रखिए, उसको लगाइए, उसको आप चाहे तो चिन्हित करके रखिए, उसका ख्याल रखिए और वो पेड़ कहीं ना कहीं आपके आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपका आत्मीय जुड़ाव जो है उस पेड़ के साथ हमेशा बना रहेगा और जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से सही भी है जी।
0: और सबसे बड़ी बात कि हमारे श्रोता कह रहे हैं कि लोग नहीं चाहते कि उनके दरवाजे पे वो पेड़ हो, तो इसके लिए उन्हें ये संदेश देना चाहिए, ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि अगर आज हम पर्यावरण की अनदेखी करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो लाभ हम लोग आज तक उठा कर आए हैं और हमसे भी पहले हमारे पूर्वज ने जो प्रकृति से लाभ लिया है उनसे वो वंचित हो जाएंगे। तो कृपया करके पेड़ को लगाएं, ना कि पेड़ को काटें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक शिक्षक और शोधकर्ता होने के नाते आपको अपने विद्यार्थियों से पर्यावरण के बारे में सबसे ज़्यादा क्या सवाल सुनने को मिलता है?
1: देखिए कई बार शोध करते हुए या क्लास में पढ़ाने के दौरान कई बार हमारे छात्रों का अक्सर सवाल यही होता है कि सर पर्यावरण के प्रति सजगता तो हमारी हो जाती है, हम पाठ्यक्रम के अंदर में कई चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें इसके बाद में करना क्या चाहिए? तो मुझे लगता है कि जब करने की बात आती है, अगर हायर एजुकेशन के अंदर में है तो आपको कई प्रकार के इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, इस प्रकार का प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें कि आप अपने पर्यावरण के प्रति कुछ नैतिक जिम्मेदारी को आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर में भी, जैसे कि पेड़ों के अंदर लगे पड़े जो कीले हैं उनको उखाड़ने का प्रयास किया जाए, साइकिल डे टू योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अगर आप अपने विश्वविद्यालय पहुँच रहे हैं प्रतिदिन मोटर गाड़ी से तो आप एक दिन साइकिल का चुनाव भी कर सकते हैं। आप कुछ कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं अपने अगल बगल के क्षेत्रों के अंदर में, जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में, दरभंगा के अंदर में जितने भी जलाशय हैं बड़े बड़े जिनका इतिहास लगभग 700-800 साल पुराना है, तो इनके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे गिरने वाला बायोमेडिकल वेस्ट जो था, अपशिष्ट जिसको कहते हैं, तो उससे संबंधित भी शोध किया था और उसके बाद हमने स्थानीय प्रशासन की सहायता से वहाँ पे होने वाले कचरे को रोका भी, ठीक है, और कई सख्त नियमों का अनुपालन भी करवाया। तो छात्रों को ये चाहिए कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, आप कुछ वैसा प्रोजेक्ट को चूज़ करें, क्योंकि अब प्रोजेक्ट वर्क इज़ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, अब आपके सिलेबस का पार्ट हो चुका है, जिसके अंदर में आपको एक इंटर्नशिप के अंदर में दौरान में जाना होता है, कुछ कोर्स वर्क करना है, कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो उन प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी को चूज करी जिसमें लोगों को सजगता के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है और साथ साथ में आप उनके संरक्षण की बात की भी करते हैं, तो चयन ऐसा ही होना चाहिए जी।
0: डॉक्टर साहब, आपने देश के अलग अलग हिस्सों में अध्ययन किया है, क्या आपको लगता है कि लोगों में पर्यावरण के

0: प्रति जागरूकता पहले से बढ़ी है?
1: जी बिल्कुल। देखिए, अब मुझे लगता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता तो ज़रूर बढ़ी है, पर जिम्मेदारी जो है वो धीरे धीरे घटती गई है। लोग चीज़ों को जान तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, महत्व भी उसका जान रहे हैं, पर उसके लिए कुछ प्रयास करने के लिए प्रति उतने तत्परता देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि देखिए, प्रदूषण एक महत्वपूर्ण समस्या है हमारे समाज के अंदर में। हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष जो है प्लास्टिक के दुरुपयोगों को हम जानते हैं। प्लास्टिक से होने वाले हर वर्ष बड़े बड़े शहरों के अंदर नालों का जाम हो जाना, ऐसी कई
0: हम लोग
1: समस्याएं
0: अपनी
1: देख
0: चर्चा को
1: जी
0: जारी रखेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आइए इनके सवाल को सुनते हैं। जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार सर।
0: जी आप अपने सवाल को पूछिए।
2: जी मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ, सिमरिया जिंदगी कल्याणपुर समस्तीपुर से।
0: जी सतीश जी,
2: अभी के दौर में सुनना बादल फटने का जो प्रक्रिया चल रहा है
0: जी,
2: इसका क्या कारण है? इससे लोग काफी आहत हो रहे हैं।
0: जी बहुत अच्छा सवाल है
1: जी। सतीश जी, आपको एक बिल्कुल ही बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में, वहाँ पे हमें देखने को ये घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बादल फटना हालांकि कुछ दशकों पहले तक जो था ये सामान्य घटनाक्रम होती थी, कि बादलों का किसी खास क्षेत्र के अंदर में एक साथ जगह पर इकट्ठे हो जाना और उस वजह से भारी वर्षा उस क्षेत्र में हो जाना, इस चीज़ को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट का होना। पर अभी के क्रम में जो जलवायु परिवर्तन का दौर आ चुका है, जिसमें कि जो अगर वैज्ञानिक रूप में भाषा में बात करूं तो कहा जाता है लिफ्टिंग कॉन्डेंसेशन लेवल, एक वैसा स्तर होता है वायुमंडल के अंदर पे, जहां पे कि बादलों का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसके लेवल में परिवर्तन होने की वजह से जो है ये घटनाक्रम अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास में क्या है, मानसून के जो बादल हैं, ठीक है, खासकर जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, क्यूमुलोनिम्बस नाम के क्लाउड्स जो हैं, ठीक है, उनका एक जगह पे भारी मात्रा में एकत्रित हो जाने की वजह से, ठीक है, इस प्रकार की घटनाक्रम अब ज़्यादा देखने को मिल रही है। बादलों के अंदर अब ज़्यादा ऊर्जा भी है, बिकॉज भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारण जो है हमारा वायुमंडल वो ज़्यादा गर्म है, जिस वजह से जो हमारे जलवायु का, इसको कहा था अति का रूप देखने को मिलना है, एक्सट्रीम जो फॉर्म है वो देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमन सी घटना देखने को मिली थी, क्लाउड बर्स्ट के साथ ही रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। पिछले 3 वर्ष पहले सिक्किम के अंदर में लेक लोनाक में भी इस प्रकार से ही घटना हुई, जिसमें कि वहाँ पे मिला और वहाँ पे एक झील थी वो बह गई और वहाँ पे
0: हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार। हेलो जी। जी नमस्कार जी,
3: हमारा सवाल यही है कि आजकल जो बिजली बहुत काफी एक मोड से और जहाँ का गिर रहा है, कहने का मतलब उस समय रेडियो को बंद कर देना चाहिए, खुली रहना चाहिए, क्योंकि हम रेडियो बराबर बंद।
0: जी आप पुनः दोहराएं अपने सवाल को, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है।
3: सवाल यह है कि जिस टाइम में बड़े कटका आता है आवाज आता है, उस टाइम हम लोग रेडियो खोल कर रखें या रेडियो रेडियो को बंद कर।
0: हाँ हाँ, आपको आज हमारा कार्यक्रम, आप जरा सा रेडियो सेट के पास से हटकर आप अपने सवाल को पूछें।
3: मैं रेडियो बंद कर दिया।
0: जी जी
3: सवाल यह है कि जब बादल आकर देख रहे हैं बहुत जबरदस्त कट रहा है, गिर भी रहा है, उस टाइम क्या उस टाइम रेडियो हम लोग बुलाते रहते थे, रेडियो को बंद कर रहे खोल कर।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: नहीं देखिए, उससे आपके रेडियो उपकरण में किसी प्रकार का नुकसान तो देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि उस समय में मौसम के बदले हुए स्वरूप में रेडियो किरणों का थोड़ा प्रभाव है वो बाधित होता, वो ज़रूर देखने को मिल जाता है, पर यह बहुत लंबे समय का, यह बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं है वैसे जी।
0: तो अभी जो हमारे श्रोता ने हमारे से सवाल पूछा, तो चलिए इसी सवाल को लेते हैं जो कि अब हमारा आखिरी और बेहद अहम सवाल है। क्या प्रकृति हमें समय समय पर चेतावनी देती है, और अगर हाँ तो क्या हम उन संकेतों को समझ पा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, प्रकृति जो है वो मानव को समय समय पे चेताती भी रहती है, मानव के लिए उसने बहुत सारे अवसर भी वो पैदा करती है, जिसको कई बार एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। प्रकृति हमें कई सारे अवसर दे रही है कि आप क्या करिए क्या नहीं करिए, ठीक है, होने वाले घटनाक्रमों के बारे में या आने वाली आपदाओं के बारे में भी हमें पूर्व में सूचना मिलने लग जाती है। जैसे कि इस वर्ष पड़ने वाली गर्मी के बारे में हमें

0: पूर्व में जानकारी, 6 महीने पूर्व से जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। चक्रवात के आने से पूर्व में हमें जानकारी मिल जाती है। जिस प्रकार से मानव के जो कर्म है, ठीक है, मानव की जो एक्टिविटीज़ है, उसका स्वरूप चेंज हुआ पड़ा है, उस कारण से भी हमें आने वाली चीज़ों का, जिसको जैसे कि भूकंप है, तो उसका भी हमें पूर्व में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। हमें ये भी कई बार पता होता है कि किन क्षेत्रों में कैसी घटनाक्रम होगी, बढ़ता हुआ सूखा, इन चीज़ों का मापन अब पूर्व में किया जा सकता है, और प्रकृति हमें समय समय पर इसको चेताती रहती है। जी
1: जी बहुत सही बात है। भूकंप आता है तो उसके पहले हम लोग को कुछ आभास सा हो जाता है, या फिर बाढ़ से पहले भी पता तो चली जाता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ की संभावना बन चुकी है। श्रोताओं, आज की बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ है कि पर्यावरण की रक्षा कोई बहुत बड़ा अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। एक पौधा लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी की एक एक बूंद को बचाना और अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। डॉक्टर मनु, आज की इस बहुत ही सार्थक बातचीत के अंत में आकाशवाणी दरभंगा के लाखों श्रोताओं के लिए आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे ताकि वे पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकें?
0: देखिए, अगर मुझे अपनी सारी बातों का जो सार है अगर वो कहना पड़े, तो मैं अपने भारत के देश के जो संविधान का आर्टिकल नंबर 51A है, मैं वो आप बताना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हमारे सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्यावरण संरक्षण तभी हो सकता है जगह उसके लिए हर व्यक्ति अपना कर्तव्यों का पालन करे। हमारे देश के अंदर में जितने भी जीव जंतु, जलाशय, तालाब, जितनी ये चीज़ें हैं, इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में हमें ये दी है। अगर आर्टिकल 21A जो कहता है कि आपका राइट टू लाइफ है, जिसमें कि आपको प्रदूषण रहित जीवन, अगर आपको आपका ये हक है, ठीक है, तो उस हक को पाने के लिए हमें जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना पड़ेगा, जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण को की जिम्मेदारी के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। जी
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भूगोल विभाग के सहायक प्राध्यापक, जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर मनुराज शर्मा जी की बातें। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई बातें, ये पूरे समाज के लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो मैं हूं श्वेता और आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जिंदगी। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हेलो जिंदगी, अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: रखी बही।
1: नमस्कार, स्वागत है आहा सभक अपन कार्यक्रम सखी बहिन में। की हाल समाचार अच? नीके छी ने? एक बेर कुशल छेम पूछ लेला सँ मुँह पर हंसी आबि जाइत अछि, मोन एकदम सँ हल्लुक भऽ जाइत अछि। एखन तऽ एहन अटट रौद पड़ि रहल अछि जे घर सँ निकल

के चिड़े चुनमुन्नी के फूल के निहार सकी। आ जखन निहारब न सखी मोन एकदम से लेपित भ जात अपन प्रकृति के संग। बुझात जे यह संसार सबसे सुंदर संसार है। एकर अनुभव क सकी त करी, त एकर अनुभव जे करब सखी बड नीक लागत। पर्यावरण के संतुलन आ जीवन में संतुलन बनाब ओहने जेहन परिवार आ करियर के बीच है। कार्यक्रम में सेहो संतुलन बनाब ओतबे आवश्यक है। अहां सबक पसीनक ध्यान रखैत सुने छी ई लोकगीत कुमुद अखौड़ी के स्वर में।

0: गीत सुनिए को अपना सब गेनाए सीख लो। गीत केहन लागल से अवश्य कहब सकी। लोक गीत त बूढ़ पुरान से वह राग भास में सीखे देलो। एहि लेल कोनो प्रशिक्षण के आवश्यकता नहीं पड़ित अछि। एक कंठ से दोसर कंठ में पसरित गेल आ ओकरा अपना सब अपनबैत गेलूँ, गबैत रहलूँ, अपन संस्कृति के बचबैत रहलूँ आ आगुओ बचबैत रहब। बहुतो बहिन एहन छथि जे संगीतक क्षेत्र में अपन करियर बनेबाक दृढ़ निश्चय करै छथि। हाँ, हमरा अही क्षेत्र में आगू बढ़बाक अछि। अपन तपस्या आ साधना सँ एहिमे सफलो होइत छथि, मुदा परिवारक बीच सामंजस्य बैसायब बड पैघ कला आ साधना अछि। सबके मना कऽ तखन अपना सब जे कोनो काज करै छी तऽ ओहिमे विशेष आनंद भेटैत अछि। जे एहिमे निपुण छथि वह आनंदक संग जिंदगी नीक सँ आ समृद्धि पूर्वक बितबै छथि। हुनकर जिंदगी मे सदिखन समृद्धि अबै छनि। आब हम बेसी गप नहि कऽ कऽ एहि कार्यक्रम मे आजुक जे कनिया छथि हुनके सब पूरा विस्तार में सुनब जे एहि विषय पर ओ की कहऽ चाहै छथि। जखन हुनका जीवन में करियर आ परिवार दुनू में से एकटा के चयन करबाक रहै छनि तऽ ओ द्वंद में फंस जाय छथि आ दुनू के मिला कऽ जखन सामंजस्य बैसा कऽ चले छथि तऽ हुनकर कला के प्रशंसा के नहीं करत। तो सुनै छी अपना सब आजुक कनिया के गप। आजुक कनिया छथि वंदना चौधरी जी। अहाँ सबके कहि दी सखी जे वंदना सखी एकटा कुशल गृहिणी तऽ छथि हे, संगे साहित्य दिस विशेष रुचि रखे छथि आ लेखन के क्षेत्र में आगू बढ़ रहल छथि। हार्दिक स्वागत छनि वंदना जी के, जे करियर आ परिवारक बीच सामंजस्य बैसा कऽ ओ कोना चलि रहल छथि एहि विषय पर सुनै छी हुनक ई गप।
1: नमस्कार, हम वंदना चौधरी। करियर अर्थात जॉब आजुक युग में जीविकोपार्जनक समस्या महंगाई के देखैत अत्यंत आवश्यक विषय थिक। पहिने के समय में कृषि पशुपालन आदि सँ काज चल जाय छल, मुदा आब परिवार में स्त्री आ पुरुष दुनू रोजगार करैत छथि। किएक तऽ आजुक समय में सब अपन आत्मनिर्भरता के सर्वोपरि मानै छथि, तो करियरक संग संग परिवारक संतुलन बनायब सेहो परम आवश्यक अछि। किएक तऽ मेहनत तो लोक अपना परिवारिक आवश्यकताक पूर्ति के लेल करैत अछि आ यदि परिवारे के नहीं बुझि सकता तो सब मेहनत व्यर्थ। कहबाक तात्पर्य ई जे जकरे लेल मेहनत करै छी से हमरा से धीरे धीरे दूर होबय लगै छथि। किएक तऽ थाकल हारल काज सँ आयब मोन नहि होइत अछि किनको सँ बात करी, मुदा किछु तरीका सँ हमसब दुनू मे संतुलन बना सकै छी। जेना महिला लोकनि घरक काज सम्पन्न कऽ ऑफिस जाय छथि आ ओतऽ सँ आबि फेर घरक काज मे लागि जाय छथि, मुदा जँ दुनू पति पत्नी मिल कऽ एक दोसरक मदद करती तऽ समयक बचत होयत आ ओ अपन समय संग में बिता सकती। यदि माता पिता लग में छनि तऽ किछु समय हुनका सभक संग बात करबाक चाही, धियापुता छनि तऽ धियापुता के स्कूल ट्यूशनक गप बतियेबाक चाही। एहि सँ बच्चा सबके अपन बात कहबाक लेल अनकर आवश्यकता नहि होइत अछि आ आजुक समय मे बच्चा सब अपन गप कहबाक लेल दोसर लग नहि भटकत आ कनी कनी गो चीज पैघ पैघ समस्या के टारि सकैत अछि। महीना व सप्ताह मे सब परिवार घुमबाक योजना बनाबी, पिकनिक, सिनेमा आदि। एहि सँ की होयत तऽ पूरा परिवार एक दोसर के संग खुलि कऽ बातचीत करब आ संग मे जे कोनो समस्या होयत तकर समाधान होयत। घरक जरूरतक समान एक बेर आनि लेला सँ समयक जे बचत होयत से अपन परिवारक संग बिता सकब। परिवार मात्र लोकेटा सँ नहि अपितु प्रेम और विश्वास सँ बनैत अछि, सहयोग सँ बनैत अछि। एहि तरह छोट छोट चीज केला सँ करियर आ परिवार दुनू में संतुलन बना कऽ राखि सकै छी और दुनू हमरा लोकनि के लेल जरूर

0: अछि, करियर तऽ जरूरी अछि आर परिवार सेहो परम जरूरी अछि, किएक तऽ परिवारे के लेल हमसब एतेक काज करै छी, आ परिवारे नहि खुश रहत तऽ फेर एतेक काजक की आवश्यकता। ताहि दुआरे दुनू मे तालमेल बैसा कऽ काज करबाक चाही, आओर एहि तरहे केला सँ दुनू मे सामंजस्य बना कऽ राखि सकै छी। धन्यवाद।
1: वंदना सखी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद जे अपन विचार सब सखी लग अहाँ रखलहुँ आ अपन बहुमूल्य समय सब सखी लेल निकाललहुँ। अपना सब लेल एतेक करब कोनो चुनौती सँ कम नहि अछि। अहूँ सब हमर गप सँ अवश्य सहमत हैब। एक दूसराक विचार आ भावना मिलैत अछि तखने तऽ पकिया सखी बनि जाइत छी। अपना सब कोनो काज बिना पूछने नहि करै छी। कार्यक्रम मे फिल्म संगीत जे सुनै छी ओ केहन लगैत अछि वा की सुनय चाहै छी आ से हम पूछिए कऽ सुनबै छियनि तऽ मोन एकदम सँ हुनकर गदगद भऽ जाइ छनि। एहि लेल पत्र लिखऽ पड़त सखी वा ईमेल अवश्य करब। तऽ उठाउ कलम आ लिख

बहुत धन्यवाद जे अपन विचार सब सखी लग अहाँ रखलूँ आ अपन बहुमूल्य समय सब सखी लेल निकाललूँ। अपना सब लेल एतेक करब कोनो चुनौती से कम नहीं अछि। अहूँ सब हमर गप से अवश्य सहमत हैब। एक दूसराक विचार आ भावना मिलित अछि तखने तो पकिया सखी बनि जाइत छी। अपना सब कोनो काज बिना पूछने नहि करै छी। कार्यक्रम में फिल्म संगीत जे सुनै छी ओ केहन लगैत अछि वा की सुनय चाहैत छी से हम पूछिए कऽ सुनबै छियनि तऽ मोन एकदम से हुनकर गदगद भऽ जाइ छनि। एहि लेल पत्र लिखऽ पड़त सखी वा ईमेल अवश्य करब। तऽ उठाउ कलम आ लिखू हमर सभक पता। कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004 आ ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो ई कार्यक्रम केहन लगैत अछि अपन सुझाव आ प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी सखी, ई आग्रह अछि। आधा घंटा धरि अहाँ सबसे जुड़ल रहे छी तो हमरो बहुत नीक लगैत अछि। सखी बहिन इहो कह दी जे 8 जून माने काल्हि आकाशवाणी 90 बरख पूरा कऽ रहल अछि। 90 बरखक एहि यात्रा में कतेक रास अनुभव जुड़ल अछि। कार्यक्रमक माध्यमे सब श्रोता सँ जुड़बाक जे आनंद अछि ओकरा सदिखन अनुभव करैत रहलहुँ अछि। अहाँ सभक देल गेल उत्साहवर्धन सँ कार्यक्रम के नीक से नीक बनेबाक मनोबल भेटैत अछि। सूचना, मनोरंजन, जानकारी यह कार्यक्रमक उद्देश्य अछि। स्वस्थ मनोरंजन सँ तनाव कखनो लग नहीं आबि सकैत अछि आ अपन सखी सभक ठोर पर मुस्की अवश्य आनि सकैत अछि। तऽ आब अपनो सब एहि कार्यक्रम में फिल्मी गीतक आनंद में मगन भऽ जाए।

कखनो काल बहुत रास काज एहन करै छी सखी बहिन जे होइत रहैए बेकारे केलहुँ, मुदा जखन परिणाम ओकर सामने अबैत अछि, ओ परिणाम जखन नीक होइए तखन होइए जे भेल से ठीके भेल। गीत सब गोटाके सुननाइ नीक तऽ लगिते अछि ने, सब गोटे अपन पसीनक हिसाबे गीतक चयन करैत छी। हम बेसी काल गीत सुनैमे ततेक मगन भऽ जाइ छी सखी जे चूल्हा पर चढ़ल तरकारी कहियो जरि जाइए तऽ कखनो नून बेसी पड़ि जाइए तऽ कखनो नूने कम पड़ि जाइए आ एकदमसँ तरकारी बेस्वाद भऽ जाइए। तैँ एहनो नहि हेबाक चाही, तैँ भानस करबामे सेहो एकाग्र रहऽ पड़ैत अछि। जँ कनियो अनमनस्क होयब तऽ हाथे पाकि जायत वा खेनाइ मुँहमे दै जोगर नहि होयत। ओना गीत सुनैत आ गुनगुनाइत खेनाइ बनायब तऽ खेनाइ बड्ड स्वादिष्ट बनत। जँ खेनाइ ध्यान दऽ कऽ बनायब तखन समय आ श्रम दुनू बचत। पहिने अपनासभ माड़ भात, मरुआ रोटी, मकईके रोटी, सतंजावला रोटी खाइ छलहुँ, कतेक स्वादिष्ट लगै छलै, वएह अनूप लगै छलै। आबक समय कतेक बदलि गेल अछि आ ओहि सङ्ग तिलके चटनी, तीसीके चटनी, धनिया पत्ता आ पुदीनाके चटनी जे मिलाकऽ खाइ छलहुँ ओहो बड़ा स्वादिष्ट लगै छलै। हम बनेलहुँ तिलक चटनी। तऽ तिलक चटनी अहाँसभ कोना बनबै छी से अवश्य बताबी सखी बहिन। तिलके चटनी हम बनेलहुँ, तिलके पहिने खूब नीकसँ भुजि लिअ, ओहिमे किछु करू तेल नहि देबाक अछि, बिना तेल देने तिलके पहिने भुजि लिअ। एकर बाद लाल मिरचाइ दऽ कऽ खूब नीकसँ एकरा पीस लिअ, एहिमे नेबो, हरियर मिरचाइ, नून, करू तेल, जीरक पाउडर दऽ कऽ एकरा सानि लिअ। भऽ गेल तैयार तिलके चटनी, बड्ड नीक लगैए सखी बहिन, एकरा बनायब कखनो अहूँसभ। हम जेना बनेलहुँ से अहाँसभके कहलहुँ आ अहाँ कोना बनबै छी सेहो अवश्य बतायब। अखन ततेक गर्मी पड़ि रहल है जे किछो बनबैके मोने नहि होइ छै। एहि गर्मीमे खेनाइ बनबैके तऽ एकदम बुझाइए सभ सखी बहिन। अपनासभ जखन भनसाघरसँ तऽ ओना अपनासभके बड्ड बेसी गहीर सम्बन्ध अछि। भोर होइए तऽ सभसँ पहिने भनसेघर घुसै छी, राति तक अपनासभ भनसेघरमे लागल रहै छी। अपनासभ ई प्रयास करै छी जाहिमे कम समय लागै वएह चीज बनाबी। तऽ हम बनेलहुँ तिलकोरा पातक तरकारी। एकर तऽ तरुआ सभ गोटे बनबै छी, एकर तरकारी की कहू एते स्वादिष्ट बनैए जे हम बनेलहुँ बड्ड नीक लागल। आ स्वास्थ्यक लेल तिलकोरक पात बुझिते छियै जे कतेक नीक होइ छै, स्वास्थ्यवर्धक होइ छी। तऽ तिलकोरा पातक तरकारी बनबै लेल सभसँ पहिने एकरा खूब नीकसँ धो लिअ, बेसनमे नून, हरदी, धनिया पाउडर, जीरक पाउडर दऽ कऽ खूब नीकसँ मिला लिअ। एकर बाद तिलकोरा पातके बेसनमे लपेट कऽ तरि लिअ। तरलाके बाद एकरा टमाटर, धनिया पाउडर, जीरक पाउडरके पेस्ट बना कऽ एकरा मसल्लाके सङ्ग भुजि लिअ। तेल जखन छोड़ऽ लागै तऽ आवश्यकता अनुसारे पानिमे दऽ दियौ। जखन बरकि जाय नीकसँ तखन तिलकोरक पातके एहिमे खसा दियौ आ ऊपरसँ धनी पात छीटि दियौ। घी, तेजपात, हींग, करी पत्ता, कस्तूरी मेथी दऽ कऽ छोकि दियौ। एह की कहू एतेक नीक लागत ने जे बुझैमे नहि आयत जे तिलकोरा पातक ई तरकारी एते स्वादिष्ट बनैए ई। तऽ सखी बहिन आब कार्यक्रम जे छै से लक्ष्य

0: ले अब अहाँ सब से विदा लेबाक बेर भ गेल अछि, आब कार्यक्रम के समेटबाक बेर भ गेल अछि। अपना सब समय सीमा से बांधल छी, समयक संग चलब तो बेसी दिन चलत। सखी बहिन, आब अहाँ सब से अनुमति लिय चाहब कार्यक्रमक प्रस्तुतकर्ता अशद दाऊदक संग हमरा यानी नीतू के चलबाक आज्ञा दिय। नमस्कार सखी बहिन। सखी बहिन,
1: अभी आप सुन रहे थे महिला श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम सखी बहिन। सूत्रधार थी नीतू कुमारी और प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
1: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली नाटक गुरुआइन। निर्देशक हैं सीताराम शर्मा, लेखक फूलचंद्र झा प्रवीण, कलाकार नित्यानंद झा, मीरा झा, अरुण कुमार झा और कल्याणी कुमारी। तो आइए सुनते हैं नाटक गुरुआइन।

0: गर्मी लग गए से नहीं जाए भरि दिन बफाई काटत रही है। अब बाप केहन छथिन जे एको बेर
1: हाय रे बाप एकरा किया एना ठुनकबै छिए
0: हे हम अहाँ के गोर लगे छी की करू फाट के मर जाओ की एक भोर जे उठलो से दस बजे राति धरि परेशान भेल रह यौ एको बेर मुँह गेनाइत अछि जे लाओ कोनो काज कऽ दै छी।
1: अरे पुरुषक जे काज हेतै सह न हम कऽ देब आ कि स्त्रीगण वाला काज हम ही कऽ दी।
0: देखियो रे जाकर अपना अगल बगल में केहन केहन बड़का हाकिम सब छथिन जे रोटी बेलो से लऽ कऽ आ नुआ धरि खींच दै छथिन आ एकटा अहाँ छी ए होइ छनि जेना अमले ओछ भऽ जेतनि ई तऽ हमर कपारक दुख।
1: हे राति दिन ई रामा खटोला हमरा नीक नहि लगैए आइए अखन कोन बड़का बात भेलैए जे अहाँ एना नेप चुआबऽ लगलहुँ।

0: हे हम बेर बेर अहाँ के कहे छी जे हमरा से मुँह जुन लगाओ आ हे एने कर लियो अपन जनमल के अकर उगनी मेरा
1: एहन तो लोक नहीं देखलो महान चंडालनी पाला पड़ गेल मुदा करब की दोसर तो कोनो उपायो नहीं है लक्ष्मी लक्ष्मी अहाँ सरपो हमर भाग्य लक्ष्मी छी
0: अंगोरा छी धड़कल छी चूल्हा के छाव छी जाओ जाओ हम कत से एलो भाग्य लक्ष्मी से रहितो हमर यह दुर्दशा रहित
1: हे देखू बच्चा सुत रहल एकरा अपना लग सुता लूँगा आ बाजू ने जे अहाँ के की कष्ट है हम सबटा दूर कर देव
0: लो जाओ अपन बच्चा के आ लुट्टी पसाही लाओ अहाँ के कमाई में हमरा ऐसे कौन लेना देना नहीं जैन कौन जन्मक अदला कर्म के ने छलो जे अहाँ सब लोग सियूत छुलक
1: आखिर कोनो गप फरछा का बाजा तखन ने बुझबे हम तो सोझ लोग छी आ सोझ बात बुझे छी
0: आहा आहा यो अहाँ का अतरी तो 72 हाथक है अहाँ के तो हम ही ता चिन्ह छी दोसर के चिन्ह अहाँ संग चंडाल कसाय आ निर्दय लोग ऐ दुनिया में कतौ नहीं छे
1: अहाँ के की कष्ट है से बुझब तखन ने
0: हमर कष्ट बुझब
1: हैं हाँ हाँ बाजू ने
0: अच्छा ऐ मासक दरमाहा जे उठेलिए से की केलिए
1: ओ आप बुझलिए तकरे ई सब नाटक भ रहल छै ने
0: ऐ यो सब त पर गाम पठा देलिए आ कहे छिए जे तकरे ई नाटक हे नाटक तखन शुरूए भेल है
1: हे अच्छा है नहीं भूखा लगी रुपया तो हिना रख ले छे अरे कियो गाम जाय वाला हेते तखन ओकरा द्वारा पठेबे
0: ऐ मास में गाम रुपया नहीं जेते
1: हैं से कोना हेते गाम पर माँ बाबूजी कतो से की करथिन
0: से अपन जत से जे करथुन मुदा कह देलो हैं गाम रुपया नहीं जेते नहीं जेते
1: अहाक माथा ठीक है कि नहीं हैं कहू तो ओ बुढ़वा बुढ़िया कका लगदा का हाथ पसारते
0: बड़ मैं बा भला भला है कहल के कि जी लोग सब शहर में जमीन की नहीं है घर बन भैया अहिन का गांव में भागल जाए छे हमरा घर में एकटा टीवी ने फ्रिज ने क्यों लोग जे डेरा पर आवे या तो लाजे काठ भ जाए छी
1: लक्ष्मी अखन देर अहाँ के भगवान ज्ञान नहीं देलन लोग धिया पुताक लेल रने वने बौआत कारण जे बुढ़ारीक लाठी बनत ताहि धिया पुताक ई काज जे अपने सब परिवार इलवाइश करे आ माँ बाप कष्ट भोगे
0: त जाओ ने जे फुराई से करू हमरा तो बुझले अछि हमरा लेल ए घर में क्यों ने
1: अहाँ तो हमरा माथा खराब क के राख दे अरे लोग सुनत तो की कहत जे केहन लोग सब हमरा ए मोहल्ला में चल आयल जे कखनो शांति नहीं रही है तकर सबक कोनो विचार नहीं
0: हे कहत नहीं अपना तो कोनो विचारे नहीं छन आ
1: चुप एक बेर जब मुंह से आवाज निकाल लूं तो बहुत बेजाय बात भ जाए बुझलिए हे हल्ली

0: दिन में तो कोनहुना पार लागल। नवादा वाली कनिया थोड़क मरवा देने रहथिन, मुदा आब की करबे।
1: देखियो ने केहन समय साल खराब भ गेलै है, जे जमीनो नहि केओ भरना लेबो चाहे छै, आ जँ ककरो एक रति मोनो डोले छै तऽ चासक जे सबसे नीक जमीन सैह मंगैत अछि।
0: तऽ की करबै, आश्रमी खेत तऽ नहि भरना लगा, किछु 7 करोड़क खेत बेच लिय, यह ने छोटका छौरा बिलेट जेतै। ओहि बाबू के की लगतन, कमाए छथि मौज करै छथि।
1: आश्चर्य ही दुनिया अछि, ये हमरा नहीं आशा छल जे मनोज सन बेटा एहन भ जायत। कुन धरा निये ओकरा पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ, मन में छल जे कमायत खटायत तो सब दुख दूर भ जायत, पर हाय रे विधाताक विटम्बना, सब कल्पनाक शीश महल समयक झंझावात में चकना चूर भ गेल।
0: हाँ, अहिने ओकर कोनो दुख नहीं छै, सबटा अहिंक क्या ले छै। हम कहने रही ने, ओहि छोट लोक सभक ओहिठाम बेटाक विवाह नहीं करू, मुदा हमर की सुनैय, टाका देलक एक ढाकी आ लोभे कऽ
1: लेलहुँ। ई गप अहाँ सत्ते कहै छी, जावत ओकर विवाह नहीं भेल रहे 7 दिन पर, नहीं तो 15 दिन पर अवश्य गाम अबै छलै। गाम घरक सब लोक से गप सप रखै छलै, हे दरमाहा जे किछु भेटो, मुदा हमरा लोकनिक खर्च जोगर टाका तो अवश्य पठा दे छल। परंच जहिया
0: हम कहैत रही ना, ओहि गाम विवाह नहीं करब, ताहू में ऐसा घरक बेटी छिया छिया।
1: हाँ, ये गप तो सबटा ठीके कहै छी, मुदा लोक की ई सब जाने छलै, विवाहो जन्म मरणश्च यदा यत्र भविष्यति।
0: हम ई सब नहीं बुझै छियै, सबटा अहाँ अगर जीत जेकाँ केलहुँ तकरे ई फल अछि।
1: तैं ने हमरे सबटा भोगऽ पड़ि रहल है, नहीं तो जकर बेटा कमुआ रहते से बाप ए अवस्था में 2 सेर अन्न आ 2 टा टकाक लेल दरवज्जे दरवज्जे भटकैत रहते।
0: देखू, हम ई आहे माहे नहीं सुनऽ चाहैत छी, ओ अपन निमेरा तो करिए कि ने, हमरे सब लेल ने ओकरा पाई छैक, ई संपत्ति तो ओकर अर्जनु थीक। अहाँ जमीन बेच कऽ कन्यादान कऽ लिय, कारण समर्थ बेटी मातृक ओगरने अछि, घरक खर्ची सेहो चलब, तखन कनिये छोटका छौरा ले होइए जे ई कोना पढ़तै लिखतै। समयो साल एहने छैक, कतो नौकरियो चाकरी हेतै कि नहि हेतै।
1: अरे अहाँ तऽ कन्यादान नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई गप करऽ लगलहुँ, आ घर में मुसरी डंड खींचैये से ध्याने नहि।
0: तैं ने कहै छी, कोनो उपाय तऽ अहीं ने करबै, हम जे मौगी भऽ कऽ ककरो कहऽ जेबै सेहो तऽ अहीं सभक प्रतिष्ठा पर पड़त, ई काज सब तऽ पुरखे पात्रक छियै कि नहि।
2: माँ
0: की बौआ,
2: फरवरी बीत रहल अछि, किताब नहि कीन लेबे?
0: हाँ हाँ, पायक जोगार करै छियै, किया नहि कीन देब? अपना बौआ के किताब नहि कीन देब तऽ ककरा कीन देबै?
2: तू फुसिये कहैत छा, सब दिन पाइये के जोगार करै छथिन, क्लास में सब कत्तो से कत्तो आगू बढ़ि गेल। आहा
1: सरोज, एम्हर आओ बौआ, अहाँ चिंता जुन करी, कल चौक पर से आन देब।
2: ठीक छै, कल नहि आन देब तखन ने।
1: हाँ हाँ, आन देब अवश्य आन देब, जाओ पढ़ू गे।

0: की सोचे छे गे?
1: सोचे छी जे ककरा लग जाए जे किछ टकाक बंदोबस्त क दिए।
0: एकटा बात पूछू?
1: की पूछू ने?
0: मुंशी बाबू आइ काल्हि दरभंगा में जेथिन, ओतो मुकदमा लागि क जाइत रहै छथिन। हुनका दिया एक बेर आर समाज द क देखतियै कि जे
1: ओ त आइयो भोर में भेटल छला है। पूछबो केलन जे बेटा को कोनो समाज बारी हुआ त कह हम कल दरभंगा जाए।
0: अहाँ किछ कहलियै नै कि?
1: की कहती है समाज? उन जने छैत घरक हालत, ओ अन्न नहीं खास खाय छैत की? अहाँके एखनो धरि बेटा के ममता जा नहीं रहल है।
0: दुर्जा, एमन कतो लोक बाजै, यौ हमरा कोना नहीं ममता रहत? 9 मास धरि अपन सोनित पिया पेट में रखलौ, ओ केहनो भ जाय, परंच हमर हृदय तो मायक हृदय अछि कि ने, कोना नहीं ममता रहत?
1: तैं लै नहीं छी, मुर्रा पठा दैया। पढ़ल सुगा भूख भ गेल, ये आब ओकरा की समाद देबै? जिना भगवानक इच्छा हेतन समय बिता लेब।
0: कने हमरो बात सुनू ने, एक बेर हुनका लग जाओ आ कहबन जे बुझा सुझा क सब गप कहथिन, भ सकैया हुनका से कहला से मन बदल जाए आ लाजे पछे।
1: निर्लज के लाज होइ छे कि? बेस अहाँ जिद करै छी तो हम जाइ छी।
0: हे, हुनका लग नहीं सब गप बाजि देबै, झपले तोपल कहबन।
1: से तो अब हम न बुझबै, अहाँ हमरा बुझबै छी, तो हम आप जाइ छी।
0: बेस।

0: छी के छी
1: के बार खोला ने
2: ओहो टीवी क्या बंद कर दिए खोल दियो ने
0: के थी कौन
1: हाँ मनसी छी हो के बार खोला ने
0: आ हा हा हा मनसी कका गोर लगे छी
1: आ नीके रहो
0: आओ बैसू तनी चाय ता पी लिया आओ बैसू

0: चाह बनाओ। मंशी कका आयला है।
1: हम अखन कतौ नहीं जाए। हे देखियो ने, देखियो देखियो टीवी में कतेक सुंदर डांस दऽ रहल छै।
0: एको बिसिया ज्ञान नहीं है की
1: मार बाहिन धब क कतौ कहां से के आबि क माथ पर बैठा जाइए। ए यौ रैकियो में अही ठम रहथिन की?
0: ई बात सब पूछऽ वाला छै। एतेक अबेर क एलखिन है तो फिर कतौ जेथिन?
1: हे भगवान, आब एतेक गोटाक भानस कोना करब हम। मर जाएब हम अई घर में। भगवान और दो कतेक टा दे देलन है हमरा से नहीं चाहिए।
0: अच्छा अच्छा भेल भेल, चाह बनाओ आ भ जाए त कने कहब। काका गाम घरक हाल चाल सबटा ठीक छै ने?
2: तो अपन हाल चाल कह। गाम घरक कोन हाल चाल? सब ठीके छै।
0: हाँ, अहाँ लोकनिक आशीर्वाद से सब ठीक ठाक छै। मुदा गाम पर सब निके नाच छै ने?
2: हाँ

0: सब ठीक है।
1: एना किया बजलो?
0: कोना बाजू? कहलिया तो सब ठीक है।
1: लिया चाह पी लिया। अरे गप सप तो तकर बाद हेवे करते। अहि बेर उपजा बारी द सुनलिए जे?
0: हाँ हो, एहन तो कहियो देखने ने रही। लोक अन्न अन्न के मर जाए।
1: हाँ सह सुनलिए। बाबूजी कोनो समादो कहलन?
0: हो समाद तो एक ढाकी कहलथुन, मुदा ओ जे कहथुन से तो की नहीं जने छ?
1: हाँ से तो जनते छे, मुदा की करिए, अहाँ तो जनते छी हमर सभक हालत। सुखैल दरमाहा पर की करूँ? ताहू में अई मास में एकटा टीवी आ फ्रिज लो लेलिए, तैं रुपया नहीं पठा सकलियन। दिक्कत तो हेवे करते, कहबन जे कोना कहके कोनो तरह समय काट लेता। कका अगला फसिल नीक छै कि नहीं?
0: हाँ अखन तो छै, मुदा लोक अगला फसिल तक बाँचत तखन कि नहीं?
1: से तो ठीक है, बड़ अघोर काल बीत रहल छे। सोचने रही जे कम से कम 50 टाका पैंच ल क पठा देतियन, मुदा आइकल त क्यो ककरो नै पैंच दै छे।
0: हाँ से गप त छै के, मुदा हो जखन तोरा सब सन कमौआ सब के क्यो एकटा पाई देनिहार नै छ, तखन गृहस्थ के की हालत हेतै एक से सोचल ह।
1: अच्छा काका, अहाँ के जो परमेश्वरा वाला केस छल तकर की भेले?
0: ओकरे आई तारीख छली है, अखन की हेतै? कोर्ट कचहरी के बात बुझल नहीं छ, तखन देखक त की होई छे।
1: बाबूजी कोनो खास समादो कहलन है?
0: हो बाबूजी के समाद आब हम की सुनेब तोरा? तो त अपने समाद ततेक सुना देल
1: से की
0: नहीं किछ सह कहलिया। हमरा जे बुझबाक छल से बुझलो, आप बुझवा में कोनो भांगट थोड़बे एछ?
1: नहीं नहीं स्पष्ट कहू ने।
0: स्पष्ट की कहू, ककरा कहू? हो लेकिन बहुत बेसी कष्ट में छथि, साझक साझ बीत रहल छन। संध्या काल हमरा कह आयल छला जे अहां दरभंगा जायब तो मनोज से निश्चित रूप से भेंट क ओकरा एहिठामक सब गप कहबेक, मुदा हाय रे ईश्वर, जखन गाम पर से निकल गेल रही भोर में तो मरना कहलक जे हुनका हार्ट अटैक भ गेलन। घबरेबाक बात नहीं, अखन तो ठीके छै, दवाई दारू चल रहल छन।
1: तेसर बेर हार्ट अटैक? तखन तो एक मिनट काका अबै छी। लक्ष्मी लक्ष्मी अंत्याय भ गेल।
2: की भेल?
1: बाबूजी के तेसर बेर हार्ट अटैक भ गेलन।
2: तेसर बेर हार्ट अटैक?
1: लक्ष्मी तुरंत गाम चलो, जल्दी करू।
2: मुदा एना धड़फड़ में कोना की करबे?
1: लक्ष्मी जो बाबूजी के किछ भ गेलन तो
2: एते कतु लोक अबते? ये बूढ़ छलखी, हुनका सब लेल कतु एतेक?
1: लक्ष्मी ई गप अहाँ बाज रहल छी? काका हम सब अखने गाम जेबाक तैयारी कर रहल छी, की विचार?
0: उत्तम विचार, बस तो आब निकल गेल हत, मुदा ट्रेन छै
1: तो हमरा सबके तैयार भ जेबाक चाही ने।
0: हाँ हाँ विलम्ब करबाक काज नहीं,

0: डॉक्टर साहब की हालत छन?
1: बेसी चिंता करबा काज नहीं, परंच तेसर अटैक छन ते किछ कहब कठिन। ओना हम ई दवाई लिख दे छी, जब तुरंते ई पल जाए तो ठीक भ जेबाक चाही।
0: कतेक ई दवाई हेतै?
1: दवाई तो थोड़े महग छै, लगभग 500 टका तो चाही।
0: 500? हे भगवान, आब कोन उपाय करबैक, ककरा कहबैक?
1: बेसी चिंतित होबाक काज नहि छै, चौक पर ककरो पठैयौ। छोटू बाबू के हमर नाम कहतै, ओ दवाई दऽ देथिन। दहे कनि जल्दी में
0: सर।

0: हाँ मैं ककरो से साइकिल मांग कर फुर्तीन दवाई लेने आबू आ
1: अच्छा जाय छी
0: हिनका एना किया भ गेल डॉक्टर साहब
2: हिनका हार्ट डिजीज छन कि नहीं एक बीच में बुझाई तक जना बेसी मानसिक तनाव रहलन अछि हार्ट डिजीज वाला के बेसी चिंतित नहीं रहबाक चाहिए
0: चिंता तो जना नहीं है बुझू आखिर करबो की करती भगवान एक टा बेटो देलते लेकिन
2: इतना जुनी कानू मैं तो अनाथ भाग गया
0: कानू ने तो की करूं कपार पर कन्यादान सरोजक पढ़ाई लिखा आप परिवारक भरण पोखन के करते ही रहो दई
2: बहुत विलंब भ रहले है आप पेशेंट के बचाय मुश्किल सन लाग रहल अछि के सरोज की भेल
3: छोटू बाबू के दुकान बंद छले आ दोसर दुकान वाला उधारी नहीं देलक लात क लेलक जे दवाइये नहीं है
0: तखन आप कौन उपाय कर देख डॉक्टर साहब
2: काकी आप दवाई कोनो प्रयोजन अब आगे काज देख
0: बाप रे बा

0: बउआ बाबूजी आ बाबूजी लक्ष्मी बाबूजी माँ माँ हमरा माफ कर दिया माँ हमरा बात की के माफ कर दिया बउआ हमरा अपन पापी वसुंधरा पर दोसर क्यों नहीं संतान रहलो संता हमर कसर इतने नीच जे बाबूजी के दाह संस्कार तक नहीं कर सकल
1: भाना करी छे जावत काल दे जीवे छला खोज पुछाई तब नहीं पार लगे छले अन्य अन्य के मर गला बेचारे अखन देखू ने नाटक लगे जना केहन पित्र भक्त राम और श्रवण कुमार छठ अखन की भला जावत काल ई गुरुआई न कृपा रहत एना है विचार तो होते नहीं सबक इलवाइश में देखू दरभंगा में आ गांव पर माए बाप अन्ना दवाई दारू खाते मरे छन कुल अहंकार कुल कलंक नहीं सब नहीं
2: बंद करो आक्रोश माय हृदय तो गंगा के समान विशाल और पवित्र होइ छै तैं एहि मे सब छोट बड़ नीक अधला के उद्धार करबाक सामर्थ्य होइ छै हम भगवान से यह प्रार्थना

अभी आप सुन रहे थे मैथिली नाटक गुरुआइन। लेखक थे फूलचंद झा प्रवीण और निर्देशक थे सीताराम शर्मा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना

0: के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: Today, I look forward to...
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत, यानी दोपहर के 1:10 पर। कलाकार होंगे मोहम्मद रफी। दोपहर के 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। खतों पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आपकी फरमाइशी गीतों को सुनवाएंगे। दोपहर के 2 सुनिएगा हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। इलाकाई खबर का प्रसारण होगा दोपहर के 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना। हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 2:15 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर के 2:30 पर। विद्यापति गीत सुनवाएंगे आपको दोपहर के 3:00। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या के 5 सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और गजलों का कार्यक्रम। संध्या 5:40 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीत। संध्या 6 सुनवाएंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। विद्यापति गीत का आनंद आप ले पाएंगे संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद सुनिएगा संध्या 6:25 पर। गाम घर के अंतर्गत सुनिएगा गुनगुनाइत मन, समय होगा संध्या के 6:30 पर। इसी के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:00। संध्या 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे संध्या 7:52 पर। खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा जगत सुनिएगा रात्रि के 8:15 पर। वाचन एवं निर्माण दीपक कुमार झा का होगा और प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा की। रात्रि के 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या। रात्रि 9 न्यूज एट 9 एवं रात्रि के 9:15 पर उर्दू खबर। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, इसका प्रसारण भी हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि के 11 हिंदी समाचार और 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक तो इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आब वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं हैत त खेती नहीं हैत आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म फूल बने अंगारे।

आपके अनुरोध पर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आपके लिखे हुए खतों के आधार पर हम सुनवाते हैं आपके पसंद का गाना, आपके घरों तक पहुंचाते हैं। जी हां, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप भी हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, 846004। तो जरूर से लिख भेजिए खत, ताकि हम शामिल कर सकें अगले कार्यक्रम में आपके खतों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और शामिल करते हैं आज का पहला खत कार्यक्रम में।

आपके अनुरोध पर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आपके लिखे हुए खतों के आधार पर हम सुनवाते हैं आपके पसंद का गाना, आपके घरों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप भी हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, 846004। तो जरूर से लिख भेजिए खत, ताकि हम शामिल कर सकें अगले कार्यक्रम में आपके खतों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और शामिल करते हैं आज का पहला खत कार्यक्रम में।

कार्यक्रम का पहला खत हमारे पास आया है बहादुरपुर रथ चौक जिला जलगांव से। लिखने वाले हैं संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंगवाल और रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इस गाने की फरमाइश हमसे की है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से लिखते हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता कुमारी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से यह खत हमारे पास आया है। लिखने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। आप सबकी फरमाइश है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गाना। तो चलिए सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आपकी पसंद का गाना।

आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला खत हमने लिया है, कार्यक्रम में यह आया है नलगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं महाराज करतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, निशा और तुलसी गोस्वामी। इसी गाने की फरमाइश हमसे की है एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे ने। गोला बाजार बक्सर से लिखते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। साथ ही इसी गाने की फरमाइश कर रहे हैं नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान। तो चलिए, आपकी फरमाइश पर हम भेज रहे हैं रेडियो सेट पर आपका प्रिय गाना। फिल्म तेरे नाम में उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ है।

आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला खत शामिल करते हैं जो हमें आया है सीतामढ़ी से। रहमानिया मोहल्ला महसौल से लिखते हैं, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रियत जहानाज, रूहीनाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम। इसी गाने की फरमाइश हमसे की है फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटपटिया जा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिश्रा मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, लल्लू सुर गनैया। और अगला खत जो हमारे पास आया है वो है सेक्टर 27 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सबों के फरमाइश पर पेश है आपके पसंद का गाना मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में फिल्म खुदगर्ज से।

0: आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। कार्यक्रम जारी है संतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला कदम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, हमें लिखा है महाराष्ट्र, तहसील मलकापुर महेशवाड़ी से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खेरोडकर साहब लिखते हैं इस खत को। अगला खत जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें लिखा है कटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय,

दुबिहा, नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आदर्श नगर मलोट पंजाब से लिखते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, और इसी गाने की फरमाइश कर रहे हैं जतका किशनपुर से आलम दिलकश, शबान अनाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। तो चलिए आपकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी की आवाज में हीर रांझा फिल्म का ये गाना।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं आपके अनुरोध पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। अगला खत हम शामिल करते हैं जो हमें लिखा है पंजाब से, गांधी चौक रोपड़ से। खत हमारे पास आया है हरदेव मेका, बलविंदर मेका बीरक, जयतेक बीरक और मेका बीरक लिखते हैं। छत्तीसगढ़ भटपाड़ा दतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा और इसी गाने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं। इनामर टोला भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। बेल्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने और अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे। आप सबों की फरमाइश पर पेश है आपकी पसंद का गाना जिसे हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। आवाज़ है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की।

और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम धीरे धीरे अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चलते चलते कुछ खत और शामिल करते हैं कार्यक्रम में, इनकी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी नित्याराज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र, वंश प्रसाद ने हमें खत लिखा है। टावर चौक आशापुर से प्यारेलाल मनोहर, अंबालाल मनोहर, दुलाड़ीलाल मनोहर, सुंदरलाल मनोहर, प्रेमलाल मनोहर, आपका खत आया। औरंगाबाद से हमें यह खत लिखा है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। और साथ ही साथ इसी गाने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मुनत, चेतना नाहट, दीक्षा कुश मुनत, दिलीप सिंह पवार, यह खत हमें लिखा है उज्जैन से। तो चलिए आप सबों की फरमाइश को पूरा कर देते हैं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में फिल्म संगीत से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। चाहे तो आप भी हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल खतों के माध्यम से। लिख भेजिए हमें खत, हमारा पता है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा 8460004। हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार। तो दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।

आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब आप हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज होगा। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में कहा कि पंचायत स्तर से लेकर जिला अध्यक्षों तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए पार्टी के सभी

0: प्रतिनिधि पटना पहुंचे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

1 जून 2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु और 21 वर्ष आरओ तथा एआरओ हेतु। अधिकतम उम्र 35 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया था, बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
6: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर

0: घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
2: Agenda.

0: सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक

0: अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब से लेकर आधे घंटे तक सुनेंगे हम कुछ बेहतरीन नगमे हिंदी फिल्मों के। पहला गाना सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, जिसे लिया हमने फिल्म सिर्फ तुम से।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनवाता हूं फिल्म प्रेम रोग से, आवाज़ है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। निकाह फिल्म में सुनिए महेंद्र कपूर, सलमा आगा, आशा भोसले और साथियों को।

फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं ख़त्म होता है, दीजिए इजाज़त। अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए विद्यापति गीत। कलाकार हैं सूर्य नारायण पोद्दार और गौतम मिश्रा।

अभी आप विद्यापति गीतों का आनंद ले रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः संध्या 5 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ, राजावत और समस्त राजावत परिवार का, और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर

लीजिए, अब मनचाही गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये का नाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई।
3: हाँ?
2: नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: हाँ तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता।

0: लग गया था, मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब
1: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
0: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चचा जान, वो फौजी इमदाद
0: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
2: जी हुजूर।
3: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल मन बहार। सत श्री अकाल।
3: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
0: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
3: सौंपो जी सौंपो।
0: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
3: साड़ी मदद?
0: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
3: जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
0: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
1: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
0: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
1: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
0: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
4: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
5: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अभी बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
4: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
5: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन जनाब ने उसे माफ।
4: उफ दादी जान,
5: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह तखल अंदाजी और हमारी तोहीन होती रहती है।
4: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
5: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
4: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
5: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
4: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
5: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
4: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
5: उफ, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
4: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
5: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
4: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
6: जो हुक्म आ लीजा। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
4: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
7: हुजूर, हुजूर, रहम।
4: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे। कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात के तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं। क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खां, किले की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया, एक दो नहीं पूरे

0: 100 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया।
1: बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के देर है। अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ तका, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से सबका पड़ा ही कहा है। गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा।

0: नाचो। मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा। कोई रहम नहीं, नाचो।
1: इन शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
0: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: मैं कहता

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की।

0: बीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने। हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली। मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है। हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा। खुदा हाफिज़।

0: जहां बना पहले की ये दुर्दशा।
1: बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख, कान, नाक, होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होठ हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं,
1: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार, उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जानें बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियाँ, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है।

0: आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए, बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है, बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
0: ठीक है।
1: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहाँ पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
0: जी।
1: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस, तो

0: उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ, ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में।
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे, एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छा।
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना, लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में, और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इन्विटेशन।
1: अच्छा,
0: हाँ। तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी।
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो
1: था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है,
1: अच्छा।
0: ये लिखा किसने है
1: जी?
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई, दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है, हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: जी
1: जी।
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा।
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद है ना। इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा

0: और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया। वहाँ पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी।
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए।
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
1: जी, जी जी।
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है जी।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूँगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी,
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आँख में भर लो पानी।

0: तो देखिए, हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों
1: जी।
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में।

0: या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे, आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए, और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
1: जी।
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे, सिर्फ मिलने के लिए।
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल।
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज, अखबार। मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
1: जी।
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे, और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा,
0: और आज भी आते हैं वो। मैंने बंद नहीं किए
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ हाँ
1: जी।
0: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था, और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था। हाँ, और हाँ, हर कण कण तो में वो देशभक्ति।
0: ये जो जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ, और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी,

0: तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है, सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे वो रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये, और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी,
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम
0: अभी जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था,
1: हाँ,
0: कविताओं का।
1: हाँ, हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि जी, हमको जी, उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा,
0: और कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन ले,
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति मिली हमको, जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आज़ादी उसके 2-4 साल के बाद, उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आज़ादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आज़ाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना
1: मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश,

0: भी वही बात है, तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप जी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं कुछ गजल।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिहरण की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में ये गजल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इन्हीं के स्वर में अर्थात गुलाम अली के स्वर में। सुनिए एक और गजल।

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म 777 चार्ली का यह गीत। गायक कलाकार हैं नवीन पॉल जावेद अली, बोल हैं कार्तिक नैनन दुबे के और संगीत निर्देशन नवीन पॉल का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का यह गीत सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में, बोल एवं संगीत निर्देशन अजय सिंघा के हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया 3 का यह गीत। गायक कलाकार थे श्रेया घोषाल, बोल थे समीर के और संगीत निर्देशन अमाल मल्लिक प्रीतम का था। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं ड्रीम गर्ल 2 का यह गीत।

गायक कलाकार हैं मित ब्रोसफेट, जोनिता गांधी और जुबिन नौटियाल। बोल हैं कुमार के और संगीत निर्देशन सौरभ राय का है।

0: अभी आप सुन रहे थे ड्रीम गर्ल 3 का यह गीत मितब्रोस जोनिता गांधी एवं जुबिन नौटियाल की आवाज में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और

0: संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे गाम घर। शाम 7 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। रात्रि 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। क्रीड़ा जगत का समय होगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात्रि 10 आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। विषय होगा अपन मत। आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। रामचरित मानस गान का समय होगा प्रातः 6:40 पर। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। दिन में 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन के 11:00।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 12:30 पर आप सुनेंगे नारी संसार कार्यक्रम। देशभक्ति गीत दोपहर 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और 1:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। रोजगार सूचना आप सुनते हैं दोपहर 2:10 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत तथा लोकगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर

बजे संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। गाम घर संध्या 6:30 पर तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का वक्त होगा रात्रि 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। और रात्रि 10 बजे आप आनंद लेंगे हेलो आकाशवाणी का। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं गौतम मिश्र के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे गौतम मिश्र के स्वर में ये विद्यापति गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति राम कुमार मल्लिक के स्वर में।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
2: आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद, संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। बिहार विधान परिषदक 9 सीटक वास्ते होबय वला उपचुनाव लेल काल्हि नामांकनक अंतिम तारीख अछि। प्रत्याशी 11 जून धरि नाम वापस लऽ सकताह। आवश्यक भेला पर एहि सीट सब लेल 18 जून के मतदान होयत आ वएह दिन सांझ में मतगणना भऽ जायत। एम्हर NDAक घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधान परिषदक एक सीट लेल पार्टीक कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के उम्मीदवार घोषित कयलक अछि। एहि सँ पूर्व भाजपा आ जदयू 4-4 उम्मीदवारक नामक सूची जारी कयने अछि। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आलोक कुमार सिंह के पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष बनौलक अछि। आइ पटना में भेल बैसार में पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ई घोषणा कयलनि। ओतहि प्रशांत पंकज आ सुभाष चंद्रवंशी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाओल गेल अछि, जखन कि हिमांशु पटेल प्रधान महासचिव बनलाह। RSS प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर भ्रमण कार्यक्रम लेल आइ पटना पहुंचलाह। पटना हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघक पदाधिकारी आ आनो वरिष्ठ नेता हुनक स्वागत कयलनि। श्री भागवत मुंगेरक सरस्वती विद्या मंदिर में चलि रहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्रक दिस सँ आयोजित शिक्षा वर्ग में सम्मिलित हेताह। भागलपुर जिलाक विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज पर आइ सँ परिचालन शुरू भऽ गेल। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र एकर उद्घाटन कयलनि। एहि अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी समेत आनो पदाधिकारी उपस्थित छलाह। विदित अछि जे पछिला 3 मई के राति में पुलक एक स्लैब टूटला सँ एहि पर आवाजाही ठप भऽ गेल छल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA सोशल मीडिया आ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 पुनर्परीक्षाक प्रश्न पत्र के कथित लीक आ बिक्रीक दावाक खंडन कयलक अछि। NTA कहलक अछि जे ई संगठित नकल गिरोह सभक काज अछि। एजेंसी सक्रिय रूप सँ आपत्तिजनक चैनल, खाता आ सामग्री सभ के चिन्हित कऽ संबंधित प्लेटफॉर्मक विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करबाक चेतावनी देलक अछि। दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में 16 जूनक बाद प्रवेश करबाक संभावना अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार मानसून सामान्य गति सँ बंगालक खाड़ीक अधिकांश क्षेत्र में आगाँ बढ़ि रहल अछि। विभाग जनौलक अछि जे 2 सँ 3 दिन में पूर्वोत्तर भाग में मानसून सक्रिय भऽ जायत। प्रदेश में चक्रवातीय परिसंचरणक प्रभावक कारण मौसम में बदलावक स्थिति बनल अछि। मौसम विज्ञान केंद्र सँ प्राप्त जनतबक अनुसार अगला 24 घंटा में बांका, कटिहार आ भागलपुर जिला में आंशिक वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि क्रम में 40 सँ 50 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ हवा चलबाक संभावना सेहो बनल अछि। तेल कंपनी सब 14 किलोक भानस वाला गैस सिलेंडरक मूल्य में 29 टका वृद्धि कयलक अछि। ओतहि 5 किलो वाला सिलेंडरक मूल्य 375 टका सँ बढ़िकऽ 386 टका भऽ गेल। नव मूल्य तत्काल प्रभाव सँ लागू भऽ गेल अछि। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरक मूल्य में कोनो वृद्धि नहि भेल अछि। भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहलनि अछि जे वैश्विक परिस्थितिक कारण भारत सहित संपूर्ण दुनिया में तेल आ गैस के दाम बढ़ि रहल अछि। श्री सरावगी पटना में जनौलनि जे प्रधानमंत्रीक प्रयास आ देशक मजबूत अर्थव्यवस्थाक

0: कारण आन देशक तुलना में भारत में गैसक दाम अनियंत्रित नहि भेल अछि। दरभंगा में बैडमिंटन अकादमी दिस सँ खेलक विकास लेल 9 जून सँ 23 जून धरि लेल 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरक आयोजन कयल जा रहल अछि। अकादमिक सचिव विकास कुमार शर्मा जनौलनि जे एहि प्रशिक्षण शिविर मे 6 सँ 14 वर्षक बालक बालिका लोकनि भाग लऽ सकैत छथि। दरभंगा जिला स्थित महाराजी बांध के दुरुस्त करबाक निर्देश देल गेल अछि। जिला पदाधिकारीक निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पाणी पांडे महाराजी बांधक निरीक्षण कयलनि। बाढ़ पूर्व तैयारी के लऽ कऽ प्रशासन दिस सँ ई पहल कयल जा रहल अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय मे शैक्षणिक सत्र 2026-27 लेल नामांकन प्रक्रियाक शुभारंभ समर्थ पोर्टलक माध्यम सँ कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुननिहार सब श्रोता लोकनि के नमस्कार संग उगना भाई गोर लगे छी।
1: प्रसन्न रहू मिहिर भाई। मिहिर भाई आय रवि दिन है, आजुक दिन हमरा लोकनि स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनिक लेल ल क अबै छियनि हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम गुनगुनाइत मोन। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आय एकटा दोहा ल क आयल छियनि, संगे की चर्चा करब, गीत नादक आनंद लेब आ एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सेहो सुनब। मुदा एहि सबसँ पहिने दोहा की ल क आयल छियनि स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनिक लेल?
0: उगना भाई, हम कबीरदास रचित उगना कबीरदास रचित दोहा अनलहुँ यऽ। हुनकर कहब छनि, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत्व वायु अज्ञानी। तऽ हुनकर कहब छनि जे जाहि प्रकार घड़ाक भीतर पानि रहै अछि आ घड़ाक बाहर नहि पानिके बूंद ऊपर रहै छै, तहिना आत्मा परमता सबटा एकै अछि। शरीर रूपी घड़ाके फुटलासँ अंदरक पानि आ बाहरमे जे घड़ाक ऊपरमे पानिके बूंदा रहै सब मिल जाइत अछि। तऽ ई कबीरके तथ्य छै। आ उगना भाई,
1: आइ 7 जून अछि। हाँ, इएह हमरा लोकनि चर्चा करऽ चाहैत छलहुँ जे आइ एकटा विशेष दिवस अछि।
0: आइ छियै विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनबे के मुख्य उद्देश्य अछि उगना भाई, दूषित भोजन से होमय वाला बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ायब। देखियो उगना भाई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उद्देश्य बड़ व्यापक अछि। एकर उद्देश्य इहो अछि जे खेत सँ थाली तक सुरक्षित भोजन सुनिश्चित सबके कयल जाय। देखियो उगना भाई, खेत से थाली तक सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करबा का अर्थ अछि जे अपना सब जे खेती पथारी में अंधाधुंध रासायनिक खाद आ गाछ में दवाई के प्रयोग जे करै छी ओ खूब उचित नहीं अछि। ओहि से खाद आ पर्यावरण दुनू प्रदूषित भ रहल अछि।
1: ठीक है, कहलहुँ तो ई जे हमरा लोकनि के आज दिवस मनबै छी ओहि पर ध्यान देबाक चाही एकर उद्देश्य पर। आ बेर रहत तऽ फेर गपशप करब, मुदा आइ स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनिक लेल लऽ कऽ अबै छियनि हुनक पसिनक लोकगीत। तऽ ई पहिल चिट्ठी कतऽ सँ आयल अछि?
0: हमरा लग जे चिट्ठी आयल यऽ उगना भाई, ओ इनामत टोला भगवतीपुर पंचायत से लिखनहार छथि नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी,

0: सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, ई सब लिखने छथि। अहाँ लग कोन चिट्ठी आयल यऽ?
1: ई अछि गोकुल चौक गंगजला सहरसा सँ। सुनय चाहै छथि राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी आ हिनक परिवारक सदस्यगण। तऽ सुनल जाय
0: ई गीत।
1: ई गीत

0: अखन अरविंद कुमार झा सँ ई गीत सुनै छलहुँ। उगना भाई अहाँ लग कोन चिट्ठी पठेलथि?
1: चिट्ठी आयल अछि बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 सँ। सुनऽ चाहैत छथि संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, वंश प्रसाद।
0: हमरा लग जे चिट्ठी आयल अछि सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा सँ। लिखनहार छथि भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, ई सब सुनै चाहै छथि राधा मोहन मिश्र के
1: ई महेश वाणी। सुनल जाए।

0: हाँ, अखन अपना सब राधा मोहन मिश्र सँ ई गीत सुनै छलहुँ। उगना भाई, आब एकटा कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रमके समय भऽ रहल अछि, ममताके आँचल।
1: तऽ सुनल जाए ई प्रायोजित कार्यक्रम ममताके आँचल।
0: सुनी।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और आज रविवार के दिन ममता का आंचल कार्यक्रम एक नए रंग, एक नए कलेवर में हम लेकर आने लगे हैं आपके लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी परी से। आज से, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, एक नया सफर, एक नया प्रोग्राम, लेकिन नाम पुराना, ममता का आंचल हम शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार को बुलाने से पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिहार में हर दिन हजारों कपल एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसके बारे में घर में बात नहीं होती, डॉक्टर से पूछने में शर्म आती है और समाज में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती? वो तकलीफ है निसंतानता। और आज से हर रविवार इस तकलीफ पर ममता का आंचल कार्यक्रम में हम खुलकर बेझिझक बात करेंगे और आप भी फोन के माध्यम से हमसे सवाल पूछिएगा। हमारे साथ होती हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, जो इलाज ही नहीं करती, समझती भी हैं आपको। हाँ, सारी बातें। ये कार्यक्रम वैसे लोगों के लिए जो दूर दराज गांव में बैठे हैं, पूरे बिहार में, जहां जानकारियां पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम रेडियो का सहारा लेकर के आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, जो बातें हमने कही ऊपर कि अगर बच्चा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, बेझिझक बात कीजिए, सिर्फ ये एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार को बुलाएं, उससे पहले हम अपना फोन नंबर, यानी डॉक्टर श्रद्धा का फोन नंबर देना चाहते हैं कि आप सीधे सीधे बात कर लीजिए उनसे। 9162562266 ये नंबर है, इस पर आप चाहिए तो सीधे सीधे बात कर लीजिएगा उनसे। सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बस आपको खुलकर सामने आना है। डॉक्टर श्रद्धा, हम बातें कर रहे हैं लोगों से, आपने सुना, और अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपको।
4: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी। आज हम लोग नए टाइम पे बात कर रहे हैं,
3: नए दिन पर भी,
4: नए दिन पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है
3: जी,
4: और इसका इलाज संभव है
3: जी।
4: और हमने रेडियो प्रोग्राम इसलिए चुना है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो निसंतानता से जूझ तो रहे हैं,
3: हाँ,
4: लेकिन उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं मिल पा रही है
3: जी।
4: तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बीमारी है, विज्ञान बहुत आगे जा चुका है और इसका इलाज संभव है
3: जी।
4: और अगर आप सही डॉक्टर से सही समय पे मिलते हैं तो आप इलाज से आपको अवश्य आपको बच्चा होता है
3: जी।
4: और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आजकल IVF जैसा जो मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक आ गया है, IVF ICSI, वो अगर लोग अपनाते हैं तो कितने लोग को बच्चा ठहर पा रहा है,
3: बच्चा ठहर पा रहा है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, झिझकने की जरूरत नहीं। जैसा कि हमने कहा ना कि खुलकर बात करनी है, रविवार के इस ममता का आंचल कार्यक्रम में हम डॉक्टर श्रद्धा से सारे सवालों का जवाब दिलवाएंगे। एक छोटी सी बीमारी है, आराम से ठीक हो जाएगी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं। और ऐसे में हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर आपको बता रहे हैं कि 9162562266 9162562266। बिहार का कोई भी व्यक्ति ना छूटे, हमारी ये कोशिश है। और हम बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएं, अपने बच्चों को प्रेरित करें, न कि ताने दें। हाँ, मुझे ये भी पता है हमारे गांव घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे अपने घर में भी क्या होता है, अरे उसे बच्चा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बच्चा नहीं है ठीक है, लेकिन बच्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है, बीमारी है, विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, हमने रविवार को ये कार्यक्रम

0: इम्प्रूव किया है और एकदम नए तेवर में कि जो दिल में आए आपसे पूछे।
1: बिल्कुल हाँ। इस ये सब लोग उत्सुक होंगे कि इस प्रोग्राम में क्या है और क्या जानना चाहते हैं। इसमें डेफिनेटली हम लोग निसंतानता के बारे में तो बताते ही हैं
0: हाँ।
1: लेकिन साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरा चीज बताते हैं, यानी कि वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दर्द दिक्कत है, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कौन कौन सुन सकता है इस प्रोग्राम को
0: जी।
1: वैसी महिलाएं जिनको मासिक में दिक्कत है, जिनको मासिक नियमित रूप से नहीं हो रहा है
0: जी।
1: जिनको अत्यधिक दर्द होता है और कहीं ना कहीं मासिक के समय, और कहीं ना कहीं ये सब कारण होते हैं निसंतानता के। उसी तरह पुरुष जो अत्यधिक बीड़ी तंबाकू गुटखा ये लेते हैं
0: जी,
1: तो वह कहीं ना कहीं वो भी निसंतानता का कारण होता है। तो हम उन सभी को प्रेरित करते हैं कि आप सही लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपका ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहे
0: जी जी।
1: और ये जानना जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक आप सही पूरी तरह से जानकार नहीं होंगे, सशक्त नहीं हो पाइएगा अपनी जानकारी में, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि हर महिला का रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका चॉइस होना चाहिए, और वो तभी चॉइस ले सकती है जब वो प्रॉपर तरीके से वो जानकार हो
0: जी।
1: आजकल हर बहुत सी महिलाएं MBCS भी हो गई हैं, वो अपना प्रेगनेंसी कुछ दिन बाद प्लान करना चाहती, अच्छी बात है, MBCS होना चाहिए, प्रेगनेंसी भी आप बाद में प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका सारा चीज ठीक है, इसलिए एक बार अपना जांच जरूर करा लें
0: जी।
1: और जब जांच में सब कुछ ठीक हो तो आप अपना रिप्रोडक्शन अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। और हम यहाँ एक चीज बताना चाहते हैं, यानी राजेश एक चीज कहना चाहता है कि बच्चा नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं, IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। और ये सारा कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी पटना में है, भिखना पहाड़ी में है, आप यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और आने से पहले 9162562266 ये नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आपने निसंतानता की बात की आज के इस एपिसोड में, पहली बार बताइए लोगों को कि निसंतानता क्या है।
1: निसंतानता आजकल बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, ये वैसे दंपति को बोला जाता है जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, ऐसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। इसमें ये जानना जरूरी है कि अगर आपने एक साल कोशिश कर लिया और बच्चा नहीं ठहरा तो अब आपको जाकर इलाज कराना होगा। आप इलाज कराएं, कहाँ दिक्कत है, हो सकता है औरत में दिक्कत हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो
0: जी।
1: जो सामान्य डॉक्टर भी पकड़ लेते हैं, अगर औरत में अंडाशय का प्रॉब्लम है, अंडा नहीं बन रहा है, वजन ज्यादा है, या पुरुष में कोई दिक्कत है, तो आप अपना इलाज कराएं। लेकिन ध्यान रखें, अगर 2 साल हो गया और अब तक बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही मिले
0: हाँ।
1: क्योंकि वो आपका इलाज बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे सही समय पे करेंगे
0: हाँ।
1: क्योंकि आपका जो कीमती समय है, जिस समय बच्चा सबसे ज्यादा ठहर सकता है
0: जी,
1: उस समय इलाज करेंगे ताकि आपको आसान तरीके से, यानी कि दवाई से, कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे IUI ये सब से आपको बच्चा ठहर जाएगा। आप जितना लेट करेंगे आपकी बीमारी उतनी जटिल होते जाएगी और आपको बड़े बड़े प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा है। और एक बात बता दें डॉक्टर श्रद्धा की, अगर जिनको पैसे की समस्या है तो श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में क्या सुविधाएं उनको मिल रही है।
1: बिल्कुल,
0: जो रेडियो कार्यक्रम को सुनकर आएंगे यहाँ पर या बातें करेंगे तो उनके लिए पहला कंसल्टेशन फी मुफ्त होगा, अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त है, पहला अल्ट्रासाउंड मुफ्त होगा। अगर आप एडमिट होते हैं तो रहने के लिए, अटेंडेंट के लिए आपको जगह दी जाएगी, हर तरीके से सहयोग किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है ना कि एक बार पैसा नहीं देना है, टुकड़ों में EMI पर आप पैसा दे के अपना इलाज करा सकते हैं। और ये टुकड़ा एक दो टुकड़ा नहीं, 24 टुकड़ों में, ये मतलब 24 पार्ट में, 24 भाग में आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि अब डॉक्टर श्रद्धा ने यह मुहिम चलाया है कि बिहार में कोई भी कपल जो है ना निसंतान ना रहे, इलाज कराए, पैसे की वजह से किसी का इलाज ना हो, ये वो नहीं चाहती हैं। डॉक्टर श्रद्धा सही कह रहे हैं ना, क्या चाहती हैं बिहार से आप?
1: बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि हर लोग जागरूक हो,

0: और उनको पता चले कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है
1: जी।
0: सही समय पर सही जगह जाकर आप इलाज करा लें,
1: हाँ।
0: ताकि क्योंकि निसंतानता से मेंटल टेंशन भी बहुत होता है, उनका पर्सनल लाइफ बहुत खराब होता है, उस दंपति को समाज में इधर उधर से ताने बहुत पड़ते हैं,
1: हाँ।
0: तो अगर आप सही समय पे इलाज कर लेते हैं और आपको अगर बच्चा हो जाता है तो हर तरह से ठीक है,
1: हर तरीके से ठीक है। और इसमें जब श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी एक राष्ट्रीय स्तर का आईवीएफ सेंटर है, आगे से बढ़कर हाथ बढ़ा रहा है, तो आपको हाथ पकड़ लेना चाहिए। किसी भी चीज में संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
0: मैं ये बताना चाहती हूँ निसंतानता का कारण क्या क्या है।
1: हाँ बताइए।
0: निसंतानता का कारण औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। निसंतानता कभी कभी इस कारण से भी होता है कि औरत में अंडाशय में अंडे खत्म हो गए हैं,
1: हाँ।
0: या फिर अंडे ही नहीं बन रहे हो
1: जी।
0: क्योंकि जब तक अंडा नहीं बनेगा तब तक वो पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिल सकता है
1: जी।
0: और बच्चा नहीं ठहर सकता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो सकता है कि अंडे ही नहीं बन रहे हो, कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर पुरुष के शुक्राणु में कोई दिक्कत
1: जी।
0: या फिर अनएक्सप्लेन्ड, जिसको कि जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, जो अनएक्सप्लेन्ड हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी।
0: तो ये सारे कारण निसंतानता के हैं। और जो भी निसंतान दंपति हैं और जो सही जगह इलाज करते हैं करवाते हैं, तो 60-70% लोग को बच्चा ठहर जाता है,
1: बच्चा ठहर जाता है। लेकिन उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना होगा, हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना होगा, जिससे पता चल सके कि महिला में, पुरुष में या कोई ऐसी अदृश्य चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। और आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान हो चुका है, और आप उसके लिए प्रयास कीजिए। बहुत बड़ी चीज मत मानिए, विज्ञान इतना आगे, मेडिकल साइंस इतना आगे है, ये छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर श्रद्धा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप कहना चाहती हैं।
0: जी हाँ, श्रद्धा आईवीएफ ये चाहता है कि हम हर कपल को सही जानकारी दे, ताकि सही समय पर वो डिसीजन ले पाए
1: जी,
0: अपना संतान सुख का डिसीजन ले
1: जी,
0: पाए
1: जी,
0: ताकि उनका सपना सही समय पे पूरा हो जाए,
1: सही
0: और
1: समय
0: उनको
1: पर,
0: जूझना हाँ, ना पड़े,
1: बिल्कुल जूझना ना पड़े, और सारा प्रयोजन कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। बच्चे बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपके जीवन में। बड़े बुजुर्गों बार बार कह रहे हैं कि इसमें आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, पहचानिए, आगे बढ़िए। हमारे समाज में आज भी बड़े बुजुर्गों की बातें सुनी जाती हैं, ध्यान से सुनी जाती हैं। और जब डॉक्टर श्रद्धा नियमित रूप से अपने कीमती वक्त में से निकाल के रेडियो में आती हैं, बोलती हैं, आपकी काउंसलिंग करती हैं, तो आप घर पर बैठ के तो कर ही सकते हैं ना। पूरे बिहार में हम इसे लेकर आ रहे हैं कि पूरा बिहार जो है निसंतानता से मुक्त हो जाए। कुछ अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहिएगा श्रद्धा, आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। आज इंट्रोडक्टरी एपिसोड है हमारा, संडे है।
0: मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में हम मरीज की का जो इलाज है वो तो करते ही है, लेकिन साथ में हम संवेदना के साथ इलाज करते हैं। हम समझते हैं हर उस मरीज का दर्द जो निसंतानता से जूझ रहा है, और ये दर्द समझते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी ट्रीटमेंट करें, बेहतरीन का बेहतरीन इलाज हो पाए, और उनका निसंतानता का जिस चीज से जूझ रहे वो खत्म हो पाए और उनका सपना पूरा हो।
1: सपना पूरा हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना कि विश्वास अगर हो गया ना तो आधी समस्या तो वहीं दूर हो जा रही है। और हम एकदम खुले मन से इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के घर में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी आपके साथ खड़ा है। बच्चा नहीं हो पाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक रोग है जिसका इलाज किया जा सकता है। और इसी क्रम में हम अपने आगे से डॉक्टर श्रद्धा का नंबर दे रहे हैं, खुलकर बात कीजिए, पुरुष बात कीजिए, महिला बात कीजिए, बड़े बुजुर्ग बात करें, जो चाहे बात करें, और सकारात्मक रिजल्ट के लिए बात करें। नंबर नोट कीजिए 9162562266, 9162562266, हिंदी में 9162562266 ये नंबर है। इस पर बेबाक बात करें, एकदम खुलकर बिना किसी शर्म के, संकोच नहीं करना है, अब बात करना है, समाधान निकलेगा। फिलहाल ममता का आंचल रविवार का ये एपिसोड, देखते देखते समय खत्म होने को है। चलने से पहले डॉक्टर श्रद्धा को भी हम साथ लिए चलते हैं और दोनों कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्य

0: कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
1: एखन हमरा लोकन सुनलो ई प्रायोजित कार्यक्रम
2: ममता का आंचल
1: आ मिहिर भाई
2: अहिक
1: संग आब आजुक जे ई कार्यक्रम अछि ओ संपन्न भ रहल अछि। फेर हमरा लोकन अगला रवि दिन ई प्रायोजित कार्यक्रम लऽ कऽ आयब आ आब गुनगुनाता मन सम्पन्न भ रहल अछि कार्यक्रम। खेती गृहस्थीमे हमरा लोकनि स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिके स्वागत करैत छनि। हिनका लोकनिक लेल आइ लऽ कऽ आयल छनि किछु लोकगीत, एकर सङ्गहि मौसम सम्बन्धी सेहो जनतब देबनि। समसामयिक कृषि सम्बन्धी जे काज ओहि प्रसङ्गमे गपशप करब, मुदा एहि सभसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लै छी जे उर्वरकके हमरा लोकनिके सदते संतुलित व्यवहार करबाक चाही। मिहिर भाई जानिते छी जे उर्वरक जे होइत अछि ने, ई जो हमरा लोकनि बुझी जे एकर बेसी मात्रा देबै तऽ फसिलके उपजा बेसी हैत, ओ नहि होइत अछि। आ जो बड़ कम देबै तऽ तैयो
2: नहि
1: फसिलक उपजा उचित मात्रामे हैत। एकर सङ्ग सङ्ग उर्वरकमे इहो ध्यान राखी जे एके बेर नहि दी, उर्वरकके आवश्यकता अनुसार मात्रा जे दैत छी ओ 2-3 खेपमे सेहो कोनो कोनो उर्वरकके देल जाइत अछि। जेना नेत्रजनमे तऽ विशेष रूपसँ देल जाइत अछि, तऽ एहि गपके सेहो ध्यान
2: रखबै। देखियौ गुना भाई, किसान भाई लोकनिके पैघ जिम्मेदारी जे छनि, कतेक मेहनतसँ देशक जनताक लेल ओ अन्न उत्पादन करैत छथि, खेती पथारीसँ खूब मेहनत कए कऽ नीक उपजा हो, एहिपर हुनक बेसी ध्यान रहैत अछि। परन्तु किसान भाई लोकनि लक्षित उपजके लेल नीक बीया, उर्वरक आ कीटनाशक सबके प्रयोग नीक फसलके लेल तऽ करैत छथि, परन्तु लक्षित उपजके लेल खाद आ उर्वरकके प्रयोग करैसँ पहिने हुनका लोकनिके मृदा परीक्षण अर्थात माटिक जाँच पर निर्भर रहबाक चाही। ओ जाँच करेलाके बादे कोनो उर्वरकके प्रयोग करैत तऽ नीक होइ छै। देखियौ गुना भाई, मृदा परीक्षण अर्थात माटिक जाँच जे छै, ओकर तात्पर्य ई छै जे ओहि माटिमे कोन खादक प्रयोग कतेक कयल जाय, ई जे छै से मृदा परीक्षणके बादे माटिक जाँच करेलाके बादे किसान लोकनिके पता चलैत छनि। देखियौ उगना भाई, अपना सब तऽ वैज्ञानिक रूपसँ खेती पथारी अपन सबके किसान लोकनि करैत छथि, आ एहि सङ्ग खेतक फसलके कोन उर्वरकके आवश्यकता छैक एकर सटीक अनुमान माटिक जाँचसँ पता लगै छै। लक्षित उपजके लेल किसान भाई लोकनि जे खाद आ उर्वरकके प्रयोग करैत छथि, ओहिके लेल सबसँ पहिने हुनका सबके जे खादके ओहि माटिमे जरूरी छै ओतबी प्रयोग करैत, जेना मृदा परीक्षण अर्थात माटिक जाँच करेलाके बाद खेतक माटिमे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटासक कोन मात्रा कमी छै ओकर सटीक मात्रा पता लगेलासँ
1: सूक्ष्म पोषक तत्व कोन कमी छै, मुख्य पोषक तत्व कोन कमी छै, गौण पोषक तत्व कोन कमी छै, तऽ ई सब ठीके कहलहुँ जे जहन हमरा लोकनि माटिके जाँच करा लै छी तकर बाद जे कृषि वैज्ञानिक लोकनि अनुशंसा करैत छथि जे कोन उर्वरक कोन फसलक लेल कतेक मात्रामे कखन कोना कऽ देबाक चाही, उर्वरक देबाक सेहो विधि होइत अछि, तऽ एहिसब गपपर ध्यान दी। एकर सङ्ग सङ्ग उर्वरक जे हमरा लोकनि किनैत छी तऽ सदति असली उर्वरक किनबाक चाही। कारण जँ उर्वरक असली नहि रहैत अछि तऽ ओ लक्षित उपजा नहीं होते अपितु

0: ओहिसँ हानि
1: हानि होइत छै।
0: तैँ उर्वरकके जाँच सेहो कऽ लेबाक चाही। मिहिर भाइ, हमरा लोकनि उर्वरकके जखन कखनो व्यवहार करैत छी तऽ इहो ध्यान राखी जे ओकरा व्यवहार कोना कऽ करी। जेना फसिलसँ किछु हटा कऽ जड़िसँ नेत्रजनके व्यवहार करबाक चाही, जकरा हमरा लोकनि यूरिया कहैत छी, तऽ एकर सङ्ग सङ्ग अन्यान सेहो उर्वरक सब अछि, तऽ एहिसबपर ध्यान दी। फेर गपशप करब, मुदा आब की विचार,
1: रमन चमन एकटा हेबाक चाही किसान भाइ लोकनिके वास्ते।
0: तऽ सुनैत छी ई देवी गीत, कुञ्ज बिहारी मिश्रक गाओल, तऽ सुनल जाय।
1: सुनी ई गीत।

0: हाँ, अखन उगना भाई कुंज बिहारी मिश्र सँ ई भगवती गीत सुनै छलहुँ। देखियौ उगना भाई, अखन साँझक बेरी यऽ, अपना सब एहिठाम सब अंगनामे प्राय गोसाइनी घर रहै छनि आ प्राय सब केओ गोसाइनके आगूमे दीप जरबै छथि,
1: एकर संगे मंदिरो जाइ छथि साँझ देबाक लेल। ठीके कहलहुँ। आ मिहिर भाई, स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिके, खेती जे अछि ओहिमे बेरक बड़ मोल छनि, तऽ जे एखन मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की अछि जनतब दऽ दियौन।
0: हाँ, देखियौ अखन पूर्वानुमान अवधिमे उत्तर बिहारके किछु जिलामे उमस भरल गर्मी बनल रहैके सम्भावना अछि। 6 से 9 जून तक कोनो कोनो स्थान पर गरज चमकके सङ्ग तेज हवा तथा हल्लुक वर्षा होइके सेहो सम्भावना छै। आ एहि दौरान आकाशमे अधिकांश समय आंशिक रूपसँ मेघ रहि लागल रहैके सेहो सम्भावना अछि उगना भाइ। एहि अवधिके दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियसके बीच रहैके सम्भावना छै आ सामान्यसँ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहैके सेहो सम्भावना अछि। न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियसके बीच रहैके से सम्भावना छै। अगिला किछु अधिकांश क्षेत्रमे 12 से 20 किलोमीटर प्रति घण्टाके रफ्तारसँ पूर्वावसात चलैके सेहो सम्भावना अछि। ओतहि सापेक्ष आर्द्रताके गप करब तऽ भोरमे 65 से 70% आ साँझमे 20 से 25% रहैके सेहो सम्भावना अछि। ई अछि आजुक मौसम।
1: आब स्नेही किसान श्रोता भाइ बहिन लोकनिके,
0: हाँ,
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देल गेल ई समसामयिक जे परामर्श छनि कृषि कार्य सम्बन्धी ओ ई छनि जे खेतमे उपयुक्त नमी आ पूर्वानुमान अवधिमे शुष्क मौसमके देखैत खरीफ मकईके बाउग हेत खेतके तैयारी कऽ लेबाक चाही आ एकरा खरीफ मकईके बाउग कऽ देबाक चाही। अंतिम जोतके बेरमे खेतमे 100 से 150 क्विंटल सरल गोबरक खादके सङ्ग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस आ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर सँ व्यवहार कऽ सकैत छथि। मकई के उन्नत प्रभेद अछि शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6, राजेंद्र शंकर मक्का 3, ई सब खरीफ मकई के उन्नत प्रभेद अछि। जाहि किसान भाई लोकनि लग पटौनी के सुविधा पर्याप्त होनि आ बेसी अवधि धरि वला धान के लगबऽ चाहैत होथि तऽ ओ लोकनि राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा, स्वर्णा सब 1, BPT 5204 आदि प्रभेद के चुनि सकैत छथि आ एकरा 10 जून धरि बीज स्थली में खसेबाक प्रयास करबाक चाही। जाहि क्षेत्र में धान के रोप करबाक हो ओकर दशांश हिस्सा में बिया खसाबी। बिया के खसेबा से पहिने 1.5 ग्राम विविस्टीन दवाई से प्रति किलोग्राम बिया के उपचारित कऽ दिए, तखन बिया के

0: बीज स्थली में खसा भी।
1: ठीके कहलिए गुना भाई। आ खरीफ प्याज के खेती के लेल स्वस्थ पौधा के लिए नर्सरी में गोबर का खाद अवश्य किसान भाई लोकन के डाल देवाक चाहिए खरीफ प्याज के लिए। देखियो गुना भाई, खरीफ प्याज के लिए N53 एग्री फाउंड डिक रियू अर्का कल्याण भीमा सुपर किस्म अपना सब एठम लेल अनुशंसित है। प्याज के बीज बिया के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करवाक चाहिए, तखने वो बढ़िया प्याजक फसल है। बिया गिरबे से पूर्व ओकरा बीजोपचार कह के बीज के दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से रखबाक चाहिए। देखियो गुना भाई, हरदि के रोपे के समय सेहो आब भ रहल अछि। हरदि के जकरा हल्दी कहै छै, हल्दी के राजेंद्र सोनिया राजेंद्र सोनाली किस्म उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित अछि। बुआई से पहिने 25-30 दिन पूर्व प्रति हेक्टेयर 25-30 टन गोबर ओहिठाम दऽ देबाक चाही खेत में। सरल खाद खेत के डालबाक अंतिम जुताई में नेत्रजन 60-75 किलोग्राम, स्फूर 50-60 किलोग्राम, पोटास 100-120 किलोग्राम, ओहिके संग जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कऽ लेबाक चाही। हरदि के लेल बीज के दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सेहो रखक चाही। बीजक कंद के आकार जे छै उगना भाई 30-35 ग्राम, जाहिमे 4-5 कली जे छै स्वस्थ कली ओहि हरदि के टुकड़ी में रहबाक चाही। रोपे के दूरी 30-20 सेंटीमीटर तथा गहराई जे छै ओकरा माटि में गाड़ै के लेल कंद के 5-6 सेंटीमीटर रहक चाही। नीक उपज के लेल 2-5 ग्राम थ्राइमेन एम 45 आ 0.1 प्रतिशत कार्बोडिज्म प्रति किलोग्राम बीज के दर से घोल बनाकर ओहिमे आधा घंटा बिया कंद के उपचारित कला के बाद बिया के हरदि के बिया करो बाक चाहिए।
0: आदि के बाऊ कऽ लेबाक चाही। एकर उन्नत प्रभेद है मरान आ नदिया। आदि के उन्नत प्रभेद उत्तर बिहारक लेल अनुशंसित है। बाऊ से 25-30 दिन पहिने प्रति हेक्टेयर 25-30 टन गोबरक सरल खाद खेत में दऽ दियैक आ अंतिम जुताई बेर में नेत्रजन 30-40 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटास 80-100 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम आ बोरेक्स 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कऽ सकैत छी। आद के बिया के हमरा लोकन 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर व्यवहार कऽ सकैत छी। बिया प्रकंद के आकार 20-30 ग्राम होबाक चाही, जाहि में 3-4 स्वस्थ कली अवश्य हो। रोपनी बेर में एकर दूरी 30x20 सेंटीमीटर रखबाक चाही। नीक उपजा लेबाक लेल रीडोमिल दवाई के 0.2% घोल से एकरा उपचारित कक तखन बिया के बाग करी।
1: देखियो उगना भाई, अब खेरही जकरा अपना सब मूंग कहै छियै, उड़द, ए सब के खेत में जखन देखिए जे आब नहि एमे मूंग के आब नहि फरत, ओहि गाछ के ओकरा रोटावेटर से खेत के जोताई कऽ लेबै ने, तऽ ओ मूंग के गाछ उड़द के गाछ जे छै माटिक तौर में चलि जाइ छै, तऽ ओ बड नीक कंपोस्ट खाद बनि जाइ छै। तऽ जे खेत में किसान भाई देखथिन जे आब मूंग या उड़द में आब फल नहि लगतै, फूल नहि छै, तऽ ओकरा रोटावेटर से जोति के जमीन के ओहि खेत के जमीन में गाड़ि देबाक चाही, जे ओहि खेत अगला उपजा के लेल बढ़िया कंपोस्ट बनि जाइत अछि।
0: उच्च तापमान आ लू के स्थिति के देखैत दुधारू पशु के छायादार आ हवादार ठाम पर रखबाक चाही। प्रत्येक गाय के प्रतिदिन 50 ग्राम नून, 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट दी। बेसी दूध देबाक लेल गाय के हमरा लोकनि प्रोटीन से

0: ढोकुआबी आ होलिस्टीन फ्रिजियन संकर गाय के दिन में 405 बेर अवश्य नहाबी। तो इछल समसामयिक परामर्श आ मिहिर भाई आब हमरा लोकन सुनै छी एकटा फिर गीत।
1: हाँ, हेमकांत झा के स्वर में सुनै छी।
0: तो ई नचारी सुनल जा।

0: मिहिर भाई एखन हमरा लोकनि हेमकान्त झाक गाओल बड़ नीक ई नचारी सुनलहुँ आ अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थीक बेर सम्पन्न भऽ रहल अछि। तसने ही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लै छी।
1: बड़ लगै छी उगना भाई,
0: खूब प्रसन्न रहू मिहिर भाई।

0: अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
0: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
0: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहां लापरवाही नहीं पहुंचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
5: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए हैं।
4: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपये से बढ़कर 1040 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 386 रुपये हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं।
1: ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्थिति परिस्थिति है, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में

0: बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, यह हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है, क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है।
1: इधर सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। वहीं प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आलोक सिंह ने कहा कि वे संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे।
3: देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उन्होंने निर्वहन दिया उसको निष्ठापूर्वक हम लोग निर्वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पार्टी का भी संगठन का चुनाव हुआ, 22 लाख से ऊपर हम लोग के सक्रिय सदस्य बने, इसको और आगे लेके जाएंगे हम लोग।
1: इधर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन 13 जून को नई दिल्ली में होगा। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस महाधिवेशन के दौरान पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होगा।
4: दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी 13 जून को। उस दिन भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बिहार से भी और दूसरी जगह से लोग आएंगे, वहां भी कार्यक्रम होगा।
1: अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने आज पटना के एक चर्चित निजी कोचिंग संस्थान की जांच की। जांच के दौरान संस्थान में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं पाई गई। अग्निशमन विभाग के सहायक जिला फायर ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि संस्थान को कमियों को ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है।
5: जो भी कमियां पाई गई है उनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा इस सप्ताह के अंदर, जो एक सप्ताह में सारा जो फायर सिस्टम सेफ्टी सिस्टम कमियां पाई गई है जो उनको लगाना है, उनके बाद यदि सारा सिस्टम लगा दे फिर उनको फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाएगा। फुलफिल यदि जो टाइम बॉन्ड उनको दिया जाएगा, टाइम बॉन्ड के अंदर यदि फुलफिल कर लेते हैं तो फिर कार्रवाई कोई सवाल ही नहीं होता। सभी कोचिंग की जांच किया जा रहा है, सभी कोचिंग को ऑडिट किया जाएगा।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश पुनर्परीक्षा नीट 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को लाइव कर दिया है। उम्मीदवार अब इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया था। अब नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 जून को देश भर में किया जाएगा। शेष समाचार

0: अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। श्री मोदी लंबे समय तक लगातार पीएम पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दायित्व को लगातार 4398 दिनों तक संभाला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है।
5: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा नेहरू जी से भी आगे रहा, लेकिन अंतर रहा। नेहरू जी के कार्यकाल में घोटालों का आरोप शुरू हो गया था। मोदी जी के 25 साल चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहते हुए कोई कह नहीं सकता कहीं एक दाग लगा हो। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से देश को आज यहां तक ले जाने का काम किया।
0: विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक कल नई दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे। इधर एनडीए के घटक दलों ने इंडी गठबंधन की बैठक की आलोचना की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है।
6: इनों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन है।
0: वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है, इस गठबंधन को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है।
7: आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर्फ उटव्वल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है। और एनडीए तो एकजुट है, उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उटव्वल है, वही जाने।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। पंकज कुमार गुप्ता ने एनटीपीसी कांटी के परियोजना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता और सुरक्षा के उत्तम मानकों को बनाए रखते हुए

0: योजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। एनटीपीसी कांटी परिवार ने श्री गुप्ता के सफल और प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
1: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के समीप NH 120 पर आज 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइकिल ऑन संडे अभियान के तहत आज पटना के इनकम टैक्स चौराहा से पटना जू तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली को पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में LPG सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान। इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
7: आकाशवाणी।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
9: राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बेगूसराय समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला प्राधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा, लोक सेवाओं,

0: अन्य जनहित से जुड़े कुल 48 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक मामले का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। युवा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद कंपनियों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिला निबंधन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार मेले में साक्षात्कार के उपरांत 70 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार पाने का अवसर मिलता है और उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इधर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, नियमित व्यायाम के प्रति लोगों को जागरूकता करने तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार को जिले भर में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 6 बजे गांधी स्टेडियम से साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। यह रैली गांधी स्टेडियम से निकलकर मेन रोड होते हुए जीडी कॉलेज मार्ग, हर हर महादेव चौक एवं ट्रैफिक चौक से होकर पुनः गांधी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में जिला प्रशासन के कई अधिकारी, युवा, छात्र छात्राएं तथा खेल से जुड़े युवाओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
1: लगभग 5 किलोमीटर की साइकिल रैली की है और यह दिखाने के लोग जागरूक करने के लिए कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी प्लस ईंधन बचाने के लिए भी हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचता है। इसीलिए हम लोग छोटे मोटे कार्यों के लिए या छोटे मोटे लघु कल्याणों के लिए अगर हम लोग साइकिल का उपयोग करें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और सरकार के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा है।
0: भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए बेगूसराय के सदर अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के बेहतर उपचार एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष लू वार्ड की स्थापना की गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा 10 बेड का यह अलग वार्ड तैयार किया गया है जिसमें लू से प्रभावित मरीजों के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसमें ORS, IV फ्लू, आवश्यक दवाइयां तथा आपातकालीन उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि मरीज को तुरंत एवं प्रभावी उपचार मिल सके। इसके लिए साथ ही मरीजों की सतत देखभाल एवं उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए एक विशेष मेडिकल टीम का गठन किया गया है। यह टीम लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर रखेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है ताकि लू से प्रभावित मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बीते दिनों जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में मटिहानी प्रखंड स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय नया गांव सिंहपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू सेवन और धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में सभी उपस्थित लोगों को तंबाकू एवं धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। IMA बेगूसराय के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं को नशा मुक्त जीवन शैली अपनानी होगी। बेगूसराय जिले में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन की ओर से बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जिसके पश्चात पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है

फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म निकाह का यह गीत, महेंद्र कपूर एवं सलमा आगा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म धर्मवीर का यह गीत। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए फिल्म

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दोनों का, यह गीत मोहम्मद रफ़ी एवं आशा भोसले की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबे वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है क्रीड़ा जगत, वाचन एवं निर्माण दीपक कुमार झा का है और प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्र।

0: कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा।
1: कार्यक्रम की शुरुआत हम वार्ता से करते हैं। वार्ता का विषय है मिथिला के पारंपरिक खेल और उसके महत्व। वार्ताकार हैं नंदन कुमार झा।
2: खेल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें स्वस्थ रखने, दिमाग की क्षमता को विकसित करने, सामरिकता का अभ्यास करने और टीम वर्क करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जीतने की क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कदम कदम पर भाषा, बोली, खान पान और पहनावा बदलता दिखाई देता है। ठीक वैसे ही यहाँ अलग अलग प्रांतों और क्षेत्रों में खेल भी बदलता हुआ मिलता है। ऐसे ही भारत का एक क्षेत्र है मिथिला, जो वर्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में मिथिला का क्षेत्र अपने ज्ञान, विज्ञान,

अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मिथिला की प्राचीन परंपराएं ही मिथिला को विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता आया है। मिथिला की प्राचीन परंपराओं में इस क्षेत्र में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों का विशेष महत्व है। मिथिला के लोग प्राचीन काल से ही खेल प्रिय रहे हैं और इस क्षेत्र में भी समय के साथ कई परिवर्तन और प्रयोग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आखेट, चौसर, तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे खेल राजा महाराजाओं के शान की बात मानी जाती थी, लेकिन खेलों का प्रसार सुदूर देहात एवं सीमावर्ती इलाकों में भी व्यापक रूप से नजर आता था। मिथिला के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वर्ग के बीच कुश्ती अथवा पहलवानी लोकप्रिय खेल और स्थानीय लोगों के मनोरंजन का सबसे सरल और सहज साधन था। यह काया को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा खेल है। पारंपरिक कुश्ती अखाड़े में होती है। अखाड़ा कुश्ती का अभ्यास करने की एक जगह है। उनके प्रशिक्षक द्वारा बनाए गए कई सख्त नियम हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। पहलवानों को सख्त आहार लेना होता है, लेकिन एक और बात है जो हम सभी को ध्यान में रखनी होगी, यहाँ तक कि छात्रों को भी इस पर अधिक ध्यान देना होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारतीय कुश्ती स्कूल अखाड़ा बहुत कम है, दिन प्रतिदिन उसकी संख्या कम होती जा रही है, लेकिन कई लोग उन्हें जीवित रखने के लिए अपने स्तर की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मिथिला में अटकन मटकन, गुल्ली डंडा, धूड़ खेल, पाँच गोटिया, चोर नुकैया, पिट्टो, चोर सिपाही जैसे खेल इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल रहा है। मिथिला में नदियों और तालाबों का पर्याप्त मात्रा होने के कारण बालक वर्ग से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक तैराकी में निपुण थे। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसमें कम से कम एक व्यक्ति कुशल तैराक न हो। देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेला जाने वाला खेल जैसे कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि प्रसिद्ध खेल भी आधुनिक मिथिला में बेहद लोकप्रिय रहा है। समय के साथ क्रिकेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल भी मिथिला के गांव-गांव में खेले जाने लगा। तीक्ष्ण प्रतिभा के धनी होने के कारण यहाँ के संभ्रांत परिवारों में शतरंज जैसा गंभीर खेल भी बखूबी खेला जाता रहा है। ताश खेलना यहाँ के लोगों के नित्य क्रियाक्रम की तरह दिनचर्या में शामिल रहा है। प्राचीन खेल का आधुनिक रूप गोली गोली या कंचा खेलना आज भी यहाँ के गांवों में बच्चों को खेलते हुए आसानी से देखा जा सकता है। कबड्डी मिथिला के पारंपरिक खेलों में एक है जिसे गाँव के लोगों के साथ साथ अब शहरों में भी खेला जाता है। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। कबड्डी बहुत ही शक्तिशाली और सस्ता खेल है और इस खेल के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। पूरे साल कई नियमित कबड्डी टूर्नामेंट होते हैं। खो खो भी भारत का एक पारंपरिक खेल है और मिथिला में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के अधिकतर खेलों में प्राकृतिक प्रेम और वन्य जीवों के संरक्षण की झलक देखने को मिलती है, जो मिथिला के प्राचीन वैचारिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए यहाँ के बच्चों में एक खेल प्रसिद्ध है, गच्छर भय गच्छर की भय मच्छर, जिसका प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन से सीधा जुड़ा

कौशल की आवश्यकता होती है। कबड्डी बहुत ही शक्तिशाली और सस्ता खेल है और इस खेल के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। पूरे साल कई नियमित कबड्डी टूर्नामेंट होते हैं। खो खो भी भारत का एक पारंपरिक खेल है और मिथिला में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के अधिकतर खेलों में प्राकृतिक प्रेम और वन्य जीवों के संरक्षण की झलक देखने को मिलती है, जो मिथिला के प्राचीन वैचारिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए यहाँ के बच्चों में एक खेल प्रसिद्ध है, गच्छर भय गच्छर की भय मच्छर, जिसका प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन से सीधा जुड़ाव है। मिथिला में ऐसी मान्यता है कि जब बरसात के मौसम में बारिश नहीं हो रही होती है और किसान परेशान रहता है, तब यहाँ की महिलाओं के द्वारा जट जटिन खेल खेलने की परंपरा रही है। इस खेल से ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। मिथिला की पौराणिक परंपरा में एक सामा चकेबा खेल पूजा होता है, जिसको भाई बहनों के द्वारा कार्तिक मास में पूर्णिमा के समय खेला जाता है। यह लगभग 4 से 5 दिनों का एक खेल होता है और पूर्णिमा के दिन सामा का भसौन करके इस खेल का समापन होता है। मिथिला के प्रत्येक पारंपरिक खेलों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास का झलक देखने को मिलता है। मिथिला में विवाह और कोजगरा के समय पचीसी खेल खेलने की परंपरा रही है, जो अपने आप में मनोरंजन और एकता का प्रतीक है। समय के साथ साथ आज इस क्षेत्र में कुछ कुछ खेल विलुप्त हो गए हैं, तो वहीं कुछ कुछ खेलों ने नया स्वरूप ले लिया है। आज लोग गांव को छोड़कर शहरों में अपना बसेरा बना लिए हैं, जिसके कारण से आज के बच्चों में पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि 9 के बराबर देखने को मिलती है। आधुनिक समय में डिजिटल रूप में खतरनाक खेलों से बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी अक्सर देखने को मिलता है। बच्चों को हमारी संस्कृति और परंपरा के बारे में बताना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन्हें नई युग की अवधारणाएं सिखाना। यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी जड़ों को जानें और उस पर गर्व महसूस करें। पारंपरिक खेल खेलकर बच्चे खेलों के माध्यम से अपनी विरासत से जुड़ सकते हैं और इसका उन पर आजीवन गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक खेल खेलने से हमेशा बच्चों को टीम वर्क और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश पुराने स्कूली खेलों में चपलता और हरकतों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हाथ हिलाना और कूदना। इससे व्यायाम बढ़ता है और आंख हाथ का समन्वय बेहतर होता है। कबड्डी और खो खो जैसे टीम गेम में बच्चों को अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें रणनीति बनाने और अपने मतभेदों को सुलझाने में मदद मिलती है। अतः आज हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आग्रह करना चाहते हैं कि मिथिला के पारंपरिक खेलों को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य करें। जैसे सरकार लोक कलाओं को आगे बढ़ा रही है, ठीक उसी प्रकार के पारंपरिक खेलों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। मिथिला क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालयों पाठ्यक्रम में पारंपरिक खेलों को शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी के बच्चों में अपनी विरासत को लेकर गर्व महसूस हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और नए नए उपकरण और डिवाइस जो खेलों का एक स्वरूप लेता आ रहा है, ऐसे में वो बच्चे जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझे, जो अपनी परंपराओं को समझे और ख़ास करके कि लोगों के बीच एक संवाद स्थापित होता रहा है हमारी खेल परंपराओं में, वो आज कम देखने को मिलता है। आजकल साधन उपलब्ध हो गया है मोबाइल फ़ोन पर, लोग बच्चे उसी में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और जो हमारे खास करके गार्जियन माता पिता होते हैं, वह भी आजकल बच्चों को सामाजिक खेलों के प्रति रुचि कम कहने को बोलते हैं कि इससे थोड़ा दूरी बना कर रखें। वह प्रयास यही रखते हैं कि हमारे बच्चे अधिकतर समय अपने पठन पाठन में ही व्यतीत करें। मगर ऐसे में होता क्या है
कि बच्चे पठन पाठन में

0: तो लीन होते ही है, मगर वह खेल जो उन्हें एक सामाजिक स्वरूप प्रदान करता है उसके बजाय वह दिन भर कहीं ना कहीं मोबाइल के खेलों में अधिक समय लगाते हैं। चाहे वो हम देखते हैं कि कई बार ऐसे हम न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि क्लासरूम में बच्चे मोबाइल में लीन रहते हैं, और कई तरह के गेम जिसमें बच्चे इतना लीन हो गए थे कि उसका लेवल पार करते करते एक समय आता है कि बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिस पर सरकार ने भी उस खेल को प्रतिबंध लगा दिया और वो बच्चे खेल नहीं खेल सकते। और ऐसे ही करके एक आपने देखा होगा कि बंदूक गोली जैसा खेल होता है जिसमें बच्चे सारा दिन लगे रहते हैं चार पांच लोगों से कनेक्ट करते हुए, और इसका प्रभाव भी देखने को पड़ता है कि बच्चे आजकल ना समय से खाना खा रहे हैं ना अपने परिवारजनों से ठीक से बात कर रहे हैं। अतः इन्हीं सब कारणों के देखते हुए अब समय आ गया है कि वापस हम उन पारंपरिक खेलों की तरफ लौटे जहाँ से हमें एक अच्छे संस्कार, अपने विरासत को जानना और एकजुटता का जो भाव उत्पन्न होता था उसको हम वापस से फिर से निखारें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था मिथिला के पारंपरिक खेल और उसके महत्व। वार्ताकार थे नंदन कुमार झा। श्रोताओं, इस वार्ता के बाद आइए खेल से संबंधित कुछ बातचीत करते हैं। बीसीसीआई विदेशी T20 लीगों में खेलने के लिए इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को रोकने के लिए एक नई रिटायरमेंट नीति तैयार करने जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर्स में विदेशी T20 लीगों में खेलने के लिए समय से पहले इंटरनेशनल या डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने का चलन लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में ऑलराउंडर विजय शंकर ने भारतीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की थी। संन्यास लेने के तुरंत बाद उन्होंने खुद को लंका प्रीमियर लीग के लिए उपलब्ध कराया, जहां उन्हें कैंडी रॉयल्स ने साल 2026 सीजन के लिए साइन कर लिया है। इसी घटना के बाद बीसीसीआई इस मामले को लेकर गंभीर हुआ। विजयशंकर से पहले भी कई भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीगों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक, युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, प्रवीण तांबे और इरफान पठान शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने विदेशी लीगों में खेलने के योग्य होने के लिए भारतीय क्रिकेट से संन्यास का रास्ता चुना था। बीसीसीआई की मौजूदा नीति के अनुसार कोई भी एक्टिव भारतीय क्रिकेटर किसी भी विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है। इस नियम के दायरे में इंटरनेशनल खिलाड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी और IPL के खिलाड़ी शामिल हैं। खिलाड़ियों के संन्यास के मुद्दे के अलावे बीसीसीआई ने दो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स की मदद पर विचार कर रही है। बोर्ड के अधिकारी क्रिकेट बोर्ड ऑफ मालदीव और क्रिकेट फिजी की ओर से आए सहायता के अनुरोधों पर भी चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए एक और चर्चा करते हैं कि फीफा विश्व कप की शुरुआत अगले 11 जून से हो रही है। श्रोताओं, आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 11 जून से फीफा विश्व कप की शुरुआत हो रही है। वैसे भारतीय समयानुसार यह 12 जून 2026 हो जाएगा। बता दें कि टूर्नामेंट से जुड़े लोग सभी तैयारियां पूरी कर लिए हैं। यह टूर्नामेंट पहली बार संयुक्त रूप से 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहला मुकाबला 11 जून को मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वहीं खिताबी यानी फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में खेले जाएंगे। लगभग 100 साल पहले 1930 में शुरू हुआ यह टूर्नामेंट अब 48 टीमों तक पहुंच चुका है। 13 टीमों से शुरू हुई यह यात्रा अब दुनिया के सबसे विशाल और वैश्विक खेल आयोजन में बदल चुकी है। इस बार कई नए देश पहली बार विश्व कप खेलेंगे। साथ ही इस बार कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इस साल अफ्रीका और एशियाई टीमों को ज्यादा हिस्सेदारी मिली है। यूं कह सकते हैं कि 2026 फीफा विश्व कप के साथ फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। 1930 में फीफा के केवल 16 सदस्य देश थे, जापान और सियाम। अब थाईलैंड ने लंबी यात्रा के कारण हिस्सा नहीं लिया, जबकि मिस्र जहाज छूट जाने की वजह से नहीं पहुंच सका। ऐसे में सिर्फ 13 टीमें ही पहले विश्व कप टूर्नामेंट में खेली। 1934 से 1978 तक फीफा विश्व कप 16 टीमों के साथ खेला गया था। 16 टीमों के 4 ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप की विजेता सीधे सेमीफाइनल में पहुंचती थी। वहीं फीफा ने 1982 से विश्व कप में 8 और टीमों को शामिल किया।

स्पेन की मेज़बानी में हुए इस विश्व कप में कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया। उस संस्करण में दो ग्रुप चरण रखे गए थे। बाद में इस प्रारूप को हटाकर सीधे नॉकआउट चरण की शुरुआत की गई। इस साल अफ्रीका एशियाई टीमों को ज़्यादा हिस्सेदारी मिल रही है। 1998 में टीमों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी गई थी, जो 2022 में कतर की मेज़बानी में हुए विश्व कप तक समय तक कायम रही। 32 टीमों को 4-4 के 8 ग्रुप में बांटा गया था। लगभग 3 दशक तक फीफा ने वैश्विक टूर्नामेंट में इस प्रारूप को बनाए रखा और इस बार 2026 में विश्व कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूरोप से सबसे ज़्यादा 16 स्थान मिले हैं। अफ्रीका को 9, एशिया को 8, दक्षिण अमेरिका और कानकाफाक को 6-6 स्थान दिए गए हैं। ओशिनिया को पहली बार सीधा स्थान मिला है, जिसे न्यूजीलैंड ने हासिल किया। और अब चलते हैं ज्ञान की बातें खेल जगत से करने की, और आज हम इसके अंतर्गत स्नूकर खेल के बारे में बातचीत करेंगे। स्नूकर एक बिलियर्ड्स खेल है जो 15 लाल गेंदों, 6 रंगीन गेंदों और एक क्यू बॉल के साथ खेला जाता है। खिलाड़ियों का लक्ष्य बारी बारी से लाल और रंगीन गेंदों को पॉकेट में डालना होता है और फिर रंगीन गेंदों को उनके मूल्य के अनुसार पॉकेट में डालना होता है। सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी फ्रेम जीत जाता है और सबसे ज़्यादा फ्रेम जीतने वाला खिलाड़ी मैच जीत जाता है। खेल की शुरुआत की बात करें तो एक सिक्का उछालकर यह तय किया जाता है कि कौन पहले खेलेगा। शुरुआती खिलाड़ी को क्यू बॉल से लाल गेंद को हिट करना होता है और लाल गेंद को पॉकेट में डालने का प्रयास करना होता है। जब तक मेज पर लाल गेंदें मौजूद हैं, खिलाड़ियों को लाल गेंद को पॉकेट में डालने के बाद एक रंगीन गेंद को पॉकेट में डालना होता है और फिर एक लाल गेंद, और इसी तरह प्रत्येक रंगीन गेंद का एक अलग मूल्य होता है, जैसे पीली, हरी, भूरी, नीली, गुलाबी और काली। यदि कोई खिलाड़ी गलत गेंद को हिट करता है या कोई फाउल करता है तो उसके अंक कट जाते हैं और विरोधी खिलाड़ी को खेलने का मौका मिल जाता है। जब सभी लाल गेंदें और रंगीन गेंदें पॉकेट में चली जाती है तो फ्रेम समाप्त हो जाता है। मैच आमतौर पर पूर्व निर्धारित विषय संख्या में फ्रेमों, जैसे 7, 9, 11 आदि तक खेला जाता है। सबसे ज़्यादा फ्रेम जीतने वाला खिलाड़ी मैच जीत जाता है। स्नूकर में उपयोग होने वाले उपकरण की बात करें तो यह सफ़ेद गेंद है जिसका उपयोग अन्य गेंदों को हिट करने के लिए किया जाता है। 15 लाल गेंदें हैं, प्रत्येक का मूल्य एक अंक है। 6 रंगीन गेंदें हैं, प्रत्येक का अलग अलग मूल्य है। यह एक लंबी छड़ी है जिसका उपयोग क्यू बॉल को हिट करने के लिए किया जाता है। स्नूकर टेबल एक आयताकार मेज है जिस पर खेल खेला जाता है, जिसमें 6 पॉकेट होते हैं। वहीं चौक क्यू के टिप पर लगाया जाता है ताकि गेंद को अच्छी तरह से हिट किया जा सके। यह लाल गेंदों को पिरामिड के आकार में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्नूकर के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। जब क्यू बॉल किसी गेंद से बाधित हो और उसे हिट करना मुश्किल हो जाए तो उसे स्नूकर कहा जाता है। यदि कोई खिलाड़ी फाउल के कारण किसी गेंद को हिट करने में असमर्थ है तो रेफरी एक फ्री बॉल की घोषणा करता है, जिससे खिलाड़ी किसी भी गेंद को हिट कर सकता है। यदि कोई खिलाड़ी गेंद को हिट करने में विफल रहता है तो उसे मिस माना जाता है। स्नूकर एक जटिल खेल है जिसमें महारत हासिल करने के लिए अभ्यास और कौशल की आवश्यकता होती है। यह बहुत कम देश में खेले जाते हैं। कुछ खिलाड़ी दशकों से इस खेल पर अपना वर्चस्व कायम रखते आए हैं। सामान्य रूप से 1970 की बात करें तो इस दशक के दौरान रे रियर्डन, 1980 के दशक के दौरान स्टीव डेविस और 1990 के दशक के दौरान स्टीफन हेनरी को प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है, जिन्होंने क्रमशः 6, 6 और 7 विश्व प्रतियोगिता चैंपियनशिप जीती। 2000 के दशक में किसी का वर्चस्व नहीं रहा, जिसमें रोनी ओ सुलिवन ने 3 अवसरों पर खिताब जीता और मार्क विलियम्स और जॉन हिंगिस ने 2 बार खिताब प्राप्त किए। हिंगिस को कुल मिलाकर 3 बार खिताब हासिल हुआ, पिछली बार जिसे उन्होंने 1998 में था। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे ज्ञान की बातें खेल जगत से के अंतर्गत स्नूकर खेल के बारे में। और इसके साथ ही चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर

आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचते हुए नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीत लिया है। 20 साल के प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल राउंड में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। टूर्नामेंट के आखिरी दिन प्रज्ञानंदा 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने क्लासिकल मुकाबला जीतकर 3 अंक हासिल किए और कुल 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 7 बार मैग्नस कार्लसन ने जीता। 2025 में भी वही चैंपियन थे। टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो 15.5 अंकों के साथ टॉप पर थे, लेकिन उनका मुकाबला ड्रॉ रहा और फैसला आर्मागेडन टाई ब्रेकर में गया। इससे प्रज्ञानंदा के लिए खिताब जीतने का रास्ता खुल गया। वेस्ली सो ने टाई ब्रेकर तो जीत लिया, लेकिन उन्हें केवल 1.5 अंक मिले। इस तरह उनके कुल 17 अंक हुए, जो प्रज्ञानंदा से एक कम थे। फ्रांस के अलीराजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आखिरी दौर में मैग्नस कार्लसन ने गुकेश को हराया, लेकिन वह भी खिताब नहीं जीत सके। कार्लसन 13 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे। इस टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में प्रज्ञानंदा का प्रदर्शन साधारण रहा, लेकिन बाद के मुकाबलों में उन्होंने शानदार वापसी की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वर्ल्ड नंबर 1 और 7 बार के नॉर्वे चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2 बार क्लासिकल मुकाबलों में हराना रहा। प्रज्ञानंदा भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराया। इससे पहले 2007 में विश्वनाथन आनंद ने लीना रेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कार्लसन को लगातार 2 मुकाबलों में शिकस्त दी थी। प्रज्ञानंदा ने वह कर दिखाया जो भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद भी नहीं कर पाए थे। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश भी अब तक यह टूर्नामेंट नहीं जीत सके हैं। 2013 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में पहली बार किसी भारतीय ने खिताब जीता है। प्रज्ञानंदा दूसरी बार नॉर्वे चेस में खेल रहे थे। गुकेश 8 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे। वहीं महिलाओं में कजाकिस्तान की बेबीसारा असाउबायेवा 16.5 अंक के साथ विजेता रहीं, जबकि चीन की झू जिनेर दूसरे और यूक्रेन की अन्ना मुजीकुचुक 15 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि भारत की दिव्या देशमुख 5वें और कोनेरू हम्फी 6ठे स्थान पर रही। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट हर साल होने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांचक चेस टूर्नामेंट में से एक है। इस साल यह टूर्नामेंट 25 मई से 5 जून 2026 तक पहली बार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया था। इसमें ओपन और महिला कैटेगरी दोनों में केवल 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जो आपस में 2-2 बार भिड़े। अगर 2 खिलाड़ियों के बीच क्लासिकल मैच ड्रॉ होता तो फैसला सडन डेथ यानी आर्मागेडन गेम से किया जाता है। इसमें सफ़ेद मोहरों वाले खिलाड़ी को ज़्यादा समय मिलता है, लेकिन उसे हर हाल में जीतना होता है। मुकाबला ड्रॉ होने पर काले मोहरों वाले खिलाड़ी को विजेता मानकर एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है। इससे हर दौर में नतीजा निकलना तय होता है। रैपिड, ब्लिच और क्लासिकल ये चेस के फॉर्मेट हैं। क्लासिकल गेम यानी खिलाड़ी को 90 मिनट के अंदर शुरुआती 40 चालें चलनी होती हैं। यह गेम जीतने पर 1 अंक मिलता है, जबकि ड्रॉ की स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को आधा अंक दिया जाता है। 2 क्लासिकल गेम के बाद ज़्यादा अंक वाले प्लेयर को विजेता घोषित कर दिया जाता है। 2 क्लासिकल गेम के बाद भी बराबर अंक होने पर विजेता का फैसला रैपिड राउंड से होता है। रैपिड राउंड में 15-15 मिनट के 4 गेम होते हैं। इसमें भी हर गेम जीतने पर 1 अंक और बराबरी की स्थिति में आधा अंक दिया जाता है। रैपिड राउंड में भी अगर चैंपियन का फैसला नहीं होता है तो ब्लिच चेस खेला जाता है। ब्लिच फॉर्मेट में 3-3 मिनट का गेम होता है। जो खिलाड़ी इसमें जीत हासिल कर लेता है उसे चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। रैपिड फॉर्मेट में प्रत्येक खिलाड़ी को 10 से 60 मिनट के अंदर और ब्लिच में सभी चालें प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मिनट या उससे कम के निश्चित समय में पूरी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हॉकी की। भारतीय अंडर 18 मेंस हॉकी टीम ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में भारत का सामना कल जापान से हुआ और इसके साथ ही भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को फाइनल में 4-1 से हरा दिया। इससे पहले भारत ने 2001 और 2016 में टाइटल अपने नाम किया था। कल यानी शनिवार को जापान के काकामिगाहारा में आशीष तानी पूर्ति ने हैट्रिक लगाई। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भी आशीष ने हैट्रिक लगाते हुए 4 गोल किए थे। वहीं पाकिस्तान ने मलेशिया को हराकर तीसरा स्थान पक्का किया। दूसरी ओर वीमेंस टीम ने साउथ कोरिया को 3-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस कैटेगरी में चीन ने गोल्ड अपने नाम किया। माननीय प्रधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष और महिला दोनों भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमों को एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने महिला टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम ने शानदार जुझारूपन दिखाया। यह उपलब्धि भारतीय महिला हॉकी की बढ़ती ताकत और खिलाड़ियों की अपार क्षमता को दर्शाती है। वहीं पुरुष टीम को बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम फाइनल में यादगार जीत के रूप में सामने आया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने पहली बार फ्रेंच ओपन जीत लिया है। कल खेले गए वीमेन्स सिंगल्स फाइनल में उन्होंने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटे 22 मिनट तक चला। एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह टाइटल अपने नाम किया था। रूस की एंड्रीवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। वे पूरे मुकाबले में च्वालिंस्का पर हावी रही। पहले सेट में स्कोर 3-3 से बराबरी पर था, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार 3 गेम जीतकर सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी उन्होंने शुरुआती बढ़त हासिल की और लगातार 6 गेम जीतते हुए च्वालिंस्का को वापसी का मौका नहीं दिया। उन्होंने 6-2 से सेट और मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ एंड्रीवा 2020 में ईगा स्वायातेक के बाद फ्रेंच ओपन महिला एकल जीतने वाली टीनेज खिलाड़ी बन गई। वह 1992 में मोनिका सेलेस के बाद फ्रेंच ओपन में सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन भी हैं। श्रोताओं, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 15 साल 71 दिन के वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के साथ साथ सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी चुना गया है। एशियन गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले T20 फॉर्मेट में ही होते हैं। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक बस यही तक। अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप क्रीड़ा जगत सुन रहे थे। वाचन एवं निर्माण दीपक कुमार झा का था। प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन एक
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: सुनेंगे समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और

0: संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के

0: अनंतपुर लैंडपोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ

0: हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपेई सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. discuss comprehensive strategic

ये उस दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा

0: सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज़ और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना

0: इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
1: As far as the news is concerned, the people who were in the greats.
2: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे। एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे। एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
1: Gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
0: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
3: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
0: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
4: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज़ के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियाँ रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
3: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26

0: जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
2: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
3: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
2: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
5: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़ जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सकें। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन 3 स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी। मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला दे के उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स

0: चल रहे हैं। उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
1: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे वो चौका करने हैं वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया

0: तो संजय ने महाभारत में जो काम किया था, रेडियो ही एकमात्र माध्यम था। मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500-500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया, उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इससे सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था, क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है, और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने, और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी, और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
5: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई

0: फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है, मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन

0: के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री MSN मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री MSN मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री MSN मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगन अर्ली। हिज मदर श्रीमती M जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट। रिकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री MSN मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि श्री NCH कृष्णमाचार्यलु। He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri MSN Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri MSN Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: Vidwan Sri MSN Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain. Athana raag mein Purandar Das ki rachna Sakala Grah Bala Neene se jo ki Khanda Chapu Taal mein nibadh hai.
1: Sri MSN Murthy begins this evening's concert with a kriti of Purandar Dasa. It is an Athana ragam Khanda Chapu Taalam.

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री एम हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय

अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:45 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।